0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत इस वर्ष ब्रिक्स संगठन के अध्यक्ष के रूप में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक आज और कल भोपाल में होगी। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि बैठक में सदस्य देशों के प्रतिनिधि सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने और ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक से पहले प्रमुख मुद्दों पर सहमति बनाने पर विचार करेंगे। 2 दिन की बैठक में 3 प्राथमिकता क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इस बैठक से ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत सांस्कृतिक साझेदारी मजबूत करने तथा संस्कृति के माध्यम से समावेशी विकास को बढ़ावा देने की भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त होती है। ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की 13वीं बैठक आज से उड़ीसा के भुवनेश्वर में होगी। ये बैठक 7 अगस्त तक चलेगी। इसी दौरान संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों की तीसरी बैठक भी चलेगी। शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि इन बैठकों में शिक्षा मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और सदस्य देशों के प्रतिनिधि विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। मुख्य रूप से आरंभिक बाल्यावस्था में समुचित देखभाल और शिक्षा, कौशल विकास सहयोग बढ़ाना तथा अनुसंधान, नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने पर विचार होगा। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने कल स्वीकृति, लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। इससे पहले लोकसभा ने विनियोग विधेयक 2026 पारित किया। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। इसके बाद कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। संसद की कार्यवाही आज दिन के 11 बजे से शुरू होगी। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित तौर पर पेपर लीक होने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने राज्य के बाहर के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि उन्हें अपराध जांच विभाग सीआईडी की जांच पर भरोसा नहीं है। प्रदर्शनकारी 29 जुलाई से रांची में अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित स्थानीय चुनाव को पूरी तरह दिखावा बताया है और कहा है कि इससे सच्चाई छिप नहीं सकती। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि वहां की वास्तविकता विरोध प्रदर्शन और पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा की जा रही हिंसा है।
1: इस वर्ष जून से अब तक वहाँ जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई एक अन्य में घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार

0: नागरिकता को देखना चाहिए।
1: राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान की ग्रीष्मकालीन वार्षिक प्रदर्शनी आम लोगों के लिए इस महीने की 16 तारीख से खुल जाएगी। लोग 15 सितंबर तक अमृत उद्यान का भ्रमण कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य परिवहन निगम की बसों में 60 वर्ष और इससे अधिक आयु की महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा देगी। इसके लिए बजट में समुचित प्रावधान किए गए हैं। कोरिया

आपकी नई सुबह इतनी सुहानी हो जाए, आपकी नई सुबह इतनी सुहानी हो जाए, दुखों की सारी बातें आपकी पुरानी हो जाए, दे जाए इतनी खुशियाँ यह नया दिन, दे जाए इतनी खुशियाँ यह नया दिन, कि खुशी भी आपकी दीवानी हो जाए, कि खुशी भी आपकी दीवानी हो जाए। प्रोग्राम सजरी सवेर सुन रहे तमाम श्रोतियों नूं मेरे वालों प्यार ते सत्कार भरी नमस्कार जी। श्रोतियो, सजरी सवेर प्रोग्राम लैके हाजिर हाँ मैं प्रोग्राम दी होस्ट ते तुहाडी रेडियो दोस्त सुमनप्रीत। उम्मीद करदे हाँ साडे सारे ही श्रोते तंदुरुस्त होणगे, दुरुस्त होणगे अते आकाशवाणी बठिंडा दे प्रसारणां दा आनंद लै रहे होणगे। दोस्तो, हर नवीं सवेर, हर नवा दिन साडे लई नवीआं खुशियां, नवीं उम्मीद अते नवें मौके लैके आउंदा है, ते अज दा दिन वी तुहाडे लई नवें मौके, नवीआं उम्मीदां ते नवीआं खुशियां लैके आया है। अज दे प्रोग्राम सजरी सवेर दे विच पहलां तुहाडे नाल सांझा करांगे अज दा विचार, फिर अज दीआं इतिहासिक घटनावां, अखबारी सुर्खियां वी, ते प्रोग्राम दे विच थॉट ऑफ द डे सांझा करन लगे हां। थॉट ऑफ द डे है जी, सफल होने लई अपनीआं गलतीआं तों ही सीखणा पैंदा है जी। श्रोतियो, सफल होने लई सानूं अपनीआं गलतीआं तों ही सीखणा पैंदा है। जिंदगी विच असीं अक्सर अपनी असफलता नूं अपनी हार मान लैंदे हां अते अगे वधन की कोशिश छड्ड दिंदे हां, पर नहीं, ये साडी सफलता दा सही राह नहीं है। सगों अपनियां गलतियां नूं सुधारना, अपनियां असफलतावां तों सीखना सानूं साडी मंजिल दे होर नेड़े लै जांदा है। यही सफल मनुख की असली पहचान है। जीवन विच सानूं अपनियां गलतियां नूं अपने सबक वजों मनना चाहिदा है। अपनियां कमजोरियां नूं पछाणन अते उहनां ते मेहनत करन नाल असीं सफलता जरूर प्राप्त कर सकदे हां। दुनिया का कोई भी महान इंसान गलतियां किए बिना सफल नहीं होया। गलतियां इस गल का सबूत होंदिया हन कि तुसी कोशिश कर रहे हो, तुसी मेहनत कर रहे हो। महत्वपूर्ण यह है कि असी अपनी गलती तो की सीखिया। जेकर असी अपनी गलती का विश्लेषण करिए अते उसनू दोबारा ना दोहराउण दा संकल्प करिए, तां गलती ही साडी सफलता की पहली पौड़ी बन जाती है। मैनू उम्मीद है कि साडे स्रोते मेरे इस विचार ते जरूर गौर करनगे ते प्रोग्राम दे विच इतिहासिक घटनावां सांझियां करन तों पहलां सुन लैंदे हां ये प्यारा जिहा गीत।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया, वो छूट जाएगा।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: दोस्तों, अखबारी सुर्खियां लेके मैं हाजिर हां तुहाडा दोस्त कुलजीत चहल। दैनिक जागरण ने प्रमुखता नाल इस खबर नू छापया कि जंतर मंत्र पर पेट्रोल बम से हमले की थी साजिश, कैमरे लगा पाक भेजी जानकारी। पंजाब देश में सबसे अधिक वेतनमान देने वाले राज्यों में शामिल। SIR पंजाब में 20.66 लाख नाम हटे, 4 सप्ताह में म्यूल खातों से निपटने की SOP बनाई जाए। देश विदेश जागरण दे मुख पन्ने तो भारत ने कहा दिखावा है गुलाम, जम्मू कश्मीर का निकाय चुनाव। ट्रंप के नए टैरिफ को 25 राज्यों ने दी चुनौती। आओ गल करदे आं खेल जगत दी। खेल जागरण दे मुख पन्ने तो ग्लासगो के पदक विजेताओं का जोरदार स्वागत। मुक्केबाज साक्षी चौधरी, जैस्मीन जादूमणि का एयरपोर्ट पर स्वागत हुआ। जुड़ो में स्वर्ण पदक जीतने वाली असीमता का जोरदार स्वागत। चोटों से बेहाल भारतीय टीम की कठिन परीक्षा, साई सुदर्शन के बिना कोलंबो पहुंची भारतीय टीम। जीत के साथ

WTC की उम्मीदें बनाना चुनौती। सिंधु को 9वीं, लक्ष्य को मिली 14वीं वीरता। लुसाने डायमंड लीग में पथिरागे का सामना करेगी नीरज। राष्ट्रमंडल खेलों के बाद होटल से लापता हुआ पाक मुक्केबाज। विस्मय विधायक ने उठाया कचरा प्लांट का मुद्दा। हड़ताल खत्म, अब बारिश ने बढ़ाई चुनौती। रेलवे ओवरब्रिज बनेगा, रेलवे से बातचीत शुरू। शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या को हल करने के लिए नगर निगम ने नए रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मेयर पदमजीत सिंह मेहता ने बताया कि बठिंडा फिरोजपुर और बठिंडा श्रीगंगानगर रेलवे लाइन पर नए ROB के निर्माण के लिए रेलवे अधिकारियों और रेल मंत्रालय के साथ बातचीत शुरू की गई है। प्रस्तावित ROB के निर्माण से परशुराम नगर, प्रताप नगर, जनता नगर और गुरुकुल नगर के निवासियों को रेलवे फाटकों पर लंबे समय तक इंतजार करने की समस्या से राहत मिलेगी। मेयर ने बताया कि अमरपुरा बस्ती ओवरब्रिज प्रोजेक्ट, जिसकी लागत लगभग 116 करोड़ रुपये है, लंबे समय से अधूरा पड़ा है। निगम ने इस परियोजना में तेजी लाने का निर्णय लिया है। ठेका कर्मियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी, बसों का चक्का जाम। पंजाबी ट्रिब्यून ने प्रमुखता नाल इस खबर नूं छापया है कि पंजाब विधानसभा च EV नीति खिलाफ मता पास। मोहाली, चंडीगढ़ ने लुधियाणा च ED छापे। सनती प्लाट घपले विच कई हस्तियां दे नां शामिल। साइबर अपराध खिलाफ पेशबंदियां दे हुक्म। सुप्रीम कोर्ट वल्लों भारतीय रिजर्व बैंक नूं 4 हफ्तियां दी मोहलत। भारत ने रहमान नूं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन दा सद्दा भेजा। पंजाब विच 20.66 लाख वोटर्स इतराज दे घेरे च। DA सरकार सुप्रीम कोर्ट जाण लई तैयार। आओ गल करदे आं अजीत दे मुख पन्ने तों। पंजाब च वोटर सूचियां दी विशेष सुधाई दा पहला पड़ा मुकम्मल। अनदिता मित्रा, 13 अगस्त नूं जारी होवेगी खरड़ा वोटर सूची, 12 अक्तूबर नूं आवेगी अंतम सूची। संसद दे अंदर बाहर हंगामा जारी। और ग्लासगो खेडां दी गल करिए तां ग्लासगो ने पंजाब दे खेड विभाग नूं विखाया सच दा शीशा। हरियाणा जित रहा है ते पंजाब क्यों हार रहा है। हुण गल करदे आं राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय खेड संसार दी। खेड मंत्री मांडविया वल्लों राष्ट्रमंडल खेडां च तमगा जेतू भारतीय मुक्केबाजां दा सन्मान। अमरीका ने विजिटर वीजे ते $20,000 दा बॉन्ड कीता लाजमी, भारत नूं फिलहाल राहत। राष्ट्रमंडल खेडां दीआं चांदी तगमा जेतू हरजिंदर कौर दा पटियाला पुज्जन ते शानदार स्वागत। चांदी तगमा जेतू लवप्रीत सिंह दा अमृतसर पुज्जन ते ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰੀ ਸੁਰਖੀਆਂ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੀਤ।

यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 1000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल 0 आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली

0: मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। लाल सागर में यमन तट के पास हमले के बाद भारतीय ध्वज वाला जहाज डूबा, सभी 13 भारतीय नाविक सुरक्षित, भारत ने हमले की कड़ी निंदा की। भारतीय रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के निर्देश दिए। नीट यूजीसी काउंसलिंग के पहले चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आज से। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु को नवीं वरीयता मिली। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को पांचवीं वरीयता। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय ध्वज वाला वाणिज्यिक पोत एमएसवी फैज नूरे औलैया कल यमन तट के पास हमले के बाद लाल सागर में डूब गया। पोत पर सवार सभी 14 नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इनमें से 13 भारतीय थे।
3: भारतीय ध्वज वाला यह वाणिज्यिक पोत सऊदी अरब से तेल लेकर आ रहा था। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया, यमन के जल क्षेत्र के पास मिसाइल हमले के बाद पोत लाल सागर में डूब गया। श्री सोनोवाल ने कहा कि भारत इस अकारण हमले की कड़ी निंदा करता है और हमारे लोगों की सुरक्षा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले की लगातार घटनाएं चिंताजनक है। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाया जाना बंद होना चाहिए और क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों के माध्यम से निर्बाध नौवहन और व्यापार शीघ्र बहाल किया जाना चाहिए। मंत्रालय ने बताया कि रियाद में भारतीय दूतावास स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
2: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित स्थानीय चुनाव को पूरी तरह दिखावा बताया है और कहा है कि इससे सच्चाई छिप नहीं सकती। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि विरोध प्रदर्शन और पाकिस्तानी सैनिकों की हिंसा ही वहां की वास्तविकता है।
4: इस वर्ष जून से अब तक वहाँ जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
2: श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि अगले महीने 12 और 13 तारीख को भारत की मेजबानी में दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए बिम्स्टेक के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को आमंत्रित किया गया है। भारत इस साल ब्रिक्स संगठन के अध्यक्ष के रूप में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह बैठक आज और कल भोपाल में आयोजित होगी।
5: भोपाल में आज से ब्रिक्स देशों की बड़ी सांस्कृतिक बैठक शुरू हो रही है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ये आयोजन 8 अगस्त तक चलेगा। इसमें ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह और संस्कृति मंत्रियों की बैठकें होंगी। इसके चलते भोपाल को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तरह सजाया गया है। इस आयोजन से सांस्कृतिक संवाद बढ़ेगा और सदस्य देशों के बीच सहयोग मजबूत होगा। पहले 2 दिन अधिकारी स्तर पर चर्चा होगी जबकि आखिरी 2 दिन मंत्री स्तर पर घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया जाएगा। भारत ने इस बैठक में 2 अहम प्रस्ताव रखे हैं। पहला, कलाकारों और सांस्कृतिक धरोहर की जानकारी के लिए साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना और दूसरा, यूनेस्को में सदस्य देशों के साथ मिलकर साझा नामांकन भेजने की पहल करना। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार।

0: भोपाल।
1: ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की 13वीं बैठक आज से उड़ीसा के भुवनेश्वर में होगी। ये बैठक 7 अगस्त तक चलेगी। इसी दौरान संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों की तीसरी बैठक भी चलेगी। शिक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इन बैठकों में शिक्षा मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और सदस्य देशों के प्रतिनिधि विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड 555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा घोषणा करेगा। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे नवीनतम रेपो रेट की घोषणा करेंगे। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक सोमवार को शुरू हुई थी। नीतिगत निर्णय मौजूदा भू राजनैतिक तनाव और अमरीकी फेडरल रिजर्व पर दबाव के महत्वपूर्ण दौर में आ रहा है। यह आशा है कि आरबीआई प्रमुख रेपो रेट में कोई बदलाव न करते हुए इसे 5.25% पर ही रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और जारी करने को कहा है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों से शिकायत निपटान प्रणाली मजबूत करने, धोखाधड़ी की गई धनराशि वापस लाने तथा डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने की प्रक्रिया में सुधार करने को कहा है। झारखंड लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित तौर पर पेपर लीक होने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने राज्य के बाहर के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि उन्हें अपराध जांच विभाग सीआईडी की जांच पर भरोसा नहीं है।
2: झारखंड की राजधानी रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम इस समय युवाओं के आक्रोश और आंसुओं का गवाह बना हुआ है। जेपीएससी परीक्षा में कथित धांधली के खिलाफ छात्र सड़कों पर हैं, लेकिन विडंबना देखिए, व्यवस्था का रुख इतना कड़ा है कि कड़ाके की धूप और खुले आसमान के नीचे बैठे इन प्रदर्शनकारियों को पीने का पानी, खाना और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नसीब नहीं हो पा रही है। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने इस मुद्दे पर विपक्ष के मौन रहने पर तीखा हमला बोला है। आंदोलन स्थल पर बुनियादी संकट गहराने के बाद गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने भी हेमंत सोरेन सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: मेडिकल परामर्श समिति नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के पहले चरण का पंजीकरण आज से शुरू करेगी। आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार पहले चरण का पंजीकरण और शुल्क भुगतान आज से 12 अगस्त दोपहर 3 बजे तक होगा। हालांकि शुल्क भुगतान 12 अगस्त शाम 6 बजे तक किया जा सकता है। एक रिपोर्ट।
3: अभ्यर्थी कल से 13 अगस्त तक अपनी पसंद दे सकते हैं। अपना चयन बताने की सुविधा 13 अगस्त सवेरे 11 बजे बंद हो जाएगी। पहले चरण की सीट आवंटन प्रक्रिया 13 अगस्त से 16 अगस्त तक चलेगी और परिणाम 17 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। जिन उम्मीदवारों को सीटें आवंटित की गई हैं, उन्हें 18 अगस्त से 22 अगस्त के बीच अपने संबंधित संस्थानों में रिपोर्ट करना होगा। संस्थान 23 अगस्त को उम्मीदवारों के डेटा का सत्यापन करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने उम्मीदवारों को एमसीसी पोर्टल पर पंजीकरण, चयन भरने और सीट आवंटन प्रक्रिया समझने में सहायता करने के लिए वीडियो जारी किए हैं। इन वीडियो का उद्देश्य काउंसलिंग प्रक्रिया को सरल और विद्यार्थी अनुकूल तरीके से समझाकर उम्मीदवारों को मार्गदर्शन देना है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: उत्तर प्रदेश सरकार राज्य परिवहन निगम की बसों में 60 वर्ष और इससे अधिक आयु की महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा देगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके लिए बजट में समुचित प्रावधान किए गए हैं।
4: वित्तीय वर्ष 2026-27 के पहले अनुपूरक बजट में इस विशेष पहल को लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में वरिष्ठ नागरिक महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा का वायदा किया था। इस निर्णय से राज्य भर में लाखों वरिष्ठ महिलाओं को आर्थिक राहत मिलेगी। इसके अलावा

0: सरकार ने महिला कल्याण विभाग को 1,094 करोड़ रुपए अतिरिक्त आवंटित किए हैं, जिससे निराश्रित महिला पेंशन योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना और महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों को मजबूती मिलेगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में अत्यधिक तेज वर्षा कर रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी आज तेज बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड और मध्य प्रदेश में कल तक तेज बारिश हो सकती है। केरलम में आज भी तेज वर्षा जारी रहेगी, हालांकि कल की तुलना में आज बारिश में कुछ कमी का अनुमान है। असम में लगातार तेज बारिश जारी है और इससे राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने असम के लगभग सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है और अगले 24 घंटों में पूरे राज्य में भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पीवी सिंधु को बीडब्ल्यूएफ विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में नवी वरीयता दी गई है। ये चैंपियनशिप 17 से 23 अगस्त तक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। चैंपियनशिप में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को पुरुष डबल्स में 5वीं वरीयता मिली है। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स में 14वीं और ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रिस्टो मिक्स डबल्स में 15वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हैं। चैंपियनशिप की पांचों स्पर्धाओं में भारत के दो दो खिलाड़ी भाग लेंगे। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 आज से अमेरिका में शुरू हो रही है। इसमें 36 सदस्यों वाली भारतीय टीम हिस्सा लेगी। राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में ग्रीष्मकालीन वार्षिक प्रदर्शनी 16 अगस्त से आम जनता के लिए खोल दी जाएगी। अमृत उद्यान का 15 सितंबर तक भ्रमण किया जा सकता है। अमृत उद्यान में प्रवेश निशुल्क है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर साइबर ठगी को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश और एयर इंडिया की फ्लाइट 2379 के अचानक हवा के दबाव में फंसने से यात्रियों की हुई कठिनाई के समाचार सबसे ऊपर छाए हुए हैं। जनसत्ता का शीर्ष समाचार है, साइबर ठगी वाले खातों से निपटने के लिए 4 हफ्ते में बने मानक संचालन प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट। दैनिक जागरण ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, 4 सप्ताह के भीतर म्यूल खातों से निपटने को एसओपी बनाए आरबीआई। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, डिजिटल अरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, हाथों पर नियम बनेंगे। पंजाब केसरी ने एयर इंडिया विमान की उड़ान संख्या 2379 के समाचार को सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। शीर्षक दिया है, एयर इंडिया विमान टर्बुलेंस में फंसा, पत्र ने इस घटना में घायल यात्रियों की तस्वीरें भी प्रमुखता से छापी हैं। दैनिक भास्कर ने इस खबर को शीर्षक दिया है, थाईलैंड से दिल्ली आ रहा विमान टर्बुलेंस में फंसा, डीजीसीए ने जांच के आदेश दिए। दैनिक ट्रिब्यून ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है, जन्म मृत्यु पंजीकरण सुरक्षा उपाय नागरिकों की मुश्किल ना बने।
1: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लाल सागर में यमन तट के पास हमले के बाद भारतीय ध्वज वाला जहाज डूबा, सभी 13 भारतीय नाविक सुरक्षित। भारतीय रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के निर्देश दिए। नीट यूजी काउंसलिंग के पहले चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आज से। और मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Akashwani presents Morning News. Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. India flagship sinks after attack in Red Sea. All 13 Indian sailors rescued. India condemns attack on commercial vessel. Reserve Bank of India to announce its bi-monthly monetary policy review this morning. Supreme Court asks RBI to prepare SOP for dealing with mule accounts and bank accounts linked to cyber fraud. Online registration for

ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕਿਵੇਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦਾ ਬਾਈ?

चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। राशिद अली की आवाज में जाने तू या जाने ना फिल्म से ये गाना, अब्बास टायर वाला के बोल, ए आर रहमान।

आप सुन रहे थे ये गाना जाने तू या जाने ना फिल्म से। वैसे ये फिल्म जब रिलीज हुई थी तब इसके फैंस तो बहुत सारे बने थे, लेकिन इस फिल्म से ज्यादा फैंस बने इसकी एक्ट्रेस यानी जेनेलिया डिसूजा के। आज विविध भारती पे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं जेनेलिया डिसूजा का बर्थडे। फोर्स फिल्म से आप सुन रहे हैं गाना के और सुचित्रा की आवाजों में, जावेद अख्तर के बोल, हैरिस जयराज का संगीत।

दिल धड़क धड़क गया, अटक अटक ना माना, लटकी ले उलझ गए कैसे कोई हट गया, मन से लिपट अनजाना, वो नील अंग सा रूप रंग ले छन समाधि प्रेम भंग, अंग अंग फिर मन भंग और तन पतंग, मैं संग संग और कहना।

अतरंगी फिल्म से, अतरंगी रे फिल्म से आप सुन रहे थे ये गाना हरिचरण शेषाद्री, श्रेया घोषाल, सूर्यांश, स्वागत राठौड़ और सार्थक कल्याणी की आवाजों में इरशाद कामिल के बोल, ए आर रहमान का संगीत। चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गाने इस अंतराल के बाद।

आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। अभय जोधपुरकर की आवाज में जीरो फिल्म से गाना इरशाद कामिल के बोल, अजय अतुल का संगीत।

0: कार्यक्रम का अगला गाना मेट्रो इन दिनों फिल्म से। पैपॉन की आवाज में गालिब और संदीप श्रीवास्तव के बोल, प्रीतम का म्यूजिक।
1: आह को चाहिए एक असर होते तक।

लूडो फिल्म से अरिजीत सिंह की आवाज में सईद कैदरी के बोल और म्यूजिक है प्रीतम का।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। वो बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

0: उनके अभिनय, उनकी खूबसूरती पर भंवरे भी गुनगुनाने लगते हैं।
1: आवारा भंवरे जो हौले हौले गाए, फूलों के तन पे हवाएं सरसराए।
0: फिल्मी पर्दे पर इनकी अदाएं और अभिनय की तारीफ के लिए चांद सितारों के उपमान भी फीके पड़ जाते हैं।

5 अगस्त 1974 को जन्मी काजोल हिंदी सिनेमा की सफलतम अभिनेत्रियों में से एक हैं। उनके कुशल अभिनय के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा था।

काजोल को अभिनय की तालीम तो विरासत में मिली। काजोल की नानी शोभना समर्थ मूक फिल्मों के जमाने से समर्थ अभिनेत्री थीं। बाद के दिनों में उन्होंने कई सशक्त फिल्मों में उत्कृष्ट भूमिका निभाई। शोभना

की दोनों बेटियां तनुजा और नूतन अपने अभिनय कौशल में माहिर थीं और उन्होंने अपने अभिनय कौशल से लोगों को मोहित किया। माँ तनुजा और मौसी नूतन से काजोल को अभिनय की बारीकियां खुद ब खुद सीखने को मिल गईं।

काजोल की नानी, उनकी माँ और मौसी तो फिल्मी दुनिया की विशिष्ट अदाकारा तो थी ही, उनके चाचा जॉय मुखर्जी और देव मुखर्जी गजब के कलाकार थे। उनके खानदान में और भी एक्टर्स थे, रानी मुखर्जी, मुनीश बहल, ये जवानी है दीवानी जैसी फिल्म बनाने वाले अयान मुखर्जी। परिवार में इतने सारे फिल्मी कलाकारों का जमावड़ा, फिल्मी परिवार के बीच बड़ी चुलबुली और शरारती सी काजोल पढ़ाई में अपना मन लगा रही थी। दोस्तों, काजोल के माता पिता ने पहाड़ों के गोद में बसी जगह पंचगनी के सेंट जोसेफ कॉलेज में उन्हें दाखिला दिलवा दिया, जहां उन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। लेकिन कॉलेज के दिनों में ही उन्हें अभिनय का चस्का लग गया। पढ़ाई के दिनों में ही काजोल को साहित्य में गहरी दिलचस्पी थी। वे साहित्यिक किताबें पढ़ती थीं और बहुत सारी कहानियां पढ़ती थीं। एक बार वे कॉलेज से, पंचगनी से मुंबई आई। वहां राहुल रवेल की फिल्म की शूटिंग चल रही थी। वहां उन्होंने कैमरे के सामने कुछ परफॉर्म किया। बस वहीं से उनके अभिनय की शुरुआत हुई। महज 17 साल की उम्र में उन्होंने अभिनय की दुनिया में कदम रखा। 1992 की रोमांटिक ड्रामा फिल्म बेखुदी में उन्हें एक बड़ा ही सुंदर किरदार मिल गया निभाने के लिए।

और उनके साथ थे नवोदित अभिनेता कमल सदाना और उनकी माँ तनुजा भी इस फिल्म में साथ थीं। काजोल ने इस फिल्म में राधिका का किरदार निभाया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास साबित नहीं हुई, लेकिन काजोल के अभिनय की बहुत बहुत सराहना हुई। और उसके बाद अब्बास मस्तान की क्राइम थ्रिलर फिल्म बाजीगर में उन्हें रोल मिला, जिसमें उनके साथी कलाकार थे शाहरुख खान और शिल्पा शेट्टी।

0: चीचा।
1: अभिनय की बारीकियों के कारण काजल को बहुत जल्द बेहतरीन रोल मिलने लगे और काजोल ने अभिनय की चुनौतियों को स्वीकार करना शुरू कर दिया और खुद को साबित किया। काजोल ने यूं तो बहुत सारे कलाकारों के साथ काम करके अपने अभिनय का जलवा दिखाया, लेकिन शाहरुख खान के साथ उन्होंने बहुत सारी हिट फिल्में दी।

सन 1995 में शाहरुख खान के साथ एक बेमिसाल शानदार और जबरदस्त हिट फिल्म आई दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इस फिल्म ने हिंदी सिनेमा में इतिहास का एक खास पन्ना लिख दिया। एक सिनेमा घर में 1000 हफ्ते से भी ज्यादा चलने का रिकॉर्ड बनाया है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे इस फिल्म ने।

मुंबई के एक सिनेमा घर में आप अभी भी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ये फिल्म देख सकते हैं। सन 1998 में शाहरुख खान के साथ काजोल की एक और हिट फिल्म आई कुछ कुछ होता है।

किया बल्कि नेगेटिव रोल में भी काजोल बेस्ट एक्ट्रेस कहलाई। उन्होंने फिल्म गुप्त में रोल किया नेगेटिव लेकिन रिजल्ट रहा पॉजिटिव। इस तरह काजोल ने साबित कर दिया कि काजोल हीरोइन का रोल करें या खलनायिका का रोल करें, रहेंगी वे उत्कृष्ट अदाकारा।

0: लड़की के जीवन में एक रोज एक राजकुमार आता है। वो राजकुमार उसके सपनों में नए रंग भरता है। काजोल के फिल्मी करियर और निजी जिंदगी के हीरो बने अजय देवगन।
1: देखो देखो जानम हम दिल अपना तेरे लिए लाए, सोचो सोचो दुनिया में क्यों आए, तेरे लिए आए।
0: अजय देवगन के साथ काजोल ने कुछ बेमिसाल फिल्में दी। ये फिल्म है इश्क।

क्या करे। इस फिल्म में उनके साथ थे अजय देवगन। 1994 में आई फिल्म हलचल में काजोल ने शर्मिली सिन्हा की भूमिका निभाई थी। सन 1998 में फिल्म आई थी प्यार तो होना ही था, जिसमें काजोल ने संजना पटेल का किरदार अदा किया था।

राजू चाचा, गुंडा राज और यूमी और हम अजय देवगन के साथ ये हिट फिल्में काजोल ने दी। फिल्म यूमी और हम में काजोल अल्जाइमर्स नाम की बीमारी से ग्रसित होती हैं। अजय देवगन के साथ ये एक मार्मिक

सन 2006 में काजोल की फिल्म आमिर खान के साथ आई थी। फिल्म थी फना, जिसमें उन्होंने एक नेत्रहीन कश्मीरी लड़की की भूमिका निभाई थी। खास बात यह है कि इस फिल्म में ऋषि कपूर पर्दे पर नजर आए थे।

आमिर खान के साथ कुछ फिल्में और की थी काजोल ने, जैसे फिल्म इश्क। हालांकि फिल्म इश्क में आमिर खान के साथ थी जूही चावला। काजोल की बेहद कमर्शियल फिल्म आई थी हम आपके दिल में रहते हैं। इस फिल्म में काजोल के साथ पर्दे पर नजर आए थे अनिल कपूर।

काजोल बनी थी मेघा वर्मा। सन 2000 में आई फिल्म राजू चाचा, सन 2001 में फिल्म कुछ खट्टी कुछ मीठी।

0: कुछ मीठी।
1: दोस्तों, काजोल को उनके बेहतरीन अभिनय के लिए 6 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया। सन 1996 में काजोल को मिला बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर पुरस्कार। फिल्म थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।

सन 1999 फिल्म कुछ कुछ होता है के लिए मिला बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड। सन 2002 में कभी खुशी कभी गम फिल्म के लिए मिला काजोल को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर। अभिनेता थे शाहरुख खान। सन 2007 में आमिर खान के साथ काजोल की फिल्म आई फना, जिसके लिए मिला उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर पुरस्कार। सन 2011 में फिल्म माय नेम इज़ खान के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। इस फिल्म में अभिनेता थे शाहरुख खान।

काजोल के फिल्मी करियर की एक बड़ी बेहतरीन फिल्म आई थी तानाजी, जिसमें अजय देवगन बने थे तानाजी मालूसरे, काजोल बनी थी सावित्री बाई और सैफ अली बने थे उदय भानु सिंह राठौड़। बहुत सारे फिल्मी समीक्षकों ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की थी।

सैफ अली खान के साथ काजोल की एक और फिल्म आई थी ये दिल लगी, जिसमें साथ में अक्षय कुमार भी थे। एक बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म आई थी काजोल के फिल्मी करियर की सन 1998 में दुश्मन, जो बदला लेने वाले की भूमिका निभाने के लिए उनकी बड़ी प्रशंसा हुई थी।

काजोल की अभिनय यात्रा आज भी जारी है। सन 2015 में उनकी एक कॉमेडी फिल्म आई थी दिलवाले। फिल्म खूब चली थी।

सन 2021 में आई फिल्म त्रिभंगा, इसके बाद सन 2022 में आई फिल्म सलाम वेंकी। काजोल ने कुछ वेब सीरीज भी की, जैसे कि द ट्रायल। काजोल ने अपनी फिल्मी करियर में हर तरह के किरदार निभाए। वे कहीं चुलबुली लड़की के रूप में पर्दे पर नजर आईं, कहीं गंभीर स्त्री, तो कहीं बेहद रूमानी प्रेमिका या पत्नी।

फिल्मों में अभिनय के अलावा काजोल एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और विधवाओं और बच्चों के साथ अपने काम के लिए वे काफी चर्चित हैं। काजोल ने सन 2008 में कुछ रियलिटी शोज भी किए जिसमें एक टैलेंट जज के रूप में भी उन्होंने काम किया।

0: काजोल का फिल्मी करियर काफी विराट है। उनके पूरे करियर को समेटकर सारी फिल्मों का जिक्र करना एक कार्यक्रम में संभव नहीं है। आज बस इतना ही।
1: जाती हूँ मैं,
2: जल्दी है क्या,
1: धड़के जिया
2: वो क्यों भला।
0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जानी मानी

0: शोध, आलेख और स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का था। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

आवाज़ दी दुनिया दे प्यारे दोस्तो, मिति 6 अगस्त 2026 दिन वीरवार। आप जी का दोस्त बलजीत शर्मा ते आप जी दी बहुत ही पसंदीदा रेडियो कंपेयर ते एडिटर गुरदीप कौर गिल जी आप जी दी खिदमत दे विच सरोतियो लेके आ रहे हैं एक विशेष प्रोग्राम पुत्र मिठड़े मेवे, मां दी अरदास ते प्यो दा विश्वास।

सुनना ना भुलना। वाचक ते निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा, संपादन विशेष दिशा निर्देश ते तकनीकी सहयोग गुरदीप कौर गिल जी। दोस्तों समा

यह है आकाशवाणी रेनबो 102.6 एफएम और अब समय है मुख्य समाचारों का। लाल सागर में यमन तट के पास भारतीय ध्वज वाले जहाज पर हमला हुआ है। जहाज पर सवार सभी 13 भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। भारत ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की 13वीं बैठक और वरिष्ठ अधिकारियों की तीसरी बैठक आज से ओडिशा के भुवनेश्वर में शुरू हो रही है। ये बैठक 7 अगस्त तक चलेगी। रिजर्व बैंक ने द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की। रेपो रेट 5.25% पर ही बरकरार। नीट यूजी काउंसलिंग के पहले चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आज से शुरू हो रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संरचक प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित स्थानीय चुनाव को दिखावटी करार दिया है। भारत ने कहा है कि इससे वास्तविकता छिप नहीं सकती। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उन दावों का खंडन किया है जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधार कार्ड वाले विद्यार्थियों को मुफ्त विद्युत साइकिल देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान 16 अगस्त से आम जनता के लिए खुलेगा। आगंतुक 15 सितंबर तक अमृत उद्यान का भ्रमण कर सकेंगे। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेताओं को सम्मानित किया है। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य परिवहन निगम की बसों में 16 वर्ष और इससे अधिक आयु की महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा देगी। और खेलों में भारत के कृष्ण प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्ण मूर्ति रॉय कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। और

अलावा विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु को 9वीं वरीयता मिली है। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने भी 5वीं वरीयता हासिल की है। और मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। ये थी एफएम रेनबो पर इस घंटे की खास खबरें।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: ये है 102.6 FM रेनबो, 11:02 दिखा रही है स्टूडियो क्लॉक. मैं निशा यहाँ पर पहुंच गई हूँ बॉलीवुड ट्रेल्स लेकर, जहां पर बॉलीवुड की कभी बड़ी सारी बातें होंगी. वैसे देखिए, बातें तो हम सुबह से ही करना शुरू कर देते हैं, आप भी है ना, हम भी, कभी अपने फ्रेंड्स के साथ, कभी अपने परिवार वालों के साथ में, और कभी कभी हमें चुप होने का मौका मिलता है. हाँ, अगर योग और मेडिटेशन करने की आदत होती है तो देखो शांत रहना पड़ता है. और बहुत लोग कहते हैं, शिकायत करते हैं कि आंख बंद करके जब भी हम ध्यान करते हैं ना, तो हमारे अंदर का शोर और ज्यादा बढ़ जाता है. यस, बिगनर लेवल पर भाई ये होता है, लेकिन उसके बाद नहीं होता है. बट लेकिन अभी तो भाई मेडिटेशन करने का कोई टाइम नहीं है. आई नो ये काम का समय है और काम हम सब कर रहे हैं, तो इसीलिए बस अपने आंखें खुली रखिए और कानों को खुला खुला जरूर रखिए, क्योंकि जो लिसनिंग होती है ना, ये भी मेरे अकॉर्डिंग मतलब एक तरह का बड़ा ही क्रिएटिव मेडिटेशन है. यहाँ पर हमारे सामने म्यूजिक होता है, बातें होती हैं, लेकिन कोई पिक्चर नहीं होता, तो उस पिक्चर के क्रिएटर हम खुद हो सकते हैं. तो लिसनिंग अपने आप में ही एक बहुत ब्यूटिफुल क्रिएटिव एक्सरसाइज है, आई बिलीव सो. तो कीप लिसनिंग 102.6 FM रेनबो. मैं निशा रहूंगी आपके साथ इस आवर.

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: दिनांक 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

रंगों से भरे हुए एफएम रेनबो 102.6 को आप सुन रहे हैं। गुड मॉर्निंग जी, बॉलीवुड ट्रेल से प्रोग्राम का नाम। और यस, यहाँ पर बॉलीवुड की और बॉलीवुड से जुड़े कलाकारों की बातें तो होंगी ही। और कुछ लोग हमारी फिल्म इंडस्ट्री में स्पेशली ऐसे होते हैं जो कुछ ना कुछ करने से उन्हें पॉपुलैरिटी मिलती है, पब्लिसिटी मिलती है, कुछ ना करने से भी किसी किसी को मिल जाती है। भाई फेमस होना चाहिए उसके लिए। इमरान खान इज वन सच नेम, हमारे आमिर खान जी के रिश्तेदार। बहुत सालों से, आई थिंक ऑलमोस्ट एक डिकेड से वो फिल्मों से गायब है, और ये पूरे डिकेड में उन्होंने अच्छा खासा ब्रेक लिया है, अपने आप को रिज्यूविनेट किया है, ऐसा वो आए दिन इंटरव्यूज में कहते रहते हैं। बट अब फाइनली उन्होंने अनाउंस किया है कि यस, ही इज कमिंग बैक, फिल्म्स में आ रहे हैं। और एक फिल्म है अधूरे हम अधूरे तुम, जिसके लिए शूटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं ये, और जल्दी ये फिल्म प्लेटफॉर्म्स पर आएगी और आप इस फिल्म को इंजॉय करेंगे। इनकी कमबैक फिल्म होगी जो कि एक ग्रोन अप्स की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, और इन्होंने कहा है कि बिल्कुल एज अप्रोप्रिएट रोल इस फिल्म में इनको मिला है, मतलब जिस एज फेज में ये हैं उसी कैरेक्टर को वो निभा रहे हैं। आई थिंक अपना एक कनेक्शन हमेशा ढूंढते हैं ये अपने कैरेक्टर के साथ में, मतलब अब परफेक्शनिस्ट के रिश्तेदार हैं तो ऐसा तो इफेक्ट आ ही जाता है ना सभी के सामने। फिलहाल अधूरे हम अधूरे तुम तो जब आएंगे तब आप देखेंगे, लेकिन ये गाना ये भी कुछ ऐसे शब्दों को लेकर आया है।

तुम्हारे 102.6 FM रेनबो, मेरा नाम है निशा। वैसे एक और लड़की मेरे अलावा जिसकी बात मैं करने वाली हूँ, अगर वो हिंदी सिनेमा में ना होती ना तो बहुत कुछ मुझे लगता है अधूरा रह जाता। बड़ी ही नटखट, नादान और इतनी शरारती थी कि इनकी माँ ने बचपन में इन्हें कह दिया था कि हाय काश तुम्हारी भी एक बेटी हो, बिल्कुल तेरे ही जैसी हो। उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि ऐसे बच्चे के पेरेंट्स होना क्या होता है। पिताजी लग्जरी कार्स के इतने शौकीन थे तो वो एक बड़ी सी लग्जरी गाड़ी के नाम पर ही इनका नाम रखना चाहते थे। खैर वो मम्मी जी ने होने नहीं दिया। आपको पता ही चल गया मैं किसकी बात कर रही हूँ। भाई हमारी प्यारी काजोल आज जो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं, और असल जिंदगी में जब भी हम काजोल की बात करते हैं ना तो वो DDLJ की सिमरन याद आ जाती है ना, वो स्वीट सिंपल लव स्टोरी याद आ जाती है। उसके अलावा इन्होंने बहुत सारी सुपरहिट फिल्में की। 1974 में मुंबई में आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था। और एक ऐसे परिवार से आती हैं जो कि फिल्मी बैकग्राउंड रखता है। माँ तनुजा और पिताजी जो इनके शोमू मुखर्जी, वो एक निर्माता थे। अब फिल्मों के माहौल में पली बड़ी, लेकिन हाँ कहती हैं कि हमेशा स्ट्रगल कर कर ये आगे आई हैं और इनकी एक्टिंग तो हम सबको पसंद है ही। खुदी नाम की फिल्म से इन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास सफल नहीं रही थी ये फिल्म, लेकिन अपने अभिनय को धीरे धीरे धीरे इन्होंने नोटिस करा ही दिया, खास तौर पर जब बाजीगर आई थी, है ना। और उसके अलावा इन्होंने तो कभी खुशी कभी गम, हलचल, फना, माय नेमिस खान, इश्क, करण अर्जुन और दिल क्या करे, एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। और काजोल और अजय देवगन की प्रेम कहानी भी भाई काफी फेमस रही, लोगों ने इनकी जोड़ी को पसंद करते हैं। लेकिन काजोल एक इंटरव्यू में कह रही थी एक बारी कि भाई हमारी फिल्म स्टोरी बिल्कुल भी फिल्मी नहीं थी, जो लव स्टोरी थी बहुत ही ज्यादा सिंपल, एक दोस्ती से शुरू हुई, धीरे धीरे समझदारी से आगे बढ़कर ही हमने जो है आगे इससे एक रिश्ते का नाम दिया था। चलो जो भी किया समझदारी का काम किया ना, उसमें हम खुश हैं एज अ फैन। सो काजोल जी, वेरी हैप्पी बर्थडे। हमारी प्यारी शरारती, एकदम बेबाक, हाजिर जवाब और दमदार एक्टिंग, अगर इन शब्दों से किसी को बयां किया जा सकता है ना तो वो काजोल ही है। बॉलीवुड की चुलबुली सुपरस्टार को अ वेरी हैप्पी बर्थडे टुडे।

0: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। फार्म टू सिटी, फार्म टू सिटी, फार्म
1: टू सिटी, फार्म टू सिटी। NCRAPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
2: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

नजर न लगे भाई, सच में बड़ा अच्छा मौसम बाहर हुआ हुआ है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। फिलहाल बाहर का तापमान 29 के आसपास बना हुआ है। हाँ जी, आई अग्री कि ह्यूमिडिटी है दिल्ली एनसीआर के वेदर में, बट कोई नहीं जी, आप गाने सुनो, एंजॉय करो फिल्म रेनबो पर। बॉलीवुड ट्रेल्स, वेरी गुड मॉर्निंग, मैं निशा आपके साथ में। और यस आई भाई, रेडियो तो आप सुन रहे हैं, ये तो मुझे आपकी प्रेजेंस लगातार दिखाई दे रही है, और बॉलीवुड सरताज बनना चाहते हैं ना। हाँ, तो अब ये मुझे ऐसा लगता है कि प्लास्टिक एज, क्योंकि हमें चारों तरफ प्लास्टिक बहुत ज्यादा नजर आता है, ऐसा मैं मानती हूँ कि ये प्लास्टिक एज है। और साथ ही सोशल मीडिया, इंटरनेट जब वाइडली अवेलेबल है, तो आप कितनी जल्दी मेरे सवाल का आंसर कर पाते हैं। अभी भी खटाखट भेजे जा रहे हैं। पहले मैं सवाल तो पूछ लूँ, रामायण का ट्रेलर देख लिया आपने? हाँ, सब लोग लगे हैं बुराइयां करने में और कोई तारीफ करने में, मतलब जिसको जो फील होता है। तो ये जो रणबीर कपूर स्टार रामायण है, इस रामायण सीरीज में, एक फिल्म में शूर्पनखा का कैरेक्टर है, वो कौन सी एक्टर एक्ट्रेस हैं जो प्ले कर रही हैं, बस उन्हीं का नाम आपको मुझे लिखकर भेजना है। 9868107070 इज द नंबर। आप अपनी नाम और जगह के साथ में ये बस मुझे मैसेज कर दीजिए राइट आंसर, और मैं आपको बस ऐसे अच्छे अच्छे गाने भेजती रहूंगी, युहानी और जुबिन नौटियाल की आवाज में, राइट हियर ऑन 102.6 FM।

आप भी सुन लीजिए, दिस इज 102.6 आकाशवाणी रेनबो. मैं निशा, बॉलीवुड ट्रेल्स इज द नेम ऑफ द शो. और आप वैसे सुबह से मुझे, मतलब मैं सोचती हूँ मैं यहाँ फिल्म्स की अपडेट देने के लिए आती हूँ, बातें करने के लिए आती हूँ, लेकिन आप भी ना कुछ कम नहीं है, लगातार मैसेजेस करते रहते हैं. काजोल के बर्थडे के बारे में भी पहली अनाउंसमेंट मैंने देख ली थी, शी इज टर्निंग 52 ईयर्स, मतलब की हो गई है वो आज. और एक और एक्ट्रेस है, जेनिलिया डिसूजा, जिसका नाम मुझे नजर नहीं आया, शी इज टर्निंग 39 टुडे. और आज ये भी बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं अपनी फैमिली एंड फैंस के साथ में. बड़े, मतलब बड़ी ही चुलबुली अदाओं वाली है, बहुत खूबसूरत मुस्कान है इनकी, और इसी वजह से लाखों के दिलों पर राज करती हैं जेनिलिया डिसूजा. रितेश के साथ इनकी शादी हुई है और बहुत ही अच्छे हॉट कपल माने जाते हैं बॉलीवुड के. और 2003 में इन दोनों ने ही एक साथ तुझे मेरी कसम इस फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की थी, और तभी से इनका कनेक्शन जो है वो जुड़ गया था. सीक्रेट मीटिंग शुरू हो गई थी, ऐसा कई बारी अपने इंटरव्यूज में बताते हैं. और जेनिलिया की बात करते हैं भाई, आज 5 अगस्त के दिन इनका जन्मदिन आता है. कॉलेज में पढ़ाई लिखाई अच्छे से की है इन्होंने, और स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखते थे. और पता है आपको, जेनिलिया स्टेट लेवल एथलीट रह चुकी हैं अपने अपने ग्रेजुएशन के टाइम पर, और ऑल्सो नेशनल लेवल फुटबॉलर भी रही हैं ये. इन्होंने फुटबॉल भी काफी खेला है. बस जब प्यार हो गया, शादी हो गई, और काफी लंबे समय तक इन्होंने ब्रेक ले लिया था फिल्म से. और आई थिंक 2012 में इनकी शादी हुई थी, उसके बाद से दो बेटे इनके, रेहान और राहिल, उनके साथ बहुत सारी अपनी रील्स ये डालते रहते हैं इंस्टाग्राम पे, मैं देखती रहती हूँ इनको. एक लंबा ब्रेक लेने के बाद फिलहाल ये वापसी कर चुकी हैं फिल्मों में, और इन्होंने शुरुआत तो 2022 में ही कर दी थी. वेड नाम की एक मराठी फिल्म से इन्होंने कमबैक किया था, एंड दिस इज अनदर मास्टरपीस, सितारे जमीन पर. आई लव द फिल्म. इसमें भी जेनिलिया का छोटा सा रोल था, एंड वेरी हैप्पी बर्थडे टू जेनिलिया ऑल्सो.

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026, जहां आस्था का प्रकाश और विरासत का गौरव मिले,
3: जहां संस्कृति की सदियों पुरानी धरोहर भविष्य की नई राहें गढ़े। आइए बने एक ऐतिहासिक संगम का हिस्सा।
2: दिल्ली पर्यटन DTTDC द्वारा आयोजित स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026,
3: 11 अगस्त 2026 प्रातः 10 बजे से दिल्ली पर्यटन के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारण।
4: NCRAPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।

102.6 FM रेनबो है ये 11:45 और बॉलीवुड ट्रेल्स आप सुन रहे हैं। बॉलीवुड सरताज बनने के लिए बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही जवाब मुझे भेज दिए हैं ऑलरेडी। देर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ नेम्स आई कैन सी और सभी ने राइट आंसर्स दिए हैं। सवाल मेरा ये था कि जो रामायण का ट्रेलर, जो 4 मिनट का ट्रेलर रणबीर कपूर स्टार ये इसका ट्रेलर आया है, क्या आपने देख लिया है? और दूसरा ये कि इसमें शूर्पणखा के कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन हो गया है, तो वो कौन सी कैरेक्टर एक्ट्रेस हैं रियल में जो उसे प्ले कर रही है? निखिल जैन जी बिल्कुल सही जवाब आपने भेजा है, रवि ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है, विनोद जी का बिल्कुल सही जवाब हमें आया है और उसके अलावा हमें आशु ने लखनऊ से बिल्कुल ठीक जवाब भेजा है, एब्सोल्युटली राइट। और संदीप जी आप भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बठिंडा से संदीप जी का मैसेज था ये। और वाराणसी से तनुजा शाह ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है हमें और इसी तरह देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट। अब इन सभी सही जवाबों में से कोई एक जो हमारा फाइनली बॉलीवुड सरताज बनेगा उसके साथ ऑन एयर हम लोग बात करेंगे। आप हाँ ये फैंटास्टिक से गाना एंजॉय कीजिए फ्रॉम द मूवी कॉकटेल 2।

0: आप सुन रहे हैं 102.6 FM रेनबो बॉलीवुड ट्रेल्स और बॉलीवुड सरताज का क्वेश्चन मैंने पूछा था. बहुत सारे सही जवाब आए और फाइनली द राइट आंसर के साथ में हमारे आज के बॉलीवुड सरताज मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं. हेलो विनोद जी, स्वागत है आपका FM रेनबो पर.
1: थैंक यू जी.
0: अपने आसपास के लोगों को फिलहाल के लिए तो थोड़ी शांति बनाने के लिए कह दीजिए. जी, मीनवाइल आपसे मैंने सवाल पूछा था कि जो रामायण का लेटेस्ट ट्रेलर रिलीज हुआ है, जिसे लोग पसंद कर रहे हैं, क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक कैरेक्टर जो है शत्रुघ्न का, वो कौन सी एक्ट्रेस जो है वो निभा रहे हैं, जरा बताइए क्या है उनका नाम.
1: रकुलप्रीत सिंह.
0: रकुलप्रीत सिंह. यस, एब्सोल्युटली राइट आंसर विनोद जी, कंग्रेचुलेशन, सही जवाब आपने दिया है. और रामायण आपको पसंद है विनोद? बचपन से है ना. मेरा भी कुछ ऐसे है, जितनी मर्जी बार देखने को ये मिले ना ये कहानी, हमेशा हमें कुछ ना कुछ सिखाया के ही जाती है ना.
1: हाँ, मैंने तो पढ़ी भी हुई है.
0: वेरी नाइस. तो कौन सा फेवरेट कैरेक्टर है आपका रामायण में, अगर एज अ ग्रंथ में से मैं पूछूं?
1: राम जी और हनुमान जी.
0: अच्छा, और इसका क्या कारण है, क्या एक सीख आपको राम जी हनुमान जी से मिलती है?
1: और मुझे सीख तो राम जी तो आप जानती है कि आदर्श पुरुष थे, वो
0: हाँ जी,
1: तो पुरुषोत्तम भी उन्हें कहा जाता है.
0: हाँ जी,
1: और हनुमान जी जैसा महान सेवक आज तक दुनिया में पैदा नहीं हुआ और ना कभी होगा.
0: हाँ, मतलब वो जो सेवा भाव और एक जो भक्ति भाव वो दिखाते हैं ना, वो तो अनइमेजिनेबल है. मतलब है ना, वही सीख मुझे भी बेस्ट यही पार्ट लगता है हनुमान जी के.
1: लक्ष्मण जी भी इस मूवी में बहुत खास करेक्टर है. कहते हैं ना ये
0: हाँ
1: कि राम तो हर युग में पैदा हो सकता है, पर लक्ष्मण जैसा भाई पैदा होना बहुत मुश्किल है.
0: हाँ, देखिए हर एक पार्ट में रामायण के हर एक कैरेक्टर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है विनोद. मैं तो एक इंस्पिरेशनल स्टोरी की तरह रामायण को जितनी बार भी देखती हूँ, हर बार एक नई लर्निंग निकल कर आती है सामने. चलिए, आपसे बात करके विनोद अच्छा लगा. कंग्रेचुलेशन एंड थैंक यू सो मच, कीप लिसनिंग.
1: थैंक यू. वेलकम. थैंक यू.
0: तो ये थे विनोद हमारे साथ बिल्कुल राइट आंसर के साथ में. आप FM रेनबो पर बने रहिए एक और बात के साथ, जल्द ही वापस आऊंगी. ये है बॉलीवुड ट्रेल्स और मैं हूँ निशा आपके साथ में.
2: कई दिन दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत. दिनेन मानत जल दीजन, गए दिन दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए.

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
3: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
2: अल्फा जेन,
3: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे थे बॉलीवुड ट्रेल्स। अब मेरा यहाँ से जाने का टाइम हो गया, लेकिन जाने से पहले पहले अपनी एक मोस्ट फेवरेट चीज के बारे में तो आपको बताना ही मैं भूल गई हूँ। देखिए, एनिमेटेड फिल्मों का को देखने का मुझे बहुत ज्यादा शौक है, और 2026 में अभी तक टॉय स्टोरी 5 आ चुकी है, हॉपर्स आ चुकी है, जिसे मैंने तो सिनेमा हॉल में जाकर एंजॉय किया था। लेकिन अभी आने वाली फिल्म के बारे में भी आपको बता लेती हूँ। और श्रेक 5 आने वाली है, और बहुत ही अच्छी फॉरगॉटन आइलैंड करके एक फिल्म आएगी, जो कि एक एक फैमिली के दो फ्रेंड्स के एक्चुअली एडवेंचर पर बेस्ड फिल्म है ये। और पॉ पेट्रोल मूवी जो बच्चे बहुत देखते हैं, ये भी अगस्त के महीने में ही, इसी महीने में रिलीज होंगी। तो अगर आप एनिमेटेड फिल्मों के शौकीन हैं तो आप यस यू शुड लुक फॉरवर्ड टू दीज मूवीज, जिसमें डेफिनेटली इंजॉय बहुत ज्यादा होने वाला है। तो फिलहाल आई एम लीविंग यू, और आप अगला शो इंजॉय कीजिएगा, और फिलहाल मैं जा रही हूँ। एंड कीप लिसनिंग 102.6 FM।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने रेपो दर को 5.25% पर बरकरार रखा है। मौद्रिक नीति समिति के फैसले की घोषणा करते हुए आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि देश की आर्थिक वृद्धि को मजबूत मांग का समर्थन मिल रहा है और ये विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनी हुई है।
1: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments as well as the outlook, the MPC decided unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 5.25%.
0: श्री मल्होत्रा ने कहा कि वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहा, जिसके चलते केंद्रीय बैंक ने वर्ष 2026-27 के लिए अपने वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि अनुमान को संशोधित करके 6.7% कर दिया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष प्रमुख व्यापार मार्गों को बाधित करके वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतियां पेश कर रहा है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि बैंक ने वित्त वर्ष 2027 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अपने अनुमान को पहले के 5.1% से घटाकर 5% कर दिया है। रिजर्व बैंक ने घरेलू अर्थव्यवस्था पर आशावादी रुख अपनाते हुए वर्ष 2026-27 के लिए अपने विकास अनुमान को बढ़ाया और मुद्रास्फीति के पूर्वानुमान को घटाया है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। लोकसभा की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्य छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग करने लगे। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
2: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो, कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी कर प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
0: उधर राज्यसभा में भी इसी मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो विपक्ष के हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने

0: शून्यकाल शुरू किया। जम्मू कश्मीर से भाजपा सांसद सतपाल शर्मा ने कहा कि 7 वर्ष पहले आज ही के दिन अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था। श्री शर्मा ने कहा कि आज का दिन न केवल जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा कि इस फैसले ने जम्मू कश्मीर को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। श्री शर्मा ने कहा कि दशकों तक अनुच्छेद 370 ने जम्मू कश्मीर को अलग थलग रखा। श्री शर्मा ने यह भी बताया कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करना भारत की एकता और अखंडता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम है। हरियाणा से भाजपा सांसद संजय भाटिया ने हरियाणा को भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारतीय जनता पार्टी ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को एक ऐतिहासिक दिन बताया। 7 वर्ष पहले आज ही के दिन अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि संविधान की भावना के अनुरूप ही संवैधानिक प्रावधान को निरस्त किया गया था।
1: अनुच्छेद 370 को उखाड़ के फेंक दिया गया था जो कि हमारे संविधान में लिखा था। ऑनरिंग द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 370 वॉज एब्रोगेटेड। आर्टिकल 370 स्टार्टेड विद द वर्ड टेम्पररी बट नोबडी हैड द विल टू एब्रोगेट इट।
0: झारखंड में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और झारखंड पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर सरायकेला खरसावा से प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी संगठन के 3 कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। महानिरीक्षक अभियान नरेंद्र कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि की है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मिला जुला रुख देखने को मिला। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 225 अंक बढ़कर 78,654 पर जबकि निफ्टी 25 अंक गिरकर 24,590 पर पहुंच गया। भारत की शरानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रियांशी वेलिशेट्टी ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। उधर पुरुष सिंगल्स में शीर्ष खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत, किरण जॉर्ज, रोहनक चौहान, सानीत दयानंद और थारून मन्नेपल्ली आज मुकाबला करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जी हाँ दोस्तों, पंजाबी साहित्य विच पिता सिर्फ एक परिवारक मैंबर नहीं, सगों त्याग, मेहनत, अनुशासन, सुरक्षा, संस्कार ते जिम्मेवारी का प्रतीक है। माणू जिथे ममता की मूर्त मन्या जांदा है, उथे पिता नू परिवार

एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 60 करोड़ लोग बने ने 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के हकदार। हुण तक 12 करोड़ तो ज्यादा मुफ्त इलाज किए जा चुके ने, जिस नाल गरीब परिवारों के इलाज खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करके आयुष्मान कार्ड बनवाओ। वधेरे जानकारी लई 14555 ते कॉल करो।
1: इंश्योरेंस पीजीडी इन वेब डिजाइन एमए इंग्लिश हिंदी अते पंजाबी एमकॉम एमएससी मैथ्स एमएससी आईटी एमबीए एमसीए एमएससी फैशन डिजाइनिंग अति 4 साला बीए बीएड आईटेक विच दाखला शुरू है। आधुनिक सहूलता वाला होस्टल कंपटीशन सेल एनईपी अनुसार 3 अति 4 साला यूजी प्रोग्राम्स हर वर्ग ले स्कॉलरशिप स्कीम्स वधेरी जानकारी ले एसएसटी गर्ल्स कॉलेज अमरीक सिंह रोड बठिंडा विखे विजिट करो। कॉन्टैक्ट नंबर 94171 59 121 94 175 57 848 98 720 65 150।
2: ਹੁਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤਹਿਤ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਾਚਕ ਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੰਪਾਦਨ

आवाज दी दुनिया दे प्यारे दोस्तो, मिति 6 अगस्त 2026 दिन वीरवार। आप जी दा दोस्त बलजीत शर्मा ते आप जी दी बहुत ही पसंदीदा रेडियो कंपेयर ते एडिटर गुरदीप कौर गिल जी आप जी दी खिदमत दे विच सरोतियो लेके आ रहे हैं एक विशेष प्रोग्राम पुत्र मिठड़े मेवे। मां दी अरदास ते प्यो दा विश्वास।

सुनना ना भुलना वाचक ते निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा संपादन विशेष दिशा निर्देश ते तकनीकी सहयोग गुरदीप कौर गिल जी। दोस्तों समा फेर नोट कर लो दोपहर 12:10 ते दिन वीरवार साडा विशेष प्रोग्राम पुत्र मिठड़े मेवे मां दी अरदास ते प्यो दा विश्वास।

0: सेठ जी अजकल कम चलाने केड़ा सौखे ने।
1: ओ भाई सही क्या ज्ञान सिया, अजकल दे दौर च बिजनेस करने कोई खाला जी दा बड़ा नहीं हैगा। माल भी पालो, नवी स्कीमा भी लियाओ, खुले खुले ऑफर दियो, गफे वंडो, ते कम फिर भी नहीं चलदा, ते समझ नहीं आउंदी भी ए कम लोका तक पहुंचाया किवें जावे।
2: तुसी दोवे परेशान क्यों, आकाशवाणी FM बठिंडा है ना सारे मसलियां दा हल।
0: ना कम चलाउण लई तेरा आकाशवाणी FM बठिंडा की मदद करेगा।
2: लै कल्ला बठिंडा ही नहीं, बठिंडा दे नेड़े तेड़े लगभग 70 किलोमीटर दे दायरे विच जावेगी तुहाडी आवाज। अपना बिजनेस चलाना होवे या कोई नवी स्कीम लेके आए होवो ता लोका तक पहुंचाने लई आकाशवाणी FM बठिंडा दा लो सहारा।
1: पर बीबा जी ओ किवें,
2: ए ता बिल्कुल सौखा है लाला जी। 78-379-63-306 नंबर करो डायल, ते आकाशवाणी FM बठिंडा दी कमर्शियल टीम दसेगी तुहानू अगला रस्ता। नंबर एक बारी फेर नोट कर लो, 78-379-63-306। विदेरे जानकारी लई तुसी ईमेल भी कर सकदे हो AIRFM.BTI@

0: Protests against alleged irregularities in the JPSC and JSSC examinations intensifies in Ranchi. Red warning issued for extremely heavy rainfall over Assam and Meghalaya. And in badminton, three Indian shuttlers enter the second round of the women's singles of the Korea Open in Assam. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। रिजर्व बैंक का इस वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर 6.7% रहने का अनुमान, कहा मजबूत मांग के कारण आर्थिक वृद्धि बनी हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा युवा प्रदर्शनकारियों के साथ अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज, असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट, और भारत की शरानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रियांशी वेलिशेट्टी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 और 35 ए को निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता और खेल जैसे क्षेत्रों में अवसर भी बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह लागू होने से महिलाओं, वंचित समुदाय सहित उन लोगों को अधिकार मिले हैं जो दशकों तक अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन इसीलिए भी विशेष है क्योंकि देश इस वर्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मना रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता के प्रति डॉक्टर मुखर्जी का आजीवन समर्पण पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी की परिकल्पना 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक रूप से साकार हुई। जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सतपाल शर्मा ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को जम्मू कश्मीर के पूर्ण एकीकरण और विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। संसद परिसर में आकाशवाणी समाचार से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद पिछले 7 वर्षों में जम्मू कश्मीर में महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई है।
2: आज के दिन 2019 में 370 को निरस्त किया गया और हम सब जानते हैं कि जिस ऊंचाइयों की तरफ आज जम्मू कश्मीर अग्रसर है वो अपने आप में दर्शाता है कि 370 हमारे ऊपर एक कलंक था, वो हट गया है। हमारी मातृशक्ति जिसकी शादी हमारे प्रदेश के बाहर होती थी, उनका हक जो था वो छिन जाता था, उनके प्रॉपर्टी राइट्स जो थे वो चले जाते थे। वाल्मीकि समाज के लोग, गोरखा समाज के लोग 370 हटने के बाद उनको उनका हक मिला है।
1: भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि क्षेत्र में राष्ट्रवाद की भावना और मजबूत हुई है और अब शासन राजनीतिक परिवारों के बजाय जनता द्वारा संचालित है। भारतीय जनता पार्टी ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को एक ऐतिहासिक दिन बताया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि संविधान की भावना के अनुरूप ही इस संवैधानिक प्रावधान को निरस्त किया गया था।
3: अनुच्छेद 370 को उखाड़ के फेंक दिया गया था जो कि हमारे संविधान में लिखा था, ऑनरिंग द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 370 वॉज एब्रोगेटेड। आर्टिकल 370 स्टार्टेड विद द वर्ड टेम्पररी बट नोबडी हैड द विल टू एब्रोगेट इट।
1: अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 7 साल बाद जम्मू कश्मीर में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। सड़क, रेल और अन्य बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है, संपर्क व्यवस्था बेहतर हुई है, सरकारी सेवाएं मजबूत हुई हैं और पर्यटन, निवेश तथा सुरक्षा की स्थिति में भी सुधार आया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रदेश में इससे लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए हैं।
4: अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचे में तेजी से विकास हुआ है। नई सुरंगें और सड़कों के चौड़ीकरण से जुड़ी परियोजनाओं से जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग को विकसित किया गया है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, जिसमें चिनाब और अंजीखड रेल पुल शामिल है, के पूरा होने से कश्मीर घाटी तक रेल संपर्क सुनिश्चित हुआ है। जेड मोड टनल ने सोनमर्ग तक हर मौसम में पहुंच सुनिश्चित की है, जबकि जोजिला सुरंग का काम पूरा होने वाला है और ये नैतिक रूप से महत्वपूर्ण श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर हर मौसम में पहुंच प्रदान करेगी। वर्ष 2024 में यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या 2

0: करोड़ 35 लाख से अधिक रही, जिसमें 65 हजार से अधिक विदेशी पर्यटक शामिल थे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2019 से केंद्र शासित प्रदेश में लगभग 18 हजार करोड़ का निवेश हुआ है। 2200 से अधिक औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गई हैं और 26 नए औद्योगिक ढांचे विकसित किए गए हैं। 41 हजार से अधिक सरकारी नौकरियां दी गई हैं और लगभग 9,81,000 स्वरोजगार के अवसर भी सृजित हुए हैं। इन वर्षों में सुरक्षा की स्थिति में भी काफी सुधार देखने को मिला है। श्रीनगर से इश्फाक शाह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बताया कि रेपो दर को 5.25% पर यथावत रखा गया है।
2: After a detailed assessment of the evolving
0: परिवर्तनशील आर्थिक परिस्थितियों और भविष्य के अनुमानों के विस्तार से समीक्षा करने के बाद मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट 5.25 पर ही बरकरार रखने का निर्णय लिया है।
1: रेपो दर वो ब्याज दर है जिस पर RBI सरकारी प्रतिभूतियों के बदले वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि मजबूत मांग के कारण देश में आर्थिक वृद्धि बनी हुई है और भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष की अप्रैल जून तिमाही में अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन अपेक्षा से बेहतर रहा। बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई का अनुमान 5.1% से घटाकर 5% कर दिया है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि हाल में महंगाई बढ़ने का मुख्य कारण खाद्य और ईंधन की कीमतों में वृद्धि रही।
2: हेडलाइन इन्फ्लेशन हैज एज्ड अप।
0: उम्मीद के मुताबिक मुद्रास्फीति आधार से थोड़ी ऊपर चली गई है। हालांकि पहले तिमाही में वास्तविक महंगाई दर अनुमान से थोड़ी कम रही। इससे पता चलता है कि लागत का दबाव कीमतों पर पूरी तरह से नहीं पड़ा है। महंगाई बढ़ने की मुख्य वजह ईंधन और खाद्य वस्तुएं हैं। अब तक कीमतों के दबाव के हर तरफ फैलने के कोई खास संकेत नहीं मिले हैं। कीमती धातुओं को छोड़कर महंगाई दर पहले के अनुमान के मुताबिक ही नियंत्रण में है।
2: As projected earlier.
1: उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में बेहतर आर्थिक प्रदर्शन को देखते हुए RBI ने वर्ष 2026-27 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है।
2: रियल GDP ग्रोथ फॉर दिस ईयर।
0: मौजूदा वर्ष के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोतरी का अनुमान अब 6.7% है। ये हमारे पिछले अनुमानों से 10 आधार अंक अधिक है। पहली तिमाही में 7%, दूसरी तिमाही में 6.4%, तीसरी तिमाही में 6.5% और चौथी तिमाही में 6.8%।
2: Q4 at 6.8%.
1: श्री मल्होत्रा ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से प्रमुख व्यापारिक मार्ग प्रभावित हो रहे हैं, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव बना हुआ है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि यदि सब कुछ तय कार्यक्रम के अनुसार रहा तो अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में प्लास्टिक के नोट चलन में आ जाएंगे। मुंबई में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि प्लास्टिक के नोट अधिक टिकाऊ होते हैं। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
3: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो। कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी कर प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
1: सदन की कार्यवाही फिलहाल अभी जारी है। राज्यसभा में पहले स्थगन के बाद सभापति CP राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे। सरकार 300 ऐसे संस्थानों को अनुमति दे चुकी है। श्री गडकरी ने यह भी कहा कि देश में लगभग 22 लाख चालकों की कमी है। हरियाणा से भाजपा सांसद संजय भाटिया ने हरियाणा को भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। झारखंड में रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन जोर पकड़ रहा है। आंदोलनकारी छात्रों ने आगामी मानसून सत्र के दौरान अपनी मांगों को मनवाने के लिए झारखंड विधानसभा का घेराव

0: करने की योजना की घोषणा की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विद्यार्थियों ने संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की है।
1: राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन कर रहे छात्रों ने कल से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र के दौरान विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। छात्रों का कहना है कि उन्हें किसी का इस्तीफा नहीं बल्कि संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द कर राज्य के बाहर से हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों से न्यायिक जाँच चाहिए। छात्रों ने CID जाँच को नाकाफी बताया है। छात्रों के विधानसभा घेराव के ऐलान के बाद CID की कार्रवाई और तेज हो गई है। CID ने इस मामले में 3 और लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि युवा छात्र प्रदर्शनकारियों को लेकर प्रतिक्रिया देते समय अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हिंसा को रोकने के लिए किसी भी प्रकार की हिंसक प्रतिक्रिया से स्थिति और बिगड़ जाएगी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कांग्रेस जनता पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। याचिका में दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में कांग्रेस जनता पार्टी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा, जिसमें पत्थरबाजी के आरोप भी शामिल हैं, के लिए पार्टी की कथित जिम्मेदारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। लोकसभा ने आज बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 पारित कर दिया है। आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ये विधेयक सदन में पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य बैंकों के रिकॉर्ड से जुड़े साक्ष्यों के कानून को मौजूदा डिजिटल बैंकिंग व्यवस्था के अनुरूप बनाना है। इसके जरिए बैंकिंग प्रणाली की वर्तमान जरूरतों के अनुसार कानूनी ढांचे को आधुनिक बनाया जाएगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि बैंकों के रिकॉर्ड की इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल प्रति को अदालत में वैध और कानूनी साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकेगा। लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। झारखंड में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और झारखंड पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर सरायकेला खरसावा से प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी संगठन के 3 कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। महानिरीक्षक अभियान नरेंद्र कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि की है। उत्तरी कर्नाटक के यादगीर जिले के कडेचूर बडियाल औद्योगिक क्षेत्र में आज सुबह रासायनिक रिसाव के कारण 3 श्रमिकों के दम घुटने से मौत हो गई। रिसाव के संपर्क में आए 2 श्रमिकों को रायचूर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। भोपाल में तीसरी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक शुरू हो गई है। अनेक देशों के प्रतिनिधि 4 दिन के इस विचार विमर्श में भाग लेने के लिए भोपाल पहुंचे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट देखी गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 107 अंक गिरकर 78,322 पर और निफ्टी 94 अंक फिसलकर 24,521 पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और लद्दाख में अगले 2 दिन तक तेज बारिश की आशंका है। ओडिशा के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में इस बार मॉनसून में सामान्य से अधिक वर्षा हुई है।
2: उड़ीसा के बाढ़ प्रभावित जिलों में बड़ी नदियों का जलस्तर घटने के साथ ही राहत और बहाली का काम युद्ध स्तर पर जारी है। हीराकुद बांध के 5 और स्लुइस गेट बंद कर दिए गए हैं, जिससे बाढ़ का पानी छोड़ने वालों गेटों की संख्या घटकर 8 रह गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मयूरभंज के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है, जबकि आज 13 जिलों के लिए येलो वार्निंग लागू है। उड़ीसा में मौजूदा मानसून सीजन के दौरान सामान्य से 26% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: और खेलों में भारत की ईशा रानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रेयांशी वलिशेट्टी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच गई हैं। वहीं पुरुष सिंगल्स में विश्व नंबर 1 किदांबी श्रीकांत, किरण जॉर्ज, रौनक चौहान, सानिध दयानंद और थारू मन्नेपल्ली आज खेलेंगे। राष्ट्रपति भवन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आधिकारिक कार्यक्रमों के दौरान मिले 300 चुनिंदा उपहारों की आज से ऑनलाइन नीलामी शुरू कर दी है। ये नीलामी ई उपहार पोर्टल पर की जा रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। रिजर्व बैंक का इस वित्त वर्ष में GDP वृद्धि दर 6.7% रहने का अनुमान। कहा, मजबूत मांग के कारण आर्थिक वृद्धि बनी हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, युवा प्रदर्शनकारियों के साथ अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए। झारखंड में JPSC और JSSC परीक्षाओं में

नियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज, असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट, और भारत की ईशारानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रियांशी वलिशेट्टी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आवाज़ दी दुनिया दे प्यारे दोस्तों, मिति 6 अगस्त 2026 दिन वीरवार। आप जी दा दोस्त बलजीत शर्मा ते आप जी दी बहुत ही पसंदीदा रेडियो कंपेयर ते एडिटर गुरदीप कौर गिल जी आप जी दी खिदमत दे विच सरोतियो लेके आ रहे हैं एक विशेष प्रोग्राम पुत्र मिठड़े मेवे, मां दी अरदास ते प्यो दा विश्वास।

सुनना ना भुलना। वाचक ते निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा, संपादन विशेष दिशा निर्देश ते तकनीकी सहयोग गुरदीप कौर गिल जी। दोस्तो समा फेर नोट कर लो, दोपहर 12:10 ते दिन वीरवार साडा विशेष प्रोग्राम पुत्र मिठड़े मेवे, मां दी अरदास ते प्यो दा विश्वास।

कर रहे ने जी, पिंड बांडीवाला फाजिलका तो क्रियांश बागड़िया, योगेश बागड़िया, ओम बागड़िया, बेबी गरिमा बागड़िया, रजत ते मनीष चौधरी। इन्हां दी रली मिली फरमाइश ते आओ सुनदे हां अल्फाज दी आवाज़ दे विच ये प्यारा जिहा गीत।

इस प्रोग्राम विच सानू तकनीकी साथ देने लई साडी टैक्नीकल टीम दा बहुत बहुत धन्नवाद। प्रोग्राम दे निर्माता निर्देशक श्री बलजीत शर्मा। उम्मीद करते हाँ अज दा प्रोग्राम तुहानू जरूर पसंद आया होएगा। FM बैंड 101.1 MHz ते तुसी बने रहो ते सुन रहे हो आकाशवाणी FM बठिंडा। स्टूडियो दी कड़ी ते समा हो रहा है 2:59 ते 30 सेकेंड। ठीक 3 बजे तुसी सुनोगे विविध भारती मुंबई दे प्रसारण। 3 बजे प्रोग्राम सखी सहेली। 4 बजे प्रोग्राम आज

0: के मेहमान ते 5 बजे मुड़ सुनोगे आकाशवाणी FM बठिंडा दे प्रसारण।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सखी सहेली कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। सोनाली आपको भी नमस्कार और जरा माफ कीजिएगा।
2: ममता जी, पहले तो आपको नमस्कार, सभी सखियों सहेलियों को, श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि भाई माफी किस बात की?
1: बस यही तो मैं इंतजार कर रही थी कि आपने पूछा ही नहीं माफी किस बात की। बस माफी मांग ली, अब कुछ भी गलती हुई हो तो आप माफ कर दीजिए।
2: नहीं भाई, ऐसे तो हो नहीं सकता कि आपने कुछ गलती की है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे कुछ कारण है, इसलिए आप बार बार ये कह रही है।
1: दरअसल ये जो बात है ना, इसलिए कह रही हूँ माफी मांग लेने में कोई बुराई नहीं है।
2: ये तो बहुत सही
1: है ना, अब चाहे कोई छोटा हो उम्र में चाहे बड़ा हो, अगर आपने कोई गलती की है या आपको ऐसा लगता है कि आपने गलती की है तो माफी मांग लेनी चाहिए, भले ही आपकी गलती ना हो। लेकिन इतनी विनम्रता भी ना हो कि आप कहीं ऐसी जगह पर हैं जहां पर आपको अनायास माफी मांगने का खामियाजा भुगतना पड़े, वो भी नहीं होना चाहिए। तो हम अपने श्रोताओं से आज ये जानना चाहते हैं किन मौकों पर उनको माफी मांगनी पड़ी, क्षमा करना पड़ा, और किन मौकों पर उन्होंने अपने छोटों को क्षमा दी और किन मौकों पर उन्होंने क्षमा किया, तो वो अपने अनुभव साझा करें हमारे श्रोता।
2: जी, बहुत छोटा सा शब्द है पर उसका बहुत गहरा अर्थ है। तो हमारे श्रोता लिख कर भेजे, उन्होंने ये तो बहुत लिख कर भेजा है कि क्षमा कर देना चाहिए, क्षमा नहीं करना चाहिए, पर आपके जीवन से जुड़े कुछ अगर अनुभव है तो वो हमसे साझा कीजिए।
1: अच्छा, तो आप बताइए आप किन मौकों पे क्षमा करती हैं?
2: मैं तो बहुत बार मांग लेती हूँ, क्षमा मांग लेती हूँ और क्षमा कर भी देती हूँ, तभी हम जिंदगी को ना बड़े आनंद से गुजार सकते हैं जिंदगी। अगर हम दिल में किसी के प्रति ऐसा गांठ रख के चले ना, तो उसमें क्या होता है, हमारा भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है।
1: बिल्कुल सही कह रही है। और हम अपने घर में अपने बच्चों को तो रोजाना कुछ न कुछ किसी न किसी बात पे क्षमा करते हैं, अगर क्षमा नहीं करेंगे तो बच्चों के मन में गांठ पड़ जाएगी और वो फिर कैसे सीखेंगे। तो ये हम अपने श्रोताओं से यही कह रहे हैं कि अपने अनुभव हमें बताएं कि उन्होंने कोई ऐसी यादगार घटना भी हमें संक्षेप में बता सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर, और वो टिप्पणी हम श्रोताओं तक पहुंचाएंगे। और बताइए और किन
2: और
1: किन बातों
2: साथ
1: की?
2: ही एक बहुत ही एक ऐसा मुद्दा है ममता जी जो हर घर घर में होता है।

0: जो माता पिता की लड़ाई में बच्चों पर बुरा असर, यानी
1: बिल्कुल।
0: इस बात में भी यह है कि पति पत्नी ने भी एक दूसरे को क्षमा कर देना चाहिए समय समय पर, जब भी जरूरत पड़े सॉरी बोल दिया, क्षमा मांग ली, तो ये काम जो है बहुत अच्छी तरह सुलझ सकता है, क्योंकि माता पिता की लड़ाई से बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ता है, उनका मानसिक जो है ना स्तर बहुत बहुत गिर जाता है, बहुत परेशान हो जाते हैं बच्चे, फिर
1: उन
0: इस
1: पर
0: विषय पर भी।
1: तनाव बहुत होता है,
0: जी
1: और अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे तो उनकी पढ़ाई पर असर होता है।
0: जी
1: सबसे ज्यादा उनकी शिक्षा बाधित होती है, क्योंकि वो माता पिता के झगड़ों को मन में कहीं उनके भीतर चलता रहता है, और माता पिता झगड़ के कई बार वो भूल भी जाते हैं,
0: एक हो
1: अपने
0: जाते हैं।
1: अपने एक हो जाते हैं, और कई बार अपने अपने गंतव्य को चले जाते हैं। जैसे दफ्तर में काम कर रहे हैं तो वो लोग अपने दफ्तर के कामकाज में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन बच्चे के कोमल मन पर उस झगड़े का बहुत गलत असर पड़ता
0: यानी
1: है।
0: स्कूल में भी उनका मन नहीं लगेगा कि देखिए हमारे मम्मी पापा के बीच कैसी लड़ाई हो गई, अंदर ही अंदर वे परेशान रहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति किसी भी बच्चे पर ना आए, इस तरह से क्या किया जाए, यानी कि जब भी ऐसे कुछ हो तो बंद कमरे में बातचीत करके सुलह कर देना चाहिए। इस विषय पर भी आप लिखिए कि आप ऐसा करते हैं या फिर आप बिल्कुल इन बातों से दूर रहते हैं।
1: और इसमें भी अपने अनुभव हमारे श्रोता साझा कर सकते हैं, और जो भी टिप्पणी अभी आएगी उन टिप्पणियों को हम उन तक पहुंचाएंगे। और क्षमा के बारे में हमने बता दिया, और साड़ियों का संसार बृहद है,
0: जी
1: बहुत विराट है,
0: जी
1: और तरह तरह की साड़ियां होती हैं, और महिलाओं की तो खास शौक है पहनने की, लेकिन तोहफे में पाना भी महिलाओं को बड़ा अच्छा लगता है। साड़ी अगर आपने खरीदी तो ठीक है, लेकिन वही साड़ी अगर कोई आपके रिश्तेदार या कोई भाई बहन पिता और दोस्त
0: पति
1: मित्र पति दे दे खास मौके पर, तो वो जैसे लिख उठता है कि फला मौके पर फला ने ये
0: हमें ये
1: साड़ी दी
0: साड़ी
1: थी।
0: दी थी, तो माहेश्वरी साड़ी जो मध्य प्रदेश की शान है उसके बारे में हम जानकारी देंगे, और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने, हमारे सखियों ने भी इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करने शुरू कर दिए हैं, अपने मैसेजेस लिखना शुरू कर दिया है, और व्यंजन यानी हम शब्दों के माध्यम से तो चटनी बनाते ही हैं पर
1: और
0: अगर
1: ये जो मौसम है ना, बारिश
0: जी
1: का मौसम,
0: हाँ
1: इसमें जब भजिए पकौड़े बनते हैं तो उसके साथ चटनी जरूरी होती है,
0: हाँ
1: और चटनी ऐसी चीज है कि चाहे पकौड़े के साथ खाइए या पराठे के साथ, पूरी के साथ, दाल चावल के साथ, हर चीज के साथ फिट हो
0: यानी वो
1: जाती है।
0: खाने का जायका बढ़ा देती है।
1: और गाना भी जायका बढ़ाता है हमारे प्रोग्राम का, सुनते
0: सुनते
1: हैं ये
0: हैं।
1: गाना।

0: हाँ तो सोनाली जी, हम बात कर रहे थे साड़ियों की, और माहेश्वर साड़ी के बारे में हम बताने वाले थे अपने सखियों को। भारत की हस्तकरघा परंपरा विश्व भर में अपनी उत्कृष्ट और कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। इन्हीं अनुपम धरोहरों में माहेश्वरी साड़ी का बहुत बड़ा योगदान है और इसका स्थान भी है। मध्य प्रदेश के नर्मदा तट पर बसे महेश्वर नगर में निर्मित ये साड़ी अपनी हल्की बनावट, आकर्षक किनारे, मनमोहक पल्लू और राजसी गरिमा के लिए जानी जाती है।
1: और ममता जी, ये केवल एक परिधान नहीं है बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपरा और बुनकरों की अद्भुत कला का जीवंत प्रतीक है। और माहेश्वरी साड़ी का इतिहास लगभग 250 वर्ष पुराना है। 18वीं शताब्दी में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने अपनी राजधानी महेश्वर में ये स्थापित की थी। उन्होंने गुजरात, मालवा और दक्षिण भारत सहित विभिन्न क्षेत्रों से कुशल बुनकरों को महेश्वर बुलाकर उन्हें बसाया। उनके संरक्षण में ऐसी साड़ी तैयार की गई जो राज परिवार की गरिमा के अनुरूप होने के साथ साथ हल्की, सुंदर और उपयोगी भी थी।
0: बिल्कुल सही आप कह रही हैं, और तभी से माहेश्वरी साड़ी की परंपरा आगे बढ़ती रही। माहेश्वरी साड़ी हस्तकरघे पर बहुत सावधानी और धैर्य से बुनी जाती है। इसमें सूती और रेशमी धागों का सुंदर संयोजन भी किया जाता है। पहले धागों की रंगाई होती है, फिर उन्हें करघे पर चढ़ाकर पारंपरिक तकनीक से बुनाई की जाती है। एक उत्कृष्ट माहेश्वरी साड़ी तैयार करने में कई दिन और जटिल डिजाइन होने पर कई सप्ताह तक का भी समय लग जाता है।
1: और ममता जी, ये साड़ियां ना वजन में बहुत ज्यादा हल्की और पहनने में आरामदायक होती है। सूती और रेशमी धागों का संतुलित मिश्रण होता है। दोनों ओर से समान दिखाई देने वाले रिवर्सिबल बॉर्डर इसकी सबसे बड़ी पहचान है। और पल्लू पर सामान्यतः 5 समानांतर धारियां बनाई जाती है और गर्मियों में भी सहजता से पहनी जाती है। सादगी और शाही गरिमा का ये साड़ियां सुंदर मेल है।
0: और ये भी बता दें कि माहेश्वरी साड़ियों के डिजाइन महेश्वर किले, नर्मदा नदी की लहरों, मंदिरों की नक्काशी और प्रकृति से प्रेरित होते हैं। इनमें चटाई, लहरिया, हीरा, ईंट, चमेली, रूपमती, नर्मदा लहर वगैरह वगैरह पारंपरिक पैटर्न बहुत लोकप्रिय हैं।
1: और रंगों की अगर बात की जाए, रंगों में लाल, हरा, बैंगनी, नीला, काला, गुलाबी, सुनहरा, फिरोजी, मैरून, दोहरे रंगों का भी आकर्षक संयोजन देखने को मिलता है। और इसके कई सारे प्रकार हैं, जैसे नीम सिल्क, शुद्ध सिल्क, सूती माहेश्वरी, टिशू माहेश्वरी और कतान माहेश्वरी ये प्रसिद्ध है।
0: और चेक्स और स्ट्रिप डिजाइन वाली साड़ियां भी होती हैं। हर तरह की साड़ी का अपना एक अलग सौंदर्य है और उपयोग भी है। और महेश्वर के हजारों बुनकर पीढ़ी दर पीढ़ी इस कला को जीवित रखे हुए हैं। और सोनाली जी, एक बात और है कि इस जो साड़ी की ये परंपरा है, इससे कितने लोगों को रोजगार मुहैया होता है। जो बुनकर होते हैं, अपनी कुशलता से जब साड़ी तैयार करते हैं, तो उनकी आय का जरिया भी यही होता है। परिवार के सभी सदस्य मिलकर ये कार्य करते हैं, और उनकी मेहनत, धैर्य और सृजनशीलता ही माहेश्वरी साड़ी की वास्तविक पहचान है। ये हस्तशिल्प न केवल स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया कराती, बल्कि ये एक उद्योग के रूप में काम करती है। समाज और देश तक इसकी पहुंच है।
1: जी, और माहेश्वरी साड़ी को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्राप्त है, जिसका अर्थ है कि इस साड़ी की विशिष्ट पहचान और गुणवत्ता माहेश्वर क्षेत्र से जुड़ी हुई है। GI टैग नकली उत्पादों पर रोक लगाने, बुनकरों के अधिकारों की रक्षा करने और इस पारंपरिक कला को वैश्विक पहचान दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ये साड़ियां जो है देश ही नहीं विदेशों में बहुत लोकप्रिय है। विवाह, फिर धार्मिक समारोह, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सरकारी आयोजन और औपचारिक अवसरों पर इसे विशेष पसंद किया जाता है। आधुनिक फैशन डिजाइनरों ने भी पारंपरिक डिजाइनों को नए रंगों और शैली के साथ प्रस्तुत कर इसकी लोकप्रियता को और भी बढ़ाया है।
0: माहेश्वरी साड़ी केवल रेशम और सूत का ताना बाना नहीं, बल्कि नर्मदा की निर्मल धारा, महेश्वर के किले की भव्यता और बुनकरों के स्वप्नों से बुनी हुई भारतीय संस्कृति की अनुपम चादर है। इसे ओढ़ना, इसे पहनना मानो इतिहास, परंपरा और सौंदर्य को एक साथ आत्मसात करना है।
1: और माहेश्वरी साड़ी भारतीय हस्तकरघा परंपरा की एक अमूल्य धरोहर है। इसमें इतिहास की गरिमा है, संस्कृति की सुगंध है और बुनकरों के श्रम का अनुपम सौंदर्य समाहित है। और ये साड़ी हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने के साथ साथ स्वदेशी हस्तशिल्प को प्रोत्साहित करने की प्रेरणा भी देती है।
0: और हम इस समय प्रेरणा पा रहे हैं ये गाना सुनवाने के लिए। सुनते हैं ये गाना, फिर और बातें करते हैं।

0: भाई सोनाली जी, एक बात बताइए कि लड़ाई झगड़े का असर तो मन पर होता है, पर आप बताइए कि जरा आप जब झगड़ कराती हैं, झगड़ लेती हैं अपने पतिदेव से, तो उसका असर कितनी देर तक रहता है?
1: उसका असर तो बहुत देर तक रहता है ममता जी, पर भूलने के सिवा कोई चारा नहीं होता है। पर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके साथ कैसे होता
0: मैं तो
1: है?
0: झगड़ती ही नहीं।
1: ऐसा नहीं हो
0: नहीं,
1: सकता,
0: बिल्कुल नहीं।
1: ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसे कोई पति पत्नी नहीं होते कि जिनके बीच लड़ाई नहीं होती।
0: हम तो पति पत्नी के बीच तो झगड़ते ही हैं सोनाली जी। हमने भाई बहनों में बहुत झगड़े किए हैं, और परिवार में कौन ऐसा है जिससे हमारा झगड़ा नहीं हुआ है। लेकिन वो झगड़ा ना बहुत क्षण के लिए होता है, और थोड़ी देर बाद झगड़ा बिल्कुल खत्म हो जाता है, भूल जाते हैं। फिर सोचते हैं कि झगड़ा किस बात पे हुआ था। जैसे जब दो बहनें हम झगड़ा करते थे, तो बाद में सोचते थे कि आखिर झगड़े का मुद्दा क्या था। घर वाले पूछते थे, बात किस बात, झगड़ा किससे शुरू कैसे हुआ। कभी बैठने की जगह को लेकर कि हम यहाँ बैठेंगे, कभी सोने को लेकर कि यहाँ हम सोएंगे और इस बिस्तर पे तुम, तो पहले हम जाएंगे या पहले हम ये किताब पहले हम पढ़ेंगे, ये मैगजीन पहले हम पढ़ेंगे, इस पर हमारे भाई बहनों में ज्यादा झगड़ा हुआ। और तो और, रेडियो सुनने के लिए कि कोई तेज आवाज में सुनना चाहता है, कोई धीमी
1: धीमी
0: आवाज में,
1: आवाज में।
0: तो उस पर बहुत जम के झगड़े हुए। तो ये जो छोटे छोटे झगड़े हैं ना, ये कभी कभी यादगार हो जाते हैं। ये प्रेमिल झगड़े हैं, स्नेहिल
1: ये
0: झगड़े।
1: नहीं, ये घर घर की कहानी होती है। पर भले ही झगड़े में मतभेद हो जाए, पर मनभेद नहीं होना चाहिए, है ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन हमारे श्रोताओं ने बहुत सफाई से, प्यार से इस बात को छुपा लिया है, अपनी बात उजागर नहीं की। अब हमने तो
1: डर गए
0: बात
1: होंगे ना।
0: की पत्नी से डांट खानी
1: हाँ,
0: पड़ेगी।
1: क्यों ना, आपने वहां लिख दिया, सबको पता चल गई घर की
0: तो
1: बात।
0: हमने तो इसलिए बता दिया, और आपने भी बता दी
1: हाँ,
0: कि हम तो झगड़ते हैं बाकायदा।
1: ये तो बहुत ही
0: तो
1: सामान्य सी बात है ना,
0: हाँ,
1: झगड़ा होना।
0: लेकिन झगड़े का असर जब घर पर होता है, बच्चों पर पड़ता है, तब फिर आपको सचेत हो जाना चाहिए। वहां पर झगड़े पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, लड़ाई झगड़ों का प्रभाव तो सभी पर पड़ता है, फिर बच्चों का हृदय तो बहुत कोमल होता है। ऐसे माहौल में वे हमेशा डरे और

0: असुरक्षित महसूस करते हैं। घरेलू तनाव के कारण बच्चे डिप्रेशन, अत्यधिक चिंता और अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं। उनका मानसिक विकास रुक जाता है। ऐसे बच्चे बड़े होकर हिंसक और दूसरों के साथ चिड़चिड़ा व्यवहार करने लगते हैं, क्योंकि वे अपने भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते।
1: एक हमारे साथी ने यह भी लिखा है ममता जी कि अभिभावकों की लड़ाई में बच्चों पर असर, मतभेद तो सभी परिवार में चलते ही रहते, लेकिन मन का भेद कभी नहीं होना चाहिए। 31 तारीख को मेरी सहेली के बेटे बहू ने तलाक लिया। नन्ही सी बेटी 4 साल की है, उसे माता पिता दोनों चाहिए। वीडियो कॉल करती है और पापा के पास जाने की जिद भी करती है। माता पिता तो अपने निजी कारण से अलग हो ही गए। सोचती हूँ कि अब उस बच्चे की जिंदगी में कितने उतार चढ़ाव आएंगे और वे उन सबको किस तरह लगी। इन्हीं बात कितनी, यानी कह लीजिए कि भावनात्मक रूप से वो बच्ची जो है थोड़ी सी परेशान भी होगी कि वो पापा के पास भी जाना चाहती है और मम्मी के पास भी रहना चाहती है,
0: बिल्कुल
1: पर किसी कारणवश दो अलग अलग हो गए हैं। पर ये विचार करके ही हमें तकलीफ हो रही है, तो उस बच्ची पर क्या गुजर रही होगी ये हम सोच भी नहीं सकते।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं आप, और ये हमारी जो श्रोता हैं इन्होंने बिल्कुल सटीक बात कही है। ऐसे अखबार में एक घटना हमने पढ़ी थी, जिसमें निचोड़ ये था उस घटना का कि पति पत्नी ने तलाक लिया और कोर्ट से बाहर आ रहे हैं पति पत्नी, और छोटी बच्ची है वो जिद कर रही है अपने माता पिता के पास जाने के लिए। पिता उसे रखने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इसका लालन पालन करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है, उसकी मेरी नौकरी है। और माँ ये कह रही है कि इसका भरण पोषण मैं कैसे करूंगी, क्योंकि अभी तक उसको गुजारा भत्ता नहीं मिला है और वो कहाँ से इसकी पढ़ाई लिखाई का खर्च वहन करेगी। तो दोनों अलग अलग दिशाओं में खड़े हैं और बच्ची जार जार आंसू रो रही है कि वो कहाँ जाए, उसे चाहिए माँ का साथ, पिता का साथ। तो ये जो स्थिति होती है और दयनीय स्थिति है, ऐसी नौबत आने नहीं देना चाहिए। कई बार माता पिता के बीच जो टकराव होता है, अब हम सभी ये भी कहते हैं कि जब घर घर में तनाव ज्यादा हो जाए, लड़ाई झगड़े इस हद तक पहुंच जाए, तो अलग होना बेहतर होता है। लेकिन जब हम ये कहते हैं, तो ये नहीं सोचते कि इस अलगाव का आने वाली पीढ़ी पर क्या असर होने वाला है। बच्चा कैसे एडजस्ट करेगा, बच्चा किसके पास जाना चाहेगा, क्यों वो माँ के पास अकेले रहना चाहेगा, क्यों वो पिता के पास अकेले रहना चाहेगा। उसे तो दोनों चाहिए ना, उसे माता पिता का घर
1: दोनों
0: भी
1: का
0: चाहिए,
1: प्यार चाहिए,
0: प्यार भी चाहिए, और माता पिता के घर मतलब नानी का घर भी चाहिए, दादी का
1: दादी
0: घर
1: का
0: भी
1: भी।
0: चाहिए। तो दोनों जब छूटते हैं, दो में से कोई छूटता है, तो बच्चे के कोमल मन पर बहुत बुरा असर पड़ता है।
1: एक हमारे साथी ने लिखा है कि बाल मन बहुत कोमल होता है, माता पिता क्या किसी भी लड़ाई का असर उनके मन पर बहुत ज्यादा होता है। वही एक साथी लिखते हैं कि माता पिता के बीच होने वाले लगातार झगड़ों और मन मुटाव से बच्चों के कोमल मन पर बहुत गहरा और नकारात्मक असर पड़ता है। इससे बच्चों में असुरक्षा की भावना, मानसिक तनाव और पढ़ाई में एकाग्रता की कमी जैसी समस्याएं पैदा होने लगती है, मानसिक और भावनात्मक असर डालती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चों पर ही पड़ता है, माता पिता पर भी इसका असर पड़ता है। हमारे परिवार में ऐसा हुआ है। ये तो अच्छा है कि परिवार के लोगों को संभालने से बहुत कुछ अनहोनी नहीं हो सका, पर एक परिवार का टूटना तो दुखद ही रहा।
0: बिल्कुल सही है, और कभी भी टूटना या तोड़ना अच्छा नहीं होता है, तो चीजों को टूटने से बचाना चाहिए। चीजें भी टूटती हैं तो भी बुरा ही लगता है,
1: जी
0: लेकिन कई बार स्थिति बहुत बिगड़ जाती है, तब उस ऐसे में कुछ कहा नहीं जा सकता। जब नियमित लगातार घर में हिंसा होने लगती है, शारीरिक हिंसा और पटक फोड़ होने लगता है, बर्तन पटकना, ये सब जब स्थिति जरूरत से आगे बढ़ जाती है, तब फिर ऐसे में अलगाव बेहतर होता है। लेकिन यहाँ एक चीज और है, अब जमाना बदल गया है, अब हमारे पास बहुत सारी व्यवस्थाएं इन चीजों की, लड़ाई झगड़ों के
1: जी
0: लिए काउंसलिंग होता है, पति पत्नी के अलग काउंसलिंग होती है, और काउंसलर्स मतलब दोनों की बातों को सीक्रेट रखते हैं,
1: जी
0: और इस मामले में आपके पास सर्च करने के लिए जरिया है बहुत सारा, लोगों से पूछ सकते हैं, अखबार है, गूगल है, जहां से आप सर्च कर सकते हैं। तो झगड़ों को अवॉइड करें, चाहे उसके लिए आपको जो करना हो, काउंसलिंग करना हो, सलाह लेना हो, दोस्तों मित्रों या परिवार वालों से सलाह लेनी चाहिए, उनको बीच में लाना चाहिए, ताकि आपके झगड़े कम हो, क्योंकि उसका असर निश्चित रूप से बच्चों पर पड़ता है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि माता पिता का घर बच्चों के लिए दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह होती है, जब इस सुरक्षित जगह पर ही लगातार तनाव और कलह बनी रहे, तो बच्चे का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। वैज्ञानिक शोध भी बताते हैं कि जिन घर में रोज झगड़े होते हैं, वहां के बच्चों में डिप्रेशन, एंग्जाइटी की संभावना बहुत ज्यादा होती है। अभिभावकों को यह समझना होगा कि बच्चों के सामने लड़ना उनके बचपन को छीनने जैसा है, यदि मतभेद हो भी तो उन्हें बच्चों के सामने लाकर

0: बंद कमरे में शांति से सुलझाना चाहिए। और बच्चों की सिर्फ यही इतनी नहीं होती है खामियां, आगे चलकर बच्चे जिद्दी हो जाते हैं, एकांतवासी हो जाते हैं, बिल्कुल नहीं बोलते, अंतर्मुखी हो जाते हैं, या फिर जरूरत से ज्यादा हिंसक भी हो जाते हैं। और सोनाली जी, हम आपको बताएं कि एक कपल के बारे में उन्होंने हमें बताया कि उनके बीच झगड़े होते थे, तो जब झगड़े शुरू हो तो कमरा बंद कर लेते थे और म्यूजिक चला देते थे, रेडियो या कोई भी गाना, ताकि झगड़ने की आवाज बाहर ना जाए, और फिर जम के झगड़ा करके फिर बाहर आते थे। तो ये भी एक तरीका है झगड़ने
1: यानी
0: का।
1: बच्चों को पता ही नहीं चला कि अंदर क्या हुआ, अंदर तो
0: बिल्कुल।
1: डांस कर रहे थे या गाना गा रहे थे मम्मी पापा। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्या होता है ना, हम जो जैसा व्यवहार करते हैं बच्चे वैसे ही उसका अनुसरण करते हैं। तो हमारी कोशिश होना चाहिए कि बच्चों के सामने बिल्कुल भी लड़ाई झगड़े ना हो।
0: जब झगड़े की नौबत आए तो एक प्यारा सा गाना गुनगुना लेना चाहिए एक दूसरे के लिए, तो झगड़े टल तो जाते हैं।
1: हाँ।
0: सुनते हैं ये गाना।

तेरा मेरा साथ रहे, हमारा और श्रोताओं का साथ बना रहेगा। यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर कुछ बातें और करते हैं इस संदर्भ में।

0: विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली।
1: ममता जी, आपने कहा था ना कि रेडियो धीमा सुनना है या तेज आवाज में सुनना है, इस पर से आपके बीच में लड़ाई होती थी।
0: हमारी बहनों, दो बहनों की बहुत लड़ाई होती थी।
1: तो ऐसे ही इसी तरह का एक कमेंट हमारी सखी ने लिखा, ये कहते कि रेडियो तेज सुनना, इस पर हमारा आज भी झगड़ा होता है, पर वो तो मस्ती में फिर हम रेडियो लेकर दूसरी जगह चले जाते हैं और थोड़ी देर के लिए बात नहीं करते, फिर वही मस्ती वाली बातें। कितनी अच्छी बात है
0: और बिल्कुल, और ये भी होता था कि मतलब होता होगा हमारे श्रोताओं के बीच भी कि रेडियो तो तब उस समय एक ही रेडियो हुआ करता था,
1: हाँ
0: अब तो छोटे छोटे ट्रांजिस्टर होते हैं जो कई कई सेट होते हैं घरों में, आप एक किचन में सुन लो, एक दूसरे कमरे
1: और
0: में,
1: मोबाइल से भी सुनते
0: हम
1: हैं बहुत
0: मोबाइल पे
1: सारे।
0: भी सुन लेते हैं क्योंकि हमारे श्रोता बताते रहते हैं। हमारे तो एक श्रोता हैं जिन्होंने बताया था कि उनके पास 11 रेडियो सेट हैं और वो सब बड़े वाले रेडियो सेट। तो अभी शौक भी है, अगर रेडियो से इतना प्यार है तो लोग इस तरह से रेडियो रखते हैं। बहरहाल, बात लड़ाई झगड़े की चल रही थी और तकरार की चल रही थी, तो एक श्रोता ने लिखा है कि लेखिका शिवानी जी के उपन्यास में पढ़ी थी मैंने, गृहस्थी में लड़ाई झगड़ा होता है उतना ही हमारे प्यार की दीवार मजबूत होती है, मतलब जितनी लड़ाई हो उतनी दीवार मजबूत होती है, इसलिए पति से खूब लड़िए थोड़ी देर के लिए। वो कहते हैं ना कि मियां बीबी के झगड़ा दूध में पड़ी मलाई के समान होना चाहिए और मलाई तुरंत हट जानी चाहिए।
1: तो यानी लड़ाई झगड़ा तब होगा जब हम आपस में बातचीत करेंगे, हम अगर हम किसी से हेल्प लेंगे, हम किसी की मदद करेंगे तभी तो बातचीत करेंगे। यानी उस बातचीत के पीछे घर में जो है ना, पति पत्नी एक दूसरे की मदद भी करेंगे, तो फिर थोड़ी बहुत मन मुटाव होना बहुत स्वाभाविक सी बात है। पर ये मन मुटाव बहुत बड़ी लड़ाई में परिवर्तित ना हो जाए और इससे बच्चों पर बहुत बुरा असर ना पड़े, इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए। और एक साथी ने हमारे लिखा है कि लड़ाई किसी के भी बीच हो, चाहे वो बच्चे या अभिभावक हो या हमारे पड़ोसी हो, सभी पर बुरा असर पड़ता है। लगातार हो रहे झगड़े का मानसिक और भावनात्मक असर बच्चों पर ज्यादा पड़ता है, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे जरूर होते हैं, लेकिन ऐसे माहौल में मन के कच्चे बनने में जरा देर नहीं लगती। घर के माहौल को देख स्कूल में या बाहर किसी के साथ भी आक्रामक बनने की संभावना बढ़ जाती है, इसका सीधा असर उनकी पढ़ाई पर पड़ने लगता है, उनका ग्रेड कम होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना चाहिए।
0: अब एक श्रोता ने लिखा है कि सबसे बड़ी बात पति पत्नी को झगड़ना ही क्यों है। अब ये तो सवाल बहुत बड़ा है, क्यों झगड़ना है, मुद्दा क्या होता है
1: जानबूझ के कोई लड़ता नहीं
0: मुद्दे तो बहुत

0: छोटे छोटे होते हैं घरेलू झगड़े, तो बहुत ही छोटे छोटी बातों पर कि तुमने ऐसा कहा, नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा था, अरे तुमने मुझे इस बात के लिए याद नहीं दिलाया, देखो ये तौलिया यहाँ पर रख दी,
1: गीला तौलिया रख
0: चादर
1: दिया,
0: हाँ
1: हाँ,
0: गीली तौलिया रख
1: या फिर
0: दी,
1: सब्जी लाने के लिए बोला
0: हाँ
1: था, तुमने एक
0: तो
1: ही तरह की सब्जियां लेके आ गए, सारी हरी
0: वही
1: वाली हरी पत्तेदार सब्जी लेके आ गए,
0: हाँ
1: अभी मुझे साफ करने के लिए टाइम नहीं है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे मुद्दे होते हैं, लड़ने के लिए कोई उसमें कोई
0: कोई
1: कारण
0: खास
1: नहीं होता।
0: बड़ा कारण नहीं होता, बहुत छोटे कारण होते हैं जिससे लड़ाई झगड़े होते हैं, और पति पत्नी के बीच, या फिर कई बार जब व्यक्तित्व में परिवर्तन होता है तो बड़े झगड़े भी होते हैं, तो दीवार खड़ी हो जाती है। मान लीजिए कई बार संबंधों की बात आती है, संबंधों में दरार जब पैदा होती है, तो फिर उन झगड़ों को बचाना ही बेहतर होता है। और वो कहा भी जाता है ना कि बच्चों पर जो प्रभाव पड़ता है, बच्चे तो भावनात्मक रूप से इतने ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि कई बच्चों का स्वभाव बिल्कुल बदल जाता है, और पढ़ाई ऐसी उनकी चौपट हो जाती है कि वो फिर आगे उनका करियर ही नहीं बन पाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए?
1: बस हमें सामंजस्य रखना चाहिए रिश्ते के बीच में, कि भाई बहुत ज्यादा उसे किसी भी चीज को ना बहुत अधिक अधिक हम महत्व देते हैं ना, कि वही वही बात, ताने मारना, बार बार आलोचना करना।
0: वैसे एक बात बताइए सोना लीजिए, जब आपके पति पत्नी के बीच झगड़ा होता है तो आप क्या करती हैं, कैसे निपटारा करती
1: भाई मैं तो ऐसे करती हूँ, पैर में चप्पल पहनती हूँ, निकल जाती हूँ
0: हैं? पति महोदय सुन रहे होंगे, तो फिर मुझे लगता है कि ये भी एक तरीका है। और दूसरा तरीका ये है कि आप थोड़ी देर बाद एक दूसरे से, जिसने भी जो भी सोचे कि हम समझौता कर ले, एक चाय का ऑफर, एक कॉफी का
1: हाँ,
0: ऑफर, कुछ खाने के लिए, चाय पीनी है क्या,
1: मैं
0: कॉफी
1: बना रहा
0: पीनी है,
1: हूँ, तुम पियोगी क्या?
0: हाँ ये वाला, उसके बाद मुझे लगता है कि झगड़े खत्म हो जाते हैं। या कोई
1: बिल्कुल।
0: मीठी सी चीज रखी है घर में, तो मैं तो ये खाने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, दोनों को करना चाहिए, तो आपको भी खाना है, या फिर चलो यहाँ हम घूमना चाहते हैं, चलना है क्या तुम्हें मॉर्निंग, मतलब सुबह की सैर के लिए, शाम को घूमने, या चलो पिक्चर देखने चलते हैं,
1: अरे
0: या
1: बहुत सारे हैं उसके, तो बहुत सारे की साड़ी ला दी, गिफ्ट ला दी,
0: हाँ
1: चलिए ये साड़ी
0: ये
1: खरीदना
0: तुम्हारे
1: चाहती
0: लिए
1: हो
0: ले
1: क्या?
0: आए,
1: हाँ, या फिर क्षमा कर देना, सबसे जरूरी बात
0: लेकिन
1: है।
0: वहां पर ईगो आ जाता है ना, बीच में जो अहम अहम नाम
1: ये
0: की दीवार है
1: बहुत मोटी दीवार होती
0: वो ऐसा करने नहीं देती है।
1: है।
0: चाय बनाने तो जा रहे हैं, मन कर रहा है कि पूछ लेते हैं, नहीं, इसने तो मुझे बहुत बुरा बुरा बोला था, नहीं पूछते हैं, छोड़ो
1: आज
0: हटाओ,
1: तो पूछूंगा ही नहीं, ये आज तो मैं
0: बिल्कुल
1: पूछूंगी ही नहीं, आज तो कुछ भी हो जाए मैं तो बात करने ही नहीं
0: हाँ
1: वाली।
0: तो सबसे जरूरी है ये जो अहम की दीवार है इसे तोड़ देना। और हमारे लिए इस समय क्या जरूरी है,
1: गाना सुनना।
0: सुनवाते हैं अपने श्रोताओं को ये गाना।

0: माफ करिए सोनाली जी, जरा कमेंट्स जो पढ़ रही है ना, धीरे धीरे चुपके चुपके जरा जोर से पढ़ के सुनाइए।
1: एक हमारे सखी ने लिखा है कि भैया
0: अरे
1: जो
0: मैंने आपसे माफी मांगी, आपने कुछ कहा ही नहीं।
1: ममता जी
0: ये होता है माफी का असर। कि इतनी खिलखिलाहट खिल जाती
1: हाँ,
0: है।
1: और इतने प्यारे अंदाज में कोई बोलेगा ना तो
0: हाँ,
1: यूं
0: दिल आ
1: ऐसे
0: जाता
1: हाँ।
0: है। क्या लिखा है?
1: एक हमारे सखी ने कहा है कि जो है ना, ये क्षमा करने का यानी ये कहने का कि भाई मैं चाय बनाऊं कि नहीं, आपने जो बोला था, तो इसमें ना मन में होता है कि ऐसा बोल दे कि चलो मैं चाय पर मन, वो जो दिल की बात है ना, जुबा तक ही नहीं आती
0: हाँ, वही
1: है।
0: अहम की दीवार जो होती है ना,
1: हाँ
0: तो उस अहम की दीवार को तोड़ना है, और जब वो टूट जाएगा तो ये आसान हो जाएगा। और मुझे लगता है कि आज हम लोगों की बातों से
1: हाँ,
0: जितने झगड़े हुए होंगे सुलट के जाएंगे
1: वो बिल्कुल सुलझने वाले हैं।
0: शाम तक चाय के
1: कोई
0: साथ,
1: कोई
0: है
1: तो भी चाय बनाएगा, कोई पकोड़े
0: ना?
1: बनाएगा, है ना।
0: हाँ बिल्कुल। और कोई चटनी भी बनाएगा।
1: हाँ
0: अभी चटनी की
1: अरे
0: रेसिपी भी
1: बहुत
0: बतानी है।
1: सारी रेसिपीज आई है, हमारे बहुत सारी सखियों ने अलग अलग तरह की रेसिपीज लिखकर भेजी है, जो हम सोच भी नहीं सकते कि इतने अच्छी अच्छी चटनियां भी बन सकती है। ऐसे
0: लेकिन
1: शब्दों की चटनी बहुत बनी है आज।
0: लेकिन क्षमा के बारे में हमारे श्रोताओं ने जो लिखा, वो भी हम एक एक एक करके पहुंचा देते हैं उन तक।
1: जी
0: एक हमारी सखी है जो नियमित रूप से लिखती है, इन्होंने लिखा है कि क्षमा के धरातल पर दो व्यक्तित्व उभरते हैं, एक आप और एक सामने वाला। अक्सर हम अपनी गलती स्वीकार नहीं करते, गलती दूसरे पक्ष की ही मानते हैं, इसलिए क्षमा नहीं करना चाहते। हो सकता है हमें भी समय समय समय पर ग्लानि की अनुभूति होती हो, लेकिन हमारा अहंकार इस तथ्य को उजागर होने से रोक देता है। हमारे घाव हरे के हरे रहते हैं और इसका दर्द भी हम यदा कदा महसूस करते हैं। सामने वाला भी कभी कभी सोचता होगा कि हम क्षमा मांगे, ये द्वंद्व निरंतर चलता रहता है। क्षमा इस द्वंद्व का निराकरण कर देती है, रिश्ता बच जाता है और दोनों फिर से मित्र बन जाते हैं।
1: क्या बात है। एक हमारे साथी ने लिखा है ममता जी कि क्षमा मांगने और क्षमा करने में दोनों में ही सुख है, कभी गलती हो भी जाए तो क्षमा याचना में अपनी नम्रता ही रहती है और रिश्ते मजबूत रहते हैं। उससे भी बढ़कर है क्षमा कर देना, कभी कभी क्षमा करने में ज्यादा जोर आता है, क्षमा मांगने से ज्यादा हिम्मत चाहिए क्षमा करने के लिए, पर यकीनन क्षमा करने में स्वयं को बहुत हल्कापन हो जाता है और बड़े भारी मानसिक बोझ से हम बरी हो जाते हैं। हमने इसको खुद आजमाया है। क्या बात है।
0: कई बार क्षमा मांगकर दुख भी होता है, अगर गलत बात के लिए क्षमा मांगनी पड़े, जैसे कई बार जबरदस्ती आपको माफी मांगनी पड़
1: दबाव
0: जाती है
1: के खातिर
0: दबाव के चलते,
1: जी।
0: परिवार में, समाज में, दफ्तर में, या कहीं ऐसी सार्वजनिक स्थल पर आपको जबरदस्ती सॉरी कहना पड़ता है, तो वहां आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट
1: जी
0: होता है, आत्मसम्मान,
1: वो
0: वहां
1: टूट
0: जा
1: जाता
0: जाता
1: है
0: है। हाँ, चोटिल होता है,
1: जी।
0: तो उसका भी ख्याल रखना चाहिए कि आप किसी के दबाव में आकर माफी
1: क्षमा
0: ना
1: न
0: मांगे।
1: मांगे जी।
0: बिल्कुल।
1: वैसे एक साथी ने लिखा है कि पहले मेरा स्वभाव था, गलती चाहे हो ना हो मैं क्षमा मांग के बात को खत्म कर देना ही पसंद करती थी, पर जब देखा कि इसका भी गलत ही लोग फायदा उठा रहे हैं, तब मैंने कुछ अपने को रिजर्व करा और थोड़ा सा चुप रहकर निग्लेक्ट करना मुझे बेहतर ऑप्शन लगा। ये भी ऑप्शन अच्छा है कि भाई आप थोड़ी सी दूरी बना ले तो फिर इन सब समस्याओं से थोड़ा बहुत छुटकारा तो हम पा सकते हैं।
0: अब क्षमा के जब हम टिप्पणियां पढ़ रहे हैं, तो एक टिप्पणी हमें मिल गई है जो झगड़े वाली, जो क्षमा के साथ मैच हो रही है। इन्होंने लिखा है, हमारी सखी है, हमारा और हमारे घर में झगड़ा होता है कि साहब जी को टीवी देखना पसंद है और मुझे रेडियो सुनना। तो मैं कमरे में जब रेडियो चलाती हूँ और वो टीवी चलाते हैं, तो मैं दूसरे रूम में फोन लेकर चली जाती हूँ। उनका कहना है कि रहो भी कमरे में, फिर भी मैं टीवी तो चलने देती हूँ, म्यूट कर देती हूँ और अपना रेडियो चलता रहता है। हम लोग दोनों रेडियो सुनते हैं और वो टीवी देखते हैं।

0: हैं,
1: आप
0: क्या
1: कान में
0: बात है।
1: हेडफोन लगा लीजिए ना,
0: हाँ वो भी एक
1: ये
0: तरीका है।
1: ऑप्शन अच्छा है।
0: हाँ और ये भी तरीका है कि अपने मतलब कि रेडियो सुनवा देती हैं जबरदस्ती है। मतलब चित्र दिख रहा है और रेडियो सुना जा रहा है, ये भी एक तरीका है। और
1: और एक साथी ने लिखा है, क्षमा बड़न को चाहिए, चोटन को उत्पात, क्षमा बड़प्पन की निशानी है, क्षमाशीलता कमजोरों का नहीं बलवानों का गुण है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण यह है कि आत्मा को शुद्ध करती है और रिश्तों में जहर घोलने वाली नकारात्मकता को समाप्त करती है।
0: तो इनका हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और
1: और
0: भी तो
1: जी,
0: कुछ
1: एक
0: टिप्पणियां
1: साथी
0: हैं।
1: लिखते हैं कि क्षमा धरातल पर दो व्यक्तित्व उभरते हैं, एक आप और एक सामने वाला। अक्सर हम अपनी गलती स्वीकार नहीं करते, गलती दूसरे पक्ष की ही मानते हैं, इसलिए क्षमा नहीं करना चाहते। हो सकता है हमें भी समय समय पर ग्लानि की अनुभूति होती हो, किंतु हमारा अहंकार इस तथ्य को उजागर होने से रोक देता है। हमारे घाव हरे के हरे रहते हैं और इसका दर्द भी हम यदा कदा महसूस करते हैं। सामने वाला भी कभी कभी सोचता होगा कि हम क्षमा मांगे, ये द्वंद्व निरंतर चलता रहता है। क्षमा इस द्वंद्व का निराकरण कर देती है, रिश्ता बच जाता है और दोनों फिर से मित्र बन जाते हैं।
0: क्या बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि क्षमा मांगने में और क्षमा करने में दोनों में ही सुख है। कभी गलती हो भी जाए तो क्षमा याचना में अपनी नम्रता ही रहती है और रिश्ते मजबूत बने रहते हैं। उससे भी बढ़कर है क्षमा कर देना। कभी-कभी क्षमा करने में ज्यादा जोर आता है, क्षमा मांगने से ज्यादा हिम्मत चाहिए क्षमा करने के लिए। दरअसल क्षमा करने वाला ज्यादा बड़ा कहलाता है क्षमा मांगने वाले से, क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्थिति ऐसी बन जाती है कि जहां माफी के लायक वो काम नहीं होता है, तो वहां पर जिसने माफ किया वो बड़ा हो जाता है।
1: पर एक बात ये भी है ममता जी, कि जो रिश्ता होता है ना, कांच की तरह होता है, कि अगर कांच चटक जाए तो फिर उसे जुड़ता नहीं। इस रिश्ते में दरार हमेशा के लिए रहती है, बस कोशिश हो कि उसे टूटने से, बिखरने से बचा दिया जाए। एक साथी कहते हैं कि सिर्फ दो अक्षरों का शब्द है, लेकिन उस दो अक्षरों के शब्द में अपार शक्ति है। क्षमा, जिसे विरास्य भूषणम कहा जाता है, किसी से क्षमा मांगना ये अपनी निर्बलता नहीं है। क्षमा स्वतंत्र रूप से उपचार करने वाली, सुख और शांति के द्वार खोलने वाली कुंजी है, जो सबसे बड़ा उपहार है।
0: क्या बात है। अब सभी श्रोताओं का शुक्रिया अदा करते हुए सुनते हैं ये गाना।

0: सोनाली जी, हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि कभी कभी बात बहुत छोटी होती है और हम ये सोचते हैं कि वो माफी माफी मांगे, और वो सोचते हैं पहले हम बोले, पर किसी को बढ़कर बात कर तो लेनी चाहिए।
1: यही तो
0: और
1: बात आपने कही थी ममता जी, कि उसके बीच में अहंकार की मोटी सी दीवार होती है, पर बात कर वो दीवार को तोड़ देना चाहिए।
0: बिल्कुल। और एक पल आपका आत्मसम्मान चोटिल होता है, लेकिन जैसे ही झगड़े खत्म होते हैं एकदम नॉर्मल सा हो जाता है माहौल। तो इसलिए वो नॉर्मल कर लेने में ही भलाई है।
1: सभी
0: अगर
1: की और खासकर बच्चों की भलाई
0: हाँ
1: है।
0: बिल्कुल। और एक श्रोता के कई श्रोता आज लिख रहे हैं कि आपका ये जो डिस्कशन है प्रोग्राम में वो बहुत अच्छा है, और जो विषय आपने चुना है बहुत अच्छा है, ऐसा लिखा है।
1: और एक
0: और
1: साथी ने लिखा है कि हमारी भी लड़ाई खत्म हो गई है और अब
0: अच्छा,
1: हम चाय पीने वाले
0: क्या बात है
1: हैं।
0: भाई। ये जानकर हमें बहुत अच्छा लगा। और सोनाली, हमारे हमारा तो उद्देश्य यही होता है कि हमारी बात दूर तक पहुंचे और देर तक असर करे। तो अगर किसी श्रोता ने ये लिखा है तो हम सभी श्रोताओं का शुक्रिया अदा करते हैं। अगर आप में से किसी से झगड़ा हुआ है, अनबन हुई है, तो बस एक प्याला चाय बनाइए एक दूसरे के लिए,
1: मिटा
0: और
1: दीजिए
0: हाँ
1: दूरी।
0: माफी मांगिए और
1: जी
0: खत्म कर दीजिए झगड़ा।
1: जी
0: और
1: एक अब चटनी की ओर बढ़े,
0: हाँ, चटनी भी बना सकते हैं।
1: अमरूद की चटनी। इसके लिए एक मध्यम आकार का अमरूद है पका हुआ, 1 कप धनिया, 2-3 हरी मिर्च, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच काला नमक, स्वादानुसार सफेद नमक, 1 नींबू का रस और 2-3 चम्मच पानी। चटनी बनाने की विधि, अमरूद को अच्छे से धोकर पोंछ ले, इसके आगे पीछे का हिस्सा काट दे, अमरूद के छोटे छोटे टुकड़े करें और इसके कड़े बीज बाहर निकाल कर रख दे। मिक्सी के जार में कटे हुए अमरूद, हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक डालें। अब इसमें जीरा पाउडर, काला नमक, सफेद नमक और नींबू का रस मिलाएं और जरूरत के अनुसार 2-3 चम्मच पानी डालकर इसे दरदरा या अपने पसंद अनुसार पीस लें और आपकी स्वादिष्ट और चटपटी अमरूद की चटनी तैयार है। इसे पराठे या भोजन के साथ परोसें।
0: क्या बात है भाई, श्रोता हमारे ये आजमाएंगे। अब एक चटनी की रेसिपी बहुत लंबी सी लिखी है तो कहने को चटनी जो बहुत छोटे छोटी मात्रा में परोसी जाती है, लेकिन रेसिपी बहुत लंबी है। देखते हैं क्या लिखा है। तिल और सूखे धने की चटनी। ये चटनी मेरी नानी बनाया करती थी। सामग्री इस तरह से है कि सफेद तिल आधा कप, साबुत धनिया 2 बड़े चम्मच, सूखी लाल मिर्च 4 से 5, लहसुन की कलियां और जीरा 1 छोटा चम्मच, कड़ी पत्ता और हींग 1 चुटकी, नमक स्वाद के अनुसार। बनाने की विधि, एक भारी कढ़ाई में तिल को धीमी आंच पर हल्का चटकने तक भून ले, इसे एक प्लेट में निकाल लें। उसी कढ़ाई में साबुत धनिया, जीरा, सूखी लाल मिर्च और कड़ी पत्ता डालें। इन्हें धीमी आंच पर तब तक भूने जब तक कि मसालों से अच्छी खुशबू ना आने लगे। इन्हें भी तिल वाली प्लेट में निकाल लें। अब लहसुन को सूखा भून लें, सारी सामग्री को ठंडा होने दें, फिर इसमें नमक हींग डालकर दरदरा पीस लें। स्वादिष्ट चटनी तैयार है। ये काफी समय तक खराब नहीं होती और इसे आप बाजरे या मक्के की रोटी, थेपला या गरम पराठे के साथ खा सकते हैं।
1: एक सखी ने करौंदे की चटनी लिखकर भेजी है। ये करौंदे को काट कर उसके बीज निकाल दीजिए, उसमें लहसुन हरी मिर्च डालकर पीस ले, ऊपर से थोड़ा सरसों का तेल मिला दे, स्वादिष्ट चटनी तैयार होती है। और कदम्ब को काट कर सूखी भुनी लाल मिर्च, भुना जीरा, धनिया, काला नमक और थोड़ा गुड़ के साथ पीस ले, इसमें लहसुन नहीं डालते, आपकी इच्छा हो तो आप डाल दे। ये खट्टी मीठी चटनी रोटी और पराठे के साथ अब बहुत अच्छी लगती है। करौंदे की चटनी में आप धनिया की पत्ती डाल सकते हैं, पर बरसात के दिनों में हम पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग कम करते हैं। करौंदा लहसुन मिर्च के साथ थोड़ा मोटा मोटा पीसा जाता है, ज्यादातर लोग इसे पकाए हुए भुट्टे के साथ खाते हैं। और एक ने लिखा है कि चटनी बोलते ही मुंह में पानी आ जाता है। चटनी खाने में आजकल प्रमुख है, चटनी कई प्रकार की बनाई जाती है, टमाटर की, हरी मिर्च, लहसुन की चटनी बहुत स्वादिष्ट बनती है। वैसे चटनी पुदीने की बनती है, धनिया, हरी मिर्च, थोड़ी अदरक, टमाटर, लहसुन सबको मिलाकर बारीक काट कर मिक्सी में पीस लिए, चटनी तैयार होगी। गरम गरम पराठे या रोटी के साथ खाओ तो बहुत मजा आएगा, सब्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब जब भी सब्जी से बोर हो जाओ घर में चटनी बना लो, मजा आ जाएगा।
0: क्या बात है। तो आज सोनाली जी, जो आज ये तकरार वाली चाय बनेगी उसके साथ थोड़े पकोड़े और ये चटनी,
1: चटनी, हाँ
0: है
1: हाँ
0: ना
1: क्या बात है,
0: जो
1: फिर तो ये ऐसी तकरार बार बार होनी चाहिए
0: कि उसके बाद चाय पकोड़े
1: कि
0: मिले।

0: भाई, इस प्रोग्राम से जाने का मन कभी नहीं करता है और लगता है कि प्रोग्राम का समय कम पड़ गया है।
1: मुझे लगता है
0: और
1: श्रोताओं का भी यही हाल होगा, है ना
0: उन्हीं की बात पे कह रही हूँ
1: जी।
0: क्योंकि वही लिख रहे हैं कि जल्दी से बीत जाता है ये 1 घंटा। हमारे लिए भी ऐसा ही एहसास होता है, लेकिन अब बिल्कुल वक्त नहीं कि बोले बतियाएं या गाना सुनवाएं। लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और सोनाली पाठक का
0: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं लेखक निर्देशक और कॉमिक क्रिएटर आलोक शर्मा से यूनुस खान की बातचीत।
1: आज के मेहमान कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ आलोक शर्मा मौजूद हैं। आलोक, बहुत बहुत स्वागत आपका।
2: धन्यवाद यूनुस भाई, यहाँ आना अपने आप में एक सम्मान की बात है। विविध भारती में, जिसको हम बचपन से सुनते आए हैं, और बहुत कम लोगों को पता है कि मैंने विविध भारती में बतौर आपातकालीन उद्घोषक में 3 दिन बिताए हैं।
1: 3 दिन बिताए
2: 3 दिन बिताए, 3 रातें असल में। उन दिनों जब हम लोग वाणी कोर्स किया करते थे, तो शुरुआत में जो आपातकालीन उद्घोषक होते थे उनको रात की ड्यूटी मिलती थी।
1: बिल्कुल,
2: तो 3 रातें मैंने
1: ओवरनाइट
2: स्टूडियो में
1: किया
2: बिताई हैं।
1: सही है। लेकिन चूंकि बचपन को याद किया, तो बचपन जो है आलोक आपका, वो कॉमिक से जुड़ा हुआ है, ये चस्का कहां से लगा था?
2: बचपन बड़ा मजेदार है। मेरा बचपन असल में कॉमिक्स और रेडियो दोनों से जुड़ा हुआ था।
1: बिल्कुल।
2: तो क्योंकि हम एक संयुक्त परिवार में रहते थे, और मेरी जो माता जी हैं उनको रसोई संभालनी पड़ती थी, दुनिया भर के मेहमान होते थे घर में, तो सबको संभालना पड़ता था। और मेरे ख्याल से मैं शायद 5 या 6 महीने का रहा हूँगा, तो एक छोटा रेडियो था, वो मेरे बगल में वो चला दिया करती थी, और मैं वो रेडियो सुन के मुझे ऐसा लगता था कि कोई मेरे आसपास है। तो मेरे ख्याल से रेडियो मेरे जीवन में पहले आया, फिर कॉमिक्स आई मेरे जीवन में। कॉमिक्स इस वजह से आई कि माता जी को कॉमिक्स भी बहुत पसंद थी।
1: अच्छा।
2: हाँ, वो इंद्रजाल कॉमिक्स बहुत पढ़ा करती थी, फैंटम की बहुत बड़ी फैन थी, तो उनको फैंटम पसंद था, उनके पास अपना कलेक्शन था। तो ये कलेक्शन के साथ ही मैं बड़ा हुआ, और इसके साथ घर में ननिहाल में बहुत कॉमिक्स थी। तो जब भी हम ननिहाल जाते थे, मैं जो भी 2-3 साल का रहा हूंगा, तो कॉमिक्स के जो किरदार थे वो मुझे तब से पता थे। चाचा चौधरी, बिल्लू पिंकी, फैंटम जिसको वेताल बोलते थे उस समय में,
1: बिल्कुल,
2: मैंड्रेक, फ्लैश गॉर्डन, बहादुर, तो इन सबके साथ मैं बड़ा हुआ एक तरीके से कह सकते हैं।
1: बिल्कुल, ये वो दौर था जब कॉमिक्स किराए पर भी मिल जाती थी और
2: जी हाँ,
1: दोस्तों
2: जी
1: से अदला बदली करके पढ़ी जा सकती थी।
2: वो दौर मेरे जीवन में थोड़ा बाद में आया, क्योंकि मेरे ननिहाल में इतनी किताबें थी कि मुझे किराए पे
1: बाहर से
2: किताबें
1: लेने
2: लेने जाने की जरूरत ही नहीं थी। क्योंकि उस समय में बाल पत्रिकाएं भी बहुत होती थी, पराग, नंदन, चंदा मामा, गुड़िया,
1: बाल भारती,
2: बाल भारती, राजा भैया, कई किताबें थी,
1: ढेर
2: कई
1: ढेर
2: तरीके,
1: बहुत
2: ढेरों ढेर।
1: सारी
2: और
1: थी।
2: पराग, तो मैं अभी भी कहता हूं कि पराग का बंद होना मेरे ख्याल से हमारी जो पीढ़ी के साथ सबसे बड़ा अन्याय हुआ है। पराग, धर्मयुग,
1: बिल्कुल,
2: जो वो सारी किताबें आ रही थी, तो ये सारी किताबें जो साप्ताहिक थी, वो हफ्ते के हफ्ते ननिहाल आती थी। इंद्रजाल कॉमिक्स मेरे ख्याल से पाक्षिक, और पाक्षिक के बाद साप्ताहिक हो गई थी, मासिक किताबें आ रही थी, तो किताबों का एक पूरा पुलंदा था वहां पे। जब भी जाओ तो सब मिल जाता था। और मेरे नाना जी डॉक्टर थे, मगर वहां एक आजादी थी उस घर में, तो ऐसा नहीं कि फिल्मी पत्रिकाओं को नीची निगाह से देखा जाए। तो वहां मायापुरी भी थी, वहां माधुरी भी थी, वहां फिल्म फेयर भी थी, हर तरह की किताबें थी, और उन किताबों के बीच मेरा बचपन गुजरा।
1: वाह,
2: तो जो मुझे पसंद आती थी मैं वहां से उठा के ले आता था मेरे पास, और मैंने पढ़ना सीखना और कॉमिक्स पढ़ना सीखना दोनों मेरा एक साथ हो रहा था। तो शिक्षा और कॉमिक्स दोनों साथ में चल रही थी।
1: बिल्कुल। तो ये जो कॉमिक्स का चस्का है, इसका सबसे मजेदार बात यह है कि घर पर कोई विरोध नहीं था।
2: पूरा ये नहीं कहूंगा कि पूरा विरोध नहीं था। क्योंकि थोड़ा होता है ना कि आप जुनूनी पाठक बन जाते हैं एक टाइम, फिर आप खाना पीना छोड़ के पढ़ने लगते हैं, सुध-बुध छोड़ के पढ़ने लगते हैं,
1: कोर्स
2: और
1: की किताब के अंदर
2: कोर्स की
1: कॉमिक्स
2: किताब के
1: रखिए।
2: अंदर कॉमिक्स रख के पढ़ने लगते हैं। तो ये तो हुआ, और ये इस हद तक चला गया वो जुनून के, फिर तो घर पे

0: विरोध होना स्वाभाविक था, क्योंकि फिर आप सबको छोड़ छाड़ के यहीं लग गए हैं। तो ये एक मैं कहूंगा कि बाकी दुनिया में अगर ये 100% हो रहा था तो मेरे साथ 30% हो रहा था, मगर हो रहा था
1: जरूरी
0: कि
1: तौर पर हो
0: हाँ हाँ
1: रहा था।
0: जरूरी
1: हाँ
0: तौर पे हो रहा था कि और कुछ कर ही नहीं रहा है, सिर्फ कॉमिक्स पढ़ रहा है पूरे समय। तो ये हुआ, मगर बहुत ज्यादा नहीं था, बहुत ज्यादा विरोध नहीं था। पापा
1: क्या
0: जी को थोड़ा बहुत
1: बाकी
0: था।
1: बच्चे जो कुछ पढ़ रहे थे आप उससे कुछ अलग पढ़ रहे थे या आप भी सेम चीजें पढ़ रहे थे?
0: नहीं, मैं मेरे ख्याल से उनसे काफी अलग चीजें पढ़ रहा था, क्योंकि जो मेरी पीढ़ी के पाठक हैं वो आमतौर पे मनोज कॉमिक्स, राज कॉमिक्स, डायमंड कॉमिक्स वाले पाठक रहे हैं। मैं क्योंकि वो चीजें भी पढ़ रहा था जो मेरे मामा या मौसियां पढ़ रहे थे मेरे से एक पीढ़ी ऊपर, तो उसमें इंद्रजाल कॉमिक्स भी थी,
1: बिल्कुल
0: उसमें इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया थी, धर्मयुग में बच्चों का कोना था, कार्टून कोना डब्बू जी था, जो मेरी जनरेशन के, मेरी पीढ़ी के लोगों को बहुत ज्यादा नहीं पता था उसके बारे में, लेकिन मैं वो पढ़ रहा था। इसके अलावा भी, क्योंकि मैं भिलाई में पला बढ़ा, औद्योगिक नगर है छत्तीसगढ़ का, पहले वो मध्य प्रदेश था, तो भिलाई में इंडो रशिया कोलैबोरेशन में ये स्टील प्लांट बना था, तो रूस और भारत के लोग वहां रहते थे शहर में,
1: बिल्कुल
0: तो हमें बहुत सारी इंटरनेशनल कॉमिक्स भी मिल जाती थी। तो मार्वल, डीसी, एस्ट्रिक्स, ओबेलिक्स, टिनटिन, ये भी उपलब्ध थी हमें पढ़ने के लिए। बहुत लोग नहीं पढ़ते थे, लेकिन मुझे इनका भी चस्का उसी समय से लग गया था।
1: बल्कि रशियन किताबें भी जो
0: लोक
1: उस जमाने में
0: कथाएं,
1: हिंदी
0: हाँ
1: अनुवाद
0: हाँ
1: आया करते थे वो भी मौजूद
0: बेहतरीन,
1: रहे होंगे।
0: हाँ, यूक्रेनी लोक कथाएं,
1: बिल्कुल
0: रूसी लोक कथाएं, गोरकी की कहानियां,
1: बल्कि मुल्ला नसरुद्दीन तक
0: मुल्ला
1: छापा
0: नसरुद्दीन, हाँ मुल्ला
1: था
0: नसरुद्दीन था एक बहुत अच्छा
1: राधुका
0: कैरेक्टर,
1: प्रकाशन।
0: हाँ राधु का प्रकाशन, और उसमें कैरेक्टर होता था नाजानू, हाँ
1: क्या
0: नाजानू की
1: बात है,
0: कहानियां।
1: वाह।
0: और एक मैगजीन आती थी मीशा, तो मीशा में एक कैरेक्टर होता था, उसका नाम मेरे दिमाग से उतर गया, वो दलिया खाता था और उसको ताकत आ जाती थी, तो वो ऑलमोस्ट पोपाई पोपाई के जैसा था, मगर
1: बिल्कुल
0: काफी मजेदार कैरेक्टर्स थे ये। तो इनकी भी उपलब्धता थी, और उस समय तो मेरे ख्याल से पूरे भारत में थी,
1: क्या बात
0: तो
1: है,
0: मतलब मीशा तो मेरे ख्याल से सबने पढ़ी है मेरी
1: सबने
0: जनरेशन में।
1: पढ़ी।
0: जी
1: बिल्कुल
0: जी जी
1: तो इस दौर को याद करते हुए एक गाना सुनते हैं फिर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे।
0: जी बिल्कुल। तो
1: कौन सा गाना होना चाहिए?
0: बचपन के दिन भी क्या दिन थे।
1: क्या बात है, सुनते हैं।

बचपन के दिनों की सैर कर रहे हैं और इतनी तरह की कॉमिक्स की हम बात करें, जब ये कॉमिक्स आप पढ़ते थे आलोक, तो कल्पनाओं की वो कौन सी दुनिया थी जिनमें आप सैर करते थे और क्या

0: हूं कि वो कौन सी दुनिया थी जिनमें आप सैर करते थे और क्या अपने लिए कुछ सोचते थे इन कॉमिक से जुड़ा हुआ।
1: तो इसकी एक बड़ी मजेदार कहानी है। हमारे घर में टीवी नहीं था। हमारे घर में पहला टीवी जब आया तो मैं 26 साल का था जब मैंने
0: मतलब
1: खरीदा,
0: बहुत ही लेट आया।
1: बहुत ही लेट आया। तो ऐसा नहीं है कि टीवी पता नहीं था, टीवी पड़ोस में था, हम देख लेते थे वहां जाके। तो मेरे ख्याल से 1985 का साल था, टीवी पे संडे की फिल्म आ रही थी, कब क्यों और कहां। उसमें प्राण साहब का एक खतरनाक रोल था जिसमें वो मुर्दे का रोल करते हैं, उनकी आंखें बल्ज होके बाहर निकली हुई हैं। तो वो देख के मैं बहुत बुरी तरह से डर गया।
0: अरे
1: हाँ, उसके बाद प्राण नाम से मुझे दहशत हो गई।
0: लेकिन ये प्राण नाम दो जगह चलता
1: हाँ, ये मैं वहीं आ रहा हूँ, मैं वहीं आ रहा हूँ, मैं वहीं आ रहा हूँ। तो मेरे पिताजी को ये लगा कि अगर मुझे मेरे मन से प्राण नाम की दहशत हटानी है तो उनको ये बताना पड़ेगा कि जो चाचा चौधरी है, मेरा सबसे प्रिय किरदार, उसके सर्जक भी प्राण हैं, उनका नाम भी प्राण है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो PRA 01 लिखा होता है कॉमिक्स के ऊपर में, वो प्राण है,
0: हाँ
1: और जो चाचा चौधरी बनाते हैं उनका नाम भी प्राण है। मैं 4 या 5 साल का रहूंगा उस समय, तो मेरे दिमाग में ऐसा एक खांचा बन गया कि वो जो प्राण है फिल्मों में वही चाचा चौधरी भी बनाते हैं,
0: वाह
1: बहुत
0: वाह
1: लंबे समय
0: वाह।
1: तक, करीब 1-1.5 साल तक। और बाद में वो फोटो भी, जो प्राण की फोटो आती थी कॉमिक्स के पीछे, प्राण का जन्म कसूर ब्रैकेट में अब पाकिस्तान में, हाँ, में
0: पाकिस्तानी
1: हुआ था। तो वो जो पूरा, तो मैं उस तरह से कॉमिक्स पढ़ता था, मैं वहां से पढ़ता था, प्रकाशक मुद्रक तक पढ़ता था मैं कॉमिक्स।
0: बिल्कुल।
1: तो वो उनका जो एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो आता था 85 के आसपास, वो थोड़ा सा प्राण, जो अभिनेता प्राण है, उनके जैसा ही दिखता था वो, मुझे
0: नहीं,
1: मुझे ऐसा लगता था।
0: ये तो जैसा आप देख रहे हो वैसा
1: हाँ,
0: दिख
1: जैसा वो, हाँ,
0: रहा
1: जैसी जिसकी नजर,
0: है।
1: तो
0: हाँ
1: मुझे ऐसा लगता था कि ये वही है। दूसरी चीज, मेरे पिताजी ने मेरे जन्म के पहले कार्टूनिंग के कोर्सेज किए थे, वो कार्टून्स बनाते थे।
0: ओके।
1: हाँ, पारिवारिक व्यापार के क्षेत्र में वो आ गए थे, लेकिन उनका दिल जो था वो कार्टूनिंग में था। तो मुझे ये जरूर पता था कि ये कार्टून्स हैं और इनको कोई बनाता है। और ये जो प्राण वाली कहानी हुई, उसके बाद एक आदत बैठ गई कि अगर मैं कोई कॉमिक्स पढ़ रहा हूं तो मैं जानना चाहता था इसको लिखा किसने है, इसको बनाया किसने है। कल्पना की उड़ान जरूर थी, लेकिन मुझे ये भी पता था कि इन्हें कोई बनाते हैं, लोग बनाते हैं,
0: तो उस
1: और
0: दौर
1: ये
0: के
1: एक
0: कौन कौन
1: प्रोफेशन
0: से
1: है।
0: नामों से आप परिचित हुए?
1: अब बहुत सारे, असल में तो जैसे मुझे 5-6 साल की उम्र से पता था कि ली फॉक फैंटम लिखते हैं और साइबेरी उसको ड्रॉ करते हैं, हालांकि उनसे पहले विल्सन मैकॉय और बहुत सारे लोग थे,
0: पहले ही
1: लेकिन
0: बॉक्स
1: उनका
0: में नाम
1: काम,
0: आता था
1: हाँ,
0: ली
1: पहले
0: फॉक।
1: बॉक्स में नाम आता था ली फॉक साइबेरी करके, फॉक एंड बेरी लिखा होता था। तो मुझे पता था ये फैंटम भी लिखते हैं, ये मैंड्रेक भी लिखते हैं, फ्लैश गॉर्डन जो है वो एलेक्स रेमंड बनाते हैं, रिप कर भी बहुत सारा एलेक्स रेमंड बनाते हैं, बहादुर जो है वो आबिद सुरती लिखते हैं, गोविंद ब्राह्मणिया ड्रॉ करते हैं। तो ये उस 5-6 साल की उम्र में मैंने ये नाम रख लिए थे, क्योंकि मेरे लिए ये भी जरूरी था, चाहे जितनी भी किताबें उस समय आ रही हों, एक सीमा रहती थी इन किताबों की ना, आपको 3 मिलेगी, 4 मिलेगी, 5 मिलेगी। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से वो लोग हैं जिनका काम आपको बहुत पसंद है। तो बजाय एक किरदार को फॉलो करने के, आप उनके क्रिएटर्स को फॉलो करते हैं कि उनके जो सर्जक हैं, कि अगर मुझे आबिद सुरती का काम पसंद है तो मैं आबिद सुरती का और काम ढूंढूंगा, अगर मुझे प्राण का काम पसंद है तो फिर शायद मैं चाचा चौधरी बिल्लू पिंकी खत्म करने के बाद जाब और दाबू भी पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि पर्टिकुलर एक क्वालिटी आ रही है उनके काम की। तो ये उस समय की ट्रेनिंग है मेरे ख्याल से, जो अभी तक है। मैं अभी भी कोई कैरेक्टर को फॉलो नहीं करता, मैं जनरली क्रिएटर फॉलो करता हूं।
0: बहुत बढ़िया बात है। तो कॉमिक्स की ये दुनिया आपको क्या करियर की किसी दुनिया की तरफ ले जा रही थी, या तब कुछ और सोच रखा था जब मम्मी पापा पूछते थे कि बड़े होके क्या बनना है?
1: नहीं, अच्छी चीज ये थी कि हमसे कभी पूछा ही नहीं गया बड़े होके क्या बनना है, तो वो प्रेशर था नहीं सर पे। दूसरी चीज ये थी कि मैं कार्टून्स बनाने लग गया था बहुत बहुत यंग एज में, 4-5 साल का रहूंगा, तो मैंने जैसे सारे बच्चे करते हैं, तो ऐसा कुछ बहुत महान ड्राइंग्स नहीं कर रहा था मैं, लेकिन मुझे शेहाब की ड्राइंग्स बहुत पसंद आती थी। शेहाब साहब छोटू लंबू किया करते थे, और मुझे लगता है कि वो अपने समय की नहीं, अभी के भी सर्वश्रेष्ठ
0: नायाब
1: कलाकारों
0: व्यक्ति,
1: में
0: बिल्कुल।
1: एक हैं। तो शेहाब साहब की जो कला थी वो मुझे बहुत पसंद थी, उनको मैं काफी कॉपी करता था। कार्टूनिस्ट प्राण को कॉपी करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि बहुत कम लाइंस में वो बहुत सारी चीजें निकाल लेते थे। तो मुझे ये था कि मैं कार्टून्स बनाना चाहता हूँ, लेकिन ये प्रोफेशन बनेगा नहीं बनेगा उसकी कोई क्लैरिटी ऐसी थी नहीं मेरे मन में। कार्टून मैं स्वांता सुखाए अपने लिए बना रहा था। एक और चीज ये थी कि पिताजी का काम ऐसा था कि हमारे ट्रांसफर्स होते थे बहुत, एक शहर से दूसरे शहर, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता था कि हर बार नई स्कूल होगी, नई क्लासेस होंगी, नए सहपाठी होंगे, अब फिर से नए दोस्त बनाने हैं, फिर से नए दोस्त बनाने हैं।

0: हर 2-3 साल में स्कूल बदल रहा है, फिर से नए दोस्त बनाने हैं, तो अपने आप में वो काफी प्रेशर वाला काम होता है उस उम्र में। और उस उम्र में अगर मैं अब वापस पलट के देखता हूं तो ये जो कॉमिक्स के किरदार थे ये मेरे परमानेंट दोस्त थे, ये शहर दर शहर मेरे साथ चलते आ रहे थे,
1: चलते आ रहे थे।
0: तो इनके साथ मेरा जो जुड़ाव था वो किसी असल दोस्त से ज्यादा हो चुका था जब तक मैं अपने टीनेज में या किशोर वय जिसको बोलते हैं वहां पहुंचा। तो ये एक चीज थी जिसने मेरा जो अटैचमेंट बोलते हैं वो कॉमिक से बढ़ा दिया। मेरे ख्याल से 10 या 11 साल का रहा होगा तब मुझे लगा कि मैं कार्टून्स बना सकता हूँ और मैं ये भेज सकता हूँ छपने के लिए, तो वो
1: अच्छा।
0: कॉन्फिडेंस रैंडमली आ गया था। और घर में प्रेशर था पढ़ाई को लेकर और बाकी चीजों को लेकर भी, लेकिन ये मनाही नहीं थी कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो बस उसका फायदा मिला, मैंने कार्टून्स बना के भेजना शुरू किया, संपादक के खेत सहित सारे कार्टून्स वापस आने शुरू हुए।
1: लिफाफा भेजते थे आप।
0: लिफाफा भेजता था, वो तो भेजना पड़ता था, जवाबी लिफाफा टिकट लगा हुआ, वो तो नियम ही था।
1: जी।
0: तो शुरू में कार्टून्स नहीं बनाए थे, शुरू में मैंने सोचा कि मैं बहुत आलेख वगैरह लिखूंगा, मतलब वो उस उम्र में ऐसा होता है ना कि आपको लगता है कि आपके पास बहुत ज्ञान है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: हाँ तो वो
1: कुछ भी
0: मेरे,
1: कर सकते
0: हाँ कुछ
1: हैं।
0: भी कर सकते हैं और वो रहना चाहिए, मुझे लगता है वो बाल सुलभ कॉन्फिडेंस सब में पूरी उम्र रहना चाहिए, ता उम्र रहना चाहिए। तो मुझे अभी भी याद है पहला जो मैंने लेख लिखा था वो था डोडो पर, और वो मैंने भेजा था सुमन सौरभ में, और
1: अच्छा।
0: सुमन सौरभ से वो रिजेक्ट होके आ गया था, लेकिन मुझे उसमें कोई ऐसे संकोच शर्म नहीं आई थी। मैंने ठीक है दूसरा लिखेंगे, तीसरा लिखेंगे, चौथा लिखेंगे, क्योंकि खोने के लिए कुछ है ही नहीं आपके पास, तो आप लिख रहे हैं लिख रहे हैं लिख रहे हैं। फिर मुझे लगा कि शायद मैं ड्राइंग्स बेहतर करता हूँ लिखने से। तो हमारे शहर में एक कार्टून मैगजीन निकला करती थी, अभी भी निकलती है, 30 साल से निकल रही है वो मैगजीन, कार्टून वॉच नाम है उसका। तो कार्टून वॉच मेरे हाथ लगी किसी के दोस्त के घर पे और मैंने उसमें कार्टून्स देखे, तो वही मैं कह रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस थोड़ा सा अलग तरीके का था, तो वो देख के लगा ये अगर ये छप रहे हैं तो मैं तो छप ही जाऊंगा। हाँ और वो जो संपादक थे त्रिम्बक शर्मा, उनको मैं त्रिम्बक भैया बोलता हूँ, तो त्रिम्बक भैया असल में सबको कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए ना निहायत ही घटिया कार्टून हो तो छोड़ देंगे, नहीं तो छप जाते थे कार्टून्स। तो मुझे लगा ये तो मैं कर सकता हूँ, एंड बनाया मैंने कार्टून्स, 2-3 बनाए और दोनों तीनों छप गए पहली बार में, मतलब कार्टूनिंग में मेरा रिजेक्शन नहीं हुआ, कार्टूनिंग में मुझे लगा कि यहाँ तो
1: सही है।
0: झंडे गड़ गए, पहले ही दिन पहले ही कार्टून्स गए और 15 दिन में छप के आ गए, किताब आ गई घर पे, उस किताब को लेके मैं घूमता रहा कई महीनों तक, लेकिन हर महीने उसके बाद मैं नियम से कार्टून बनाता रहा। तो इस तरीके से कार्टूनिंग के करियर की शुरुआत हुई मेरी जब मैं शायद 13 या 14 साल का था,
1: और वो भी भिलाई में।
0: भिलाई में, तो उसके थोड़े से पैसे मिलते थे 100 रुपए चाहे जितने भी कार्टून, तो ऐसा नहीं था कि पर कार्टून मिलेगा क्योंकि मैगजीन भी छोटी थी, तो 100 रुपए बहुत बड़ी अमाउंट होती थी, 100 रुपए में आप क्या कुछ नहीं कर सकते थे। हाँ तो और कॉमिक्स तो खरीद ही सकते थे, अब मतलब कॉमिक्स के लिए घर में बोलना या यहाँ वहां भागना
1: ये
0: दौड़ना नहीं
1: हर्डल
0: करना
1: खत्म
0: पड़ता था।
1: थी।
0: हाँ मुझे याद है 56 रुपए का सेट आता था, तो दो
1: हाँ,
0: सेट में
1: और वो
0: खरीद
1: बड़ा
0: सकता,
1: महंगा लगता था उस
0: छप्पन रुपये बहुत महंगा था लेकिन मुझे 100 रुपये मिल रहा था महीने का, तो मैं
1: वक्त।
0: 2 सेट खरीद सकता था महीने का। तो इस तरीके से मेरी पहली लाइब्रेरी की शुरुआत हुई कॉमिक्स की।
1: क्या बात है। लाइब्रेरी एज इन दूसरों को किराए से
0: हाँ
1: देने
0: हाँ
1: लगे।
0: हाँ मैं हमेशा, मेरा कभी ये विचार था ही नहीं कि मैं किराए पे कॉमिक्स पढ़ूंगा, मुझे मेरी
1: हाँ
0: कॉमिक्स मेरे पास चाहिए थी,
1: अच्छा।
0: तो इसलिए मैं मतलब एक समय था 2-3 साल जब किराए से पढ़ी किताबें, मगर मुझे लगता था इतनी बड़ी लाइब्रेरी तो मेरी होनी चाहिए, जितनी
1: अपनी
0: बड़ी,
1: होनी
0: हाँ
1: चाहिए।
0: एक दशमेश लाइब्रेरी करके हमारे शहर में लाइब्रेरी हुआ करती थी भिलाई में गोल मार्केट में, बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, और मेरा लाइफ का, मेरे मतलब जीवन का एक ही लक्ष्य था कि इतनी बड़ी लाइब्रेरी तो चाहिए, इससे छोटी नहीं चलेगी। तो फिर मैंने मतलब दशमेश तो बंद हो गई और हमने अपनी लाइब्रेरी शुरू की और बहुत अच्छी तरह से रन की, मतलब वो हमारे छत्तीसगढ़ में उसको बोलते हैं अंचल, हमारे अंचल की सबसे बड़ी लाइब्रेरियों में से एक थी जो हम लोग रन कर रहे थे,
1: कितने साल चलाई?
0: वो हमने चलाई करीब 4 साल।
1: अच्छा। और किताबें सब वापस आईं सही सलामत?
0: हाँ मतलब देखिए जब ये व्यवसाय बन जाता है ना तो थोड़ा नफा नुकसान तो होता है, तो नफा नुकसान होता था, लोग चुरा के ले जाते थे, फिर हमको ढूंढने जाते थे उनके मोहल्ले में, तो वो एक अपने आप में एक
1: अलग कहानी
0: अलग
1: है।
0: कहानियां हैं, वो एक अलग, मेरे ख्याल से वो हमारा मालगुड़ी डेज है।
1: बहुत सही बात है, बहुत मजेदार बात। लेकिन क्या कार्टूनिंग की कोई बाकायदा ट्रेनिंग लेने की जरूरत महसूस हुई या ऐसा कोई मौका आया?
0: अब लगता है कि ले लेनी

0: ये थी। और लेकिन तब कॉन्फिडेंस उस जगह पे था कि कुछ भी रिजेक्ट नहीं हो रहा था, जो बना रहे हैं सब छप रहा है। और फिर उन मैगजीन्स में भी छपने लगा जो मैगजीन्स में पढ़ रहा था, तो मेरा काम चंपक में आने लग गया, बाल भारती में आने लग गया, बाल हंस में आने लग गया। उस समय की करीब करीब हर मैगजीन में काम आने लग गया था और पैसे भी मिलते थे उसके।
1: तब तो
0: तो मजे
1: अच्छे
0: की बात ये
1: पैसे।
0: थी कि पैसे भी आ रहे हैं और वो ठीक ठाक पैसे थे। मतलब उस समय में एक 15-16 साल का लड़का अगर 500 रुपए भी महीने के बना ले रहा है
1: बहुत ज्यादा
0: तो
1: रकम थी
0: बहुत
1: ये तो।
0: बड़ी रकम हो जाती है वो। तो वो पैसे भी आ रहे हैं, आपकी एक लाइब्रेरी भी चल रही है ठीक ठाक, और
1: हाँ
0: आप कार्टून्स भी बना रहे हैं, तो फिर
1: तो
0: पढ़ाई कौन
1: सेट था
0: करेगा, पढ़ाई कौन
1: मामला।
0: करेगा।
1: अच्छा फिर।
0: फिर मैं 9वीं में फेल हो गया।
1: अरे बाप
0: हाँ,
1: मतलब ये तो बम गिर गया।
0: तबाह हो गया मैं।
1: अच्छा
0: तो 9वीं में मैं फेल हो गया, मुझे समझ
1: इसकी
0: में
1: आगे
0: नहीं
1: की
0: आया।
1: कहानी सुनेंगे आप, ब्रेक लगाते हैं, एक गाना सुनते हैं, कहां तक ये मन
0: सोचना
1: को अंधेरे
0: पड़ेगा,
1: चलेंगे
0: चलिए।
1: कहां।

0: नवी में आप फेल हो गए,
1: नवी में मैं फेल हो गया।
0: ये इसकी उम्मीद थी कि नहीं थी?
1: उम्मीद तो कोई नहीं रखता है,
0: हाँ कि फेल हो
1: हाँ
0: जाऊंगा,
1: फेल हो जाऊंगा
0: मतलब पढ़े नहीं
1: लगता है
0: थे।
1: कुछ।
0: वैसे
1: नहीं मुझे समझ में नहीं आया पूरा नवी कैसे गया, मुझे नहीं पता है। वो
0: नवी
1: पूरा
0: होता
1: पूरा
0: भी
1: ऐसा
0: मिसलदार मैदान ही है।
1: नवी को थोड़ा सा टफ बनाया जाता है ताकि बच्चा 10वीं में अच्छे स्कोर करे और स्कूल का एक स्कोर बना रहे, तो उसको स्कूल का स्कोर बनाने के लिए मुझे लगता है नवी को टफ बना दिया
0: नहीं,
1: जाता
0: और
1: है,
0: ये समझाना कि भाई मिडिल स्कूल पीछे छूट
1: पीछे
0: गया,
1: छूट
0: अभी
1: गया।
0: होश में आ जाओ।
1: नहीं वो तो आप हाफ पेंट से फुल पेंट पे आ जाते हैं, हमारे यहाँ तो ऐसा था कि मिडिल स्कूल तक
0: बिल्कुल
1: हाफ पेंट था फिर फुल पेंट आया,
0: हाँ।
1: तो फुल पेंट आई मतलब आप जिम्मेदार हो जाओ। मैं नहीं हो पाया मेरे ख्याल से। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी बहुत थी ना, मतलब आप एक तरफ लाइव

0: भी चल रही है, आप कार्टून्स भी बना रहे हो, स्कूल में टीचर्स भी आपको एक अलग निगाह से देखते हैं कि इसके तो कार्टून छप रहे हैं, तब तक मेरे लेख वगैरह भी छपने लग गए थे। तो मतलब क्लास 9th का एक लड़का है जिसका हर महीने
1: कहीं ना
0: कुछ
1: कहीं
0: कहीं ना
1: कुछ
0: कहीं
1: छप
0: कुछ
1: रहा
0: ना कुछ
1: है।
0: छप रहा है, तो वो अपने आप में एक अंदर से तो अपने आप में एक रॉकस्टार वाली फीलिंग रहती है ना कि हम ही हम
1: हाँ
0: हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: भले बाकी सारी चीजों में आप शून्य हो, लेकिन एक वो जगह है जहां आमतौर पे कोई पहुंचता नहीं है, वहां जाके आपने अपना आसन जमा रखा है। तो डांट पड़ती थी स्कूल में कि ये सब करते रहोगे, तुम्हारे इतने कम मार्क्स आ रहे हैं, ये है वो है। मुझे लगा था निकल जाएगा, नहीं निकला। अब नहीं निकला तो क्या कर सकते हैं। लेकिन मजेदार बात मैं बताऊंगा आपको कि जो 9वीं में मैं फेल हुआ, उस दिन तो मौत थी मेरी। मतलब लाइफ का, जीवन का सबसे बड़ा फेलियर है वो, क्योंकि आपके सारे दोस्त आपसे 1 साल आगे चले गए, अब आपके साथ बच्चे पढ़ेंगे। उस समय में तो ये लगता है 1 साल छोटा तो बच्चा ही है, अभी तो
1: बिल्कुल
0: 5 साल छोटे भी बराबर के लगते हैं। लेकिन वो था, मोहल्ले वालों को आप क्या जवाब देंगे, सबको पता है आप 9th में थे, पूरे मोहल्ले को अगर पता चला कि आप 10वीं नहीं गए, आप वापस 9th रिपीट कर रहे हो, तो क्या होगा। एक तरीके से सामूहिक बहिष्कार हो जाता है जो बच्चा फेल होता है उसका, उसमें बच्चे की गलती है नहीं है।
1: हमारे यहाँ वो तो सोचा ही नहीं जाता, वो
0: हाँ,
1: जो एक्सेप्टेंस
0: स्टिग्मा
1: वाली
0: जिसको बोलते
1: बात
0: हैं
1: है।
0: ना, तो स्टिग्मा आ जाता है वो,
1: हाँ
0: तो स्टिग्मा तो आ गया था। और आप अपनी नजरों में तो गिर ही चुके हो,
1: हाँ
0: तो एक आप अपनी नजरों में गिरे हो, एक आप अपने पेरेंट्स की नजर में गिरे हो, फिर छोटे भाई बहन है उनकी नजरों में भी गिरे हो, क्योंकि अभी तक आप रोल मॉडल थे और आपने मतलब काफी कुछ अच्छा किया हुआ है अभी तक, आप उनकी नजर में भी गिर गए हैं। मोहल्ले वालों को किसको सच बताएं किसको ना बताएं, पता तो सबको चलेगा, क्योंकि उसमें से कुछ बच्चे हमारे स्कूल में भी हैं। अब उनसे झूठ बोलेंगे आप या सच बोलेंगे, आप फेलियर को एक्सेप्ट कैसे करते हैं। फिर आपके जो दोस्त हैं वो 1 क्लास आगे चले गए हैं, तो आप उनके साथ स्कूल भी नहीं जाते
1: नजरें
0: हैं,
1: कैसे मिलाएंगे।
0: नजरें
1: हाँ
0: कैसे मिलाएंगे। उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी नहीं चाहेंगे कि एक फेल होने वाले बच्चे के साथ उनके बच्चे खेलें।
1: हाँ
0: तो ये जो पूरा एक हमारे समाज ने इस पूरी चीज को जैसा स्टिग्मा बना दिया है, उससे मैं गुजरा पूरे 1 साल।
1: पूरे 1 साल।
0: देखिए बाकी लोग तो बढ़ जाते हैं, लेकिन आप वो अपने अंदर लेके चल रहे होते हैं वो
1: बिल्कुल।
0: फेलियर को, और वो फेलियर ताजा ही है
1: घर
0: ना,
1: घर
0: एक साल
1: वालों का एटीट्यूड क्या था।
0: कुछ खास ऐसा। मतलब पिताजी ने बोला कि अब चलो मेरे साथ काम भी करना पड़ेगा शुरू तुमको, क्योंकि पढ़ाई वढ़ाई में तो लग नहीं रहा कि तुम्हारा कुछ होने वाला है। तो मैंने उनके साथ काम करना भी शुरू किया।
1: क्या काम था वो।
0: मेरे फादर चॉकलेट्स वगैरह ये करते थे, होलसेल में चॉकलेट्स किराने दुकान वालों को सप्लाई करते थे। तो फिर उन्होंने पूरा भिलाई शहर का जो सप्लाई है वो मुझे दे दिया। भिलाई शहर मतलब ऐसा बहुत शहर नहीं, कुछ 25-30 दुकानें जो हम रेगुलरली जहाँ सामान सप्लाई किया करते थे, तो वो मुझे दे दिया उन्होंने कि ये तुम करोगे अब। तो मैंने वो शुरू किया। लाइब्रेरी फिर भी चल रही थी, कार्टून फिर भी बन रहे थे,
1: अच्छा ये
0: हाँ,
1: सब चल रहा था।
0: और ये सब चल रहा था। उसके साथ में मैंने फादर को हेल्प करना भी शुरू किया, वो भी मेरे ख्याल से मेरे 48 साल के तो हो गए थे तब तक मेरे फादर, तो वो शुरू किया मैंने। मुझे ये लगा कि मुझे ये भी समझ में आया कि बिजनेस कैसे होता है। मैं आमतौर पे लोगों से बात करने में कतराता था, तो मेरी जो शर्म थी जो मोहल्ले में और लोगों के बीच थी, वो खत्म होने लगी, वो झिझक हटने लगी मेरी। मुझे पता नहीं अगर इसको हम स्ट्रीट स्मार्ट बोल सकते हैं या नहीं, मगर थोड़ा सा एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस बूस्ट आया मेरे अंदर उससे। बहुत बाद में, करीब मेरे ख्याल से उसके 30 साल बाद, मैंने एक शो लिखा, और उस शो को लिखते समय मैंने जो लीड कैरेक्टर है उसका शो का, उसको क्लास 9th में फेल करवाया। इसलिए नहीं कि ये रेवेंज था, इसलिए कि मुझे बहुत मन था कि मैं दुनिया को बताऊं कि जब एक
1: फेल्योर
0: बच्चा फेल
1: का
0: होता है
1: उस
0: तो वो
1: बच्चे के ऊपर
0: अपने
1: क्या असर
0: अपने
1: पड़ता
0: आप
1: है।
0: में वो एक मौत से गुजर रहा होता है, उसके
1: करेक्ट।
0: ऊपर नई चीजें मत ला दो, क्योंकि वो खुद अपनी नजरों में गिरा हुआ है। तो उसकी जितनी हेल्प कर सको कर दो, हेल्प नहीं कर सकते तो नया गड्ढा मत खोदो उसके लिए। तो ये बहुत जरूरी है लोगों के लिए।
1: कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।

0: शो में
1: हाँ
0: लिखा था ये आपने?
1: ये एक शो था Z5 पे जिसका नाम है फायरफ्लाइज पार्थ और जुगनू। तो हम
0: बिल्कुल
1: लोग बात कर रहे थे, शुरू से डिस्कशन ये था कि ये क्लास में टॉपर नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग टॉपर्स की कहानियां बहुत देखते हैं, हम उसकी कहानी नहीं देखते जो पीछे छूट जाता है। तो हमेशा से वो आइडिया था कि इसकी कहानी वो होगी कि ये पीछे छूट जाए। तो फिर मैंने अपने अनुभवों में वापस जाके उसको कुरेदा और मैंने कहा कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि 9th में फेल हो गया है। तो सबसे पहले तो हमको जाके नया एजुकेशन सिस्टम चेक करना पड़ा कि 9th में फेल होते हैं या नहीं होते हैं। फिर पता चला कि होते हैं,
0: होते हैं
1: हाँ, जहां वो कहानी बेस्ड है वहां तो होते हैं। तो फिर उस चीज को लेके बहुत सारी चीजें जो मैंने झेली थी,
0: वो आ गई
1: बहुत सारी
0: वहां।
1: चीजें जो लोगों ने मुझे बोली थी, वो सब कुछ वहां मैंने उस कहानी में कहा। और बहुत सारे लोग, उसके बाद बहुत सारे लोगों के मुझे कॉल्स आए, एक दो पॉडकास्ट में पॉडकास्टर्स ने मुझे बताया कि वो भी उस दौर से गुजरे हैं,
0: गुजरे
1: एक एक दो दो बार फेल होना या किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में लगातार फेल हो जाना 3 बार, वो सब उस स्टिग्मा से बहुत लोग गुजरे हैं। उसको सही वॉइस नहीं मिली है अभी तक, वो निकल के नहीं आया, कथारसिस नहीं हुई लोगों की। तो मुझे लगा ठीक है, मेरी कथारसिस के बहाने मतलब और बहुत सारे लोगों की कथारसिस हो गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अनुभव हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, कड़वे हैं, अगर अंदर रहते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक जगह
0: एक्सप्रेस
1: पाके
0: होते
1: निकल
0: हैं।
1: जाते हैं।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो इस पूरे दौर से निकले आप कैसे और फिर आगे चीजें कैसे बढ़ी?
1: ये बहुत मतलब फिक्शनल साउंड करेगा, लेकिन हम लोगों के वहां उसको सेकेंड ईयर बोलते थे फेल होने के बाद। नाइन्थ
0: अच्छा,
1: सेकेंड ईयर।
0: ओ ये एक तरह की
1: ये
0: राहत
1: एक तरीके
0: थी।
1: की, हाँ, राहत थी।
0: हाँ
1: तो मेरा जो सेकेंड ईयर था उसमें पता नहीं कैसे मैं एक बहुत अच्छा स्टूडेंट बन के भी निकला, जबकि मैं पढ़ भी नहीं रहा था।
0: अच्छा,
1: हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं मतलब अब खोने के लिए कुछ था ही नहीं ना,
0: हाँ
1: तो
0: बिल्कुल,
1: घबराहट नहीं थी।
0: हाँ
1: तो अब मैं ज्यादा खुल के मजे कर रहा था क्लास में,
0: हाँ
1: क्योंकि ये सब मेरे से छोटे थे, मेरे क्लासमेट्स, दिमाग में तो यही था। तो अब मुझे जो घबराहट थी, जो बेचैनी थी पिछले साल अपने साथ के लोगों के साथ में, वो बेचैनी पता नहीं कहीं गायब हो गई। तो जैसे मैं केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ में सबसे कम मार्क्स आए थे मेरे, सेकेंड ईयर में इन तीनों में मैंने टॉप किया। और हमारे यहाँ 7-8 सेक्शंस होते थे, तो केमिस्ट्री की टीचर का तो मैं मतलब बहुत ऐसा प्रिय छात्र बन गया था, क्योंकि मोल थ्योरी ये वो पता नहीं कैसे मुझे समझ में आने लगी चीजें। तो 9th और 10th यूं करके निकल गए, मतलब चुटकी बजाते 9th और 10th निकल गए। मैं रैंक्स अच्छे ला रहा था, मेरी लाइब्रेरी बहुत बड़ी हो गई थी इस बीच में।
0: अच्छा,
1: हाँ, मेरी लाइब्रेरी हमारे शहर की सबसे बड़ी लाइब्रेरीज में से एक थी। मैं मतलब 14 साल के बाद जब मैं भिलाई एक बार गया था, मेरी लाइब्रेरी की सील लगी हुई किताबें मैंने रद्दी में खरीद के वापस लाए थे। इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी कि 14 साल तक वो किताबें सर्कुलेट हो
0: सर्कुलेट
1: रही
0: होती
1: थी
0: रहीं,
1: उसी शहर में।
0: क्या बात
1: हाँ,
0: है।
1: तो ये इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी, मेरी लाइब्रेरी बड़ी हो गई। मेरे फादर का काम मैंने बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया था। तो वो एक और बेशर्मी भी आ गई थी, चमड़ी मोटी हो गई ना आपकी, आप जितना सुन सकते थे, जितना झेल सकते थे, आपने झेल लिया था। तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं बहुत मददगार साबित हुआ मेरे लिए, कि वो फेलियर उस समय के लिए तो मौत थी, मगर अगले 1-8 साल के अंदर अंदर मुझे लगता है कि मेरे चरित्र निर्माण में बहुत बड़ा हाथ था उस चीज का। तो
0: एक
1: वो एक,
0: नए सिरे से बनने की तैयारी थी।
1: जी, वो मुझे लगता है थोड़ा सा प्रतिशोध की ज्वाला भी थी।
0: बिल्कुल ये कॉमिक्स वाला वर्ड आ गया
1: सुपर कमांडो
0: प्रतिशोध
1: द्रोह की
0: की
1: पहली किताब, हाँ, प्रतिशोध की
0: ज्वाला।
1: ज्वाला थी वो, और वो सम मेरे लिए काम कर गई बेसिकली।
0: हाँ,
1: तो
0: बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। यहां एक गाना सुनते हैं।
1: जी, बिल्कुल।

0: मुंबई कैसे आ गए आप लोग?
1: हाँ, ये बहुत लंबी कहानी है।
0: अच्छा
1: तो मैं कॉमिक्स में काम करना चाहता था, लेकिन जब तक मैं 20 का हुआ तब तक भारत में कॉमिक्स खत्म हो गई थी। करीब
0: हाँ,
1: करीब
0: धीरे
1: से
0: धीरे
1: धीरे
0: धीरे
1: धीरे
0: धीरे
1: धीरे धीरे
0: करके और
1: मेरी मेरी
0: उनका
1: पीढ़ी,
0: अंत
1: मेरे
0: हो
1: ख्याल
0: गया।
1: से कॉमिक्स पढ़ने वाली आखिरी पीढ़ी थी। अभी लोग आ रहे हैं वापस, लेकिन उस समय तो सब खत्म हो गया था। सो जब मैं 20 का हुआ और मैंने मेरा कॉलेज खत्म किया, कॉलेज भी मैंने मजबूरी में खत्म किया था, मेरा मन नहीं था कॉलेज करने का। मतलब 12वीं आते आते तक मुझे समझ में आ गया था कि ये शिक्षा प्रणाली मेरे लिए तो नहीं बनी है। बहुत लोगों के लिए बनी है, मैं शिक्षा प्रणाली के खिलाफ नहीं हूँ, मगर मेरे लिए नहीं थी वो। क्योंकि अब मैं जब स्कूल के बारे में सोचता हूँ तो मुझे उनकी कहानियां याद है, मुझे कुछ भी याद नहीं उन्होंने मुझे क्या पढ़ाया। तो वो शिक्षा प्रणाली से मेरा थोड़ा सा, मैं उखड़ चुका था 12वीं करते करते तक, और मुझे लगा कि मैं खुद पढ़ सकता हूँ। मेरे लिए जब तक मैं कोई चीज को

0: करके ना देखूं, मेरे लिए सीखना बहुत मुश्किल है। तो मैं घर आके किताबों को पढ़ के खुद से अपनी थ्योरीज बना के किया करता था चीजें। कार्टून्स छप रहे थे लेकिन मुझे मजा आना बंद हो गया था कार्टून्स में। मुझे एक अवार्ड मिला था आर के लक्ष्मण से,
1: अच्छा
0: तो हाँ ये उसी स्कूल और कॉलेज के बीच में दो बार मिले थे नेशनल अवार्ड्स। तो उसमें एक बार आर के लक्ष्मण ने मुझसे पूछा कि तुम्हारा प्लान बी क्या है। तो मुझे समझ में नहीं आया, मैंने कहा प्लान बी क्या होता है। तो उन्होंने बोला अगर कार्टूनिंग में नहीं हुआ तो क्या करोगे। तब तक मुझे पता ही नहीं था मुझे क्या करना है, तब तक मुझे पता था मुझे यही करना है। तो ये बड़ा कठिन सवाल मेरे सामने है, और वही आर के लक्ष्मण अगर फेंक रहे हो सवाल आप पे, तो आपको उसको सीरियसली लेना पड़ेगा।
1: बिल्कुल
0: तो बहुत गंभीरता से मैंने इस पे विचार किया। मुझे ये समझ में आया कि पॉलिटिकल कार्टून्स की उम्र नहीं होती, सुबह छपता है शाम तक बासी हो जाता है, खत्म हो जाता है। और मेरे बहुत सारे दोस्त ये कर रहे थे, मैं ये करना चाहता था। मैं अखबारों के ऑफिसेज जाता था, कार्टून्स देख के आता था, कभी छप जाते थे कभी नहीं छपते थे, कभी कोई अखबार वाला कॉल कर देता था कि इतना 3 कॉलम बचा हुआ है कुछ ड्रॉ करके दे दे जल्दी से, तो
1: अरे
0: 3 कॉलम का फटाफट कुछ ड्रॉ करके दिया, उन्होंने 50-60 रुपए दे दिए। तो ये चल रहा था, इसको बहुत लोग संघर्ष बोलते हैं, हमारे लिए बहुत मजे का काम था क्योंकि एक ही सड़क पे सारे अखबारों के ऑफिसेज होते थे, यहां से वहां वहां से वहां वहां से वहां कहीं ना कहीं छप जाता था।
1: वाह
0: और कुछ दोस्त थे जो परमानेंट जॉब में लग गए थे इन अखबारों में, वो अभी भी उन अखबारों के साथ काम कर रहे हैं। अब मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे पत्रकारिता करनी चाहिए, लेकिन पता नहीं, मेरा मन नहीं लगता था, मेरा मन उन शहरों में नहीं लग रहा था जहां मैं बड़ा हो रहा था। मुझे ऐसा लगा कि मुझे यहाँ से निकलना होगा और मैं कार्टून नहीं बनाऊंगा। मैं बहुत क्लियर था इस मामले को लेकर कि मैं पॉलिटिकल कार्टून्स नहीं करूंगा। इसलिए नहीं कि मुझे उससे कोई दिक्कत है, इसलिए कि 1999 सन 2000 का साल था वो, और देश की हवा बड़ी विचित्र सी थी। दूसरी चीज ये थी कि मैंने देखा कार्टूनिस्ट प्राण की एक लेगेसी है, अनुपम सिन्हा की एक लेगेसी है, ली फॉक की एक लेगेसी है, ये मेरे हीरोज हैं। तो अगर मैं लेगेसी नहीं क्रिएट कर रहा हूं तो मुझे आर के लक्ष्मण बनना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे 50 साल कार्टून बनाने पड़ेंगे। और मुझे ऐसा इतना पेशेंस मेरे में नहीं था, अभी भी नहीं है। हाँ मतलब मैं लगातार काम कर सकता हूं, लेकिन वो एक शिद्दत के साथ एक ही चीज करते रहना और फिर उसमें किसी दिन जाके एक लेगेसी क्रिएट करना, वो बहुत दूर की कौड़ी है। तो ये बड़ा गलत भी साउंड कर सकता है, मगर मुझे मेरे काम पे बहुत गर्व है। जो भी मैं कुछ करता हूं उससे अटैच भी हूं और डिटैच भी हूं। अटैच हूं जब तक मैं उसको बना रहा हूं, डिटैच हूं द मोमेंट ये मेरे हाथ से मैंने बाहर भेज दिया, उसके बाद मैं उसको पलट के भी नहीं देखूंगा। लेकिन जब तक मैं उसके साथ हूं तब तक मैं उसके साथ पूरी तरह से हूं। तो वो पॉलिटिकल कार्टूनिंग में पॉसिबल नहीं था,
1: बिल्कुल
0: वो सोशल कार्टूनिंग में पॉसिबल नहीं था, कॉमिक्स बंद हो चुकी थी। तो उस दौर में मुझे ऐसा लगा एनिमेशन मेरे लिए सबसे मुफीद करियर होगा, और एनिमेशन कुछ नहीं पता था मुझे उसके बारे में। तो मुझे ऐसा लगा कि एनिमेशन सीखने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, मैं घर से पैसे मांग नहीं सकता हूँ। तो अब मुझे कहीं जाके स्टूडियो में किसी जगह पे जाके नौकरी मांगनी पड़ेगी, और वहां जाके मैं एनिमेशन सीख भी लूंगा और मैं एक एनिमेटर बन भी जाऊंगा। तब तक तो मुझे नहीं पता था कि एनिमेटर कौन होता है, इन बिटवीनर कौन होता है, डायरेक्टर कोई और होता है। मेरे दिमाग में मैं डायरेक्टर था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसको डायरेक्टर बोलते हैं। तो उसकी भी बड़ी लंबी सी कहानी है कि मुझे नहीं पता था लाइट बॉक्स क्या होता है। तो मैं जेरोक्स मशीन वाले के वहां खड़े होकर दुकान में मैं लगातार जेरोक्स करके उसको मूवमेंट देता था ड्राइंग्स को। अदनान सामी का एक गाना आया था लिफ्ट करा दे, लिफ्ट करा दे पूरा एनिमेट किया था जेरोक्स कर करके,
1: अरे
0: वो
1: बाप
0: कहीं मेरे पास रखा है। क्योंकि मुझे पता ही नहीं था वो उसके इजी तरीके भी हैं, मुझे डिफिकल्ट तरीके पता थे क्योंकि मैं आर्टिकल्स पढ़े थे, तो मैं उस तरीके से ही काम कर रहा था। तो एनिमेशन के लिए भी बहुत हाथ पैर मारे मैंने, भारत में एनिमेशन का कोई स्कोप ही नहीं
1: सिस्टमेटिक
0: था,
1: मामला नहीं था।
0: स्कोप ही नहीं था, कुछ था ही नहीं। एक फिल्म बन रही थी जो मैं क्लास 9th में था तब से बन रही थी, वो अभी तक बनी नहीं थी, उसका नाम भागमती है। भागमती फाइनली उन्होंने लाइव एक्शन और एनिमेशन मिला के कुछ बना दिया था बाद में, मैं तब मेरे ख्याल से ऑलरेडी एनिमेशन में आ गया था तब तक। तो इस तरीके की चीजें हो रही थी, और जो कोर्सेस थे वो बहुत महंगे थे, तो मैं वो नहीं कर सकता था वो कोर्सेज। तो मुझे ऐसा लगा कि सबसे पहले तो मुझे मेरा गांव छोड़ना पड़ेगा। तब तक हम उड़ीसा शिफ्ट हो चुके थे भिलाई से, और ये बहुत छोटा सा गांव था, इसका नाम आताबिरा है। मतलब वहां पर आलोक शर्मा आताबिरा लिख के चिट्ठी डालिए मेरे घर आ जाती थी, इतना छोटा गाँव था वो। तो उसके लिए उस गाँव से निकलना बहुत जरूरी था। उस बीच में गौथम कॉमिक्स नाम की कंपनी शुरू हुई थी जिसने मार्वल और डीसी पब्लिश करना शुरू किया था, तो मैंने अपना बहुत सारा काम उनको भेजा। उन्होंने बोला ये सब कचरा है, मेरे पिछले 6, 7, 8 साल की मेहनत को। उन्होंने बोला ये क्वालिटी हमें चाहिए नहीं। तो अब मेरे मन में ये हुआ कि इनको, मतलब अभी तक तो मैं तुरम खां था, जो भी भेज रहा था सब छप रहा था। ये अचानक एक कौन आ गया है जो मुझे बोल रहा कि सारा खराब है, हमको ये कुछ चाहिए ही नहीं। तो मैं उनको मिलने गया बैंगलोर, वहां मैंने जाके टेस्ट दिए। तो वो भी एक चीज है कि मुझे टेस्ट वगैरह देने से कोई गुरेज नहीं है, मैं अभी भी देने को तैयार होता हूँ। और सैंपल कोई मांगे मुझसे, मैं अभी भी सैंपल करने को रेडी रहता हूँ। तो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बेस्ट आपका ऑडिशन है ही हमारा।
1: बिल्कुल
0: बड़े बड़े एक्टर्स अगर माइंड नहीं करते ऑडिशन देना, तो मतलब मुझे क्यों इस बात से गुरेज हो कि मुझे ऑडिशन देना पड़ रहा है। तो मैंने वहां जाके फिर फाइनली ऑडिशन दिया। बहुत खींचतान के बाद मेरा काम उनको समझ में आया, उन्होंने मुझे बैंगलोर बुला लिया और मेरा पहला पब्लिश्ड काम मार्वल कॉमिक्स में आया।
1: वाह वाह
0: हाँ, तो
1: वाह,
0: पहली कॉमिक्स जो मैंने की वो मार्वल कॉमिक्स थी। मैं अनक्रेडिटेड था, मैं इंकर था स्पाइडरमैन इंडिया में। तो स्पाइडरमैन इंडिया अब तो बहुत बड़ा कैरेक्टर बन गया है, 2004 में वो नया नया कैरेक्टर आया था, अब तो स्पाइडर वर्स वगैरह आ गया है। तो वहां से मेरी कॉमिक्स की जर्नी शुरू हुई। लेकिन तब तक मैं समझ गया था कि कॉमिक्स बहुत मेहनत का काम है। मैं लिखना ज्यादा पसंद करूंगा ड्रॉ करने से, क्योंकि बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छे चित्र बनाते हैं। उस जगह तो मेरे ख्याल से भारत के और विश्व के सबसे बेहतरीन कलाकार उस
1: मौजूद
0: स्टूडियो में
1: थे।
0: थे। तो उनके बीच में जाके 12th प्लेयर बनने का कोई फायदा नहीं है, तो क्यों ना मैं लिखना शुरू करूं। और मैं उनको कहानियां सुनाता था, क्योंकि मुझे कहानियों का शौक बचपन से रहा है। तो उनको कहानियां पसंद आने लगी। उन्होंने कहा कि तू लिखना क्यों नहीं शुरू करता है, तू लिखेगा तो हम चाहेंगे कि उन कहानियों पर हम लोग ड्राइंग करें। तो वहां से थोड़ा सा लिखने की तरफ मेरा रुझान बढ़ना शुरू हुआ। तब तक मैं
1: मार्वल
0: लिखता
1: के
0: नहीं था।
1: साथ।
0: गौथम कॉमिक्स था, गौथम मार्वल के साथ कर रहा था ये चीजें। तो ये आर्टिस्ट ने मुझे बोला, लेकिन तब तक ये हो गया था कि मैं ब्रेक चाहता था उस चीज से, ड्राइंग से। क्योंकि क्या होता है कि किसी चीज को आप बहुत प्यार करते हैं और फिर धीरे धीरे उसकी डेडलाइंस हो जाती हैं, फिर धीरे धीरे उसमें से ना जो उसका जो आनंद है ना, वो पूरा रस
1: निकल जाता
0: निकल
1: है।
0: जाता है। अब वो काम बन जाता है कि
1: यस
0: आप बैंक में हैं या कॉमिक्स बना रहे हैं, दोनों एक काम हो गया है। तो जब ये हो गया है तो, और बैंक का काम इनफैक्ट ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप बहुत लोगों से मिलते हैं, ये तो बहुत एकाकी काम है। तो ये बड़ा अजीब सा माहौल हो गया था कि जो चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद थी, जिसमें मैंने 6-7 साल अपने दिए थे, उसमें से आनंद थोड़ा थोड़ा निकलने लगा था। और मुझे उस बीच में जापानी कॉमिक्स मंगा, जिनको बोलते हैं मंगा, मुझे बहुत पसंद आने लगी। तो मैंने चाणक्य पे एक मंगा बनाना शुरू किया खुद से, और मुझे बोला गया कि मंगा का भारत में कोई भविष्य नहीं है, तो इसको तुम बंद कर दो। तो मैंने कुछ 30-40 पन्ने उसके बना लिए थे, मैंने उसको बंद किया। मैं एक रेडियो स्टेशन गया, एफएम रेडियो तब नए नए आए थे। जीवन का मेरा पहला अनुभव था कि मैं एक रेडियो स्टेशन के अंदर गया और उन्होंने ऑडिशन के लिए बुला लिया। मैंने जस्ट एक मेल भेजी थी उनको कि मैं आना चाहता हूँ, ऑडिशन देना चाहता हूँ। उन्होंने ऑडिशन में बुला लिया। मैंने जीवन में उससे पहले कभी कोई रेडियो स्टेशन नहीं देखा था। मैंने वहां जाके विभत्स ऑडिशन दिया, एक बहुत ही भयानक, मैं अभी भी सोचता हूँ तो मैं सिहर जाता हूँ। मैं एक किरण श्रीधर नाम के आरजे हुआ करते थे, अभी भी हैं, तो मैं अभी भी मतलब कभी कभी किरण को नतमस्तक हो जाता हूँ कि उसने मुझे आधे घंटे कैसे झेला था उस स्टूडियो के अंदर। मैं तो नहीं झेल सकता था अगर कोई मेरे जैसी हरकतें करता वहां पे। तो मैंने बहुत खराब ऑडिशन दिया, बहुत ही ज्यादा खराब। मतलब मैं स्टूडियो के बाहर जाते जाते ही समझ गया था कि ये लोग मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहेंगे। लेकिन यहाँ मेरी कहानी में एंट्री होती है विविध भारती की। तो विविध भारती मैंने सुनना शुरू किया मेरे ख्याल से जब मैं 9वीं में फेल हुआ था उसके बाद, क्योंकि रात में छाया गीत और ये सब आते थे, मुझे बड़े अच्छे लगते थे। थोड़े सुकून वाले गाने होते थे क्योंकि
1: बिल्कुल
0: रात में आपको थोड़ा सा सुकून चाहिए था, क्योंकि तपता हुआ दिन निकाला है सारे
1: बिल्कुल
0: स्कूल से लेके पड़ोस तक। तो वहां मैंने विविध भारती सुनना शुरू किया, जहां मैं आप सबको सुनता था। कमल शर्मा थे, आप थे, आप हैं और बहुत सारे उद्घोषक। मुझे अभी भी याद है आप लोगों का एक होली का कार्यक्रम आया था जो बहुत बहुत मजेदार था। मैंने उसको रिकॉर्ड करके रखा था एक कैसेट में। तो मैं बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड करता था। अमीन सयानी साहब को मैं मिमिक किया करता था। तो मुझे लगा था रेडियो में तो मैं जाके मतलब तूफान ही मचा दूंगा, फिर जैसे कार्टूनिंग में मैंने तूफान मचाया हुआ है अपने दिमाग में। तो जब रेडियो में गया और मैंने ये पूरा ऑडिशन खराब कर दिया, खराब करने के बाद जब मैं बाहर निकल रहा था, तो जो आरजे थी, जैसा कि होता है, एक कुछ तो गलत इंफॉर्मेशन गई एकदम फट करके ऑन एयर। और मैंने कहा नहीं नहीं नहीं ये मन्ना दे की आवाज है। तो उनके जो क्रेडिट्स थे उसमें क्रेडिट गलत गया हुआ था। तो उन्होंने बोला पक्का, मैंने कहा आप चेक कर लीजिए, इंटरनेट था, उन्होंने तुरंत चेक किया, उन्होंने तुरंत मिस्टेक करेक्ट किया। और उसके बाद वो मन्ना दे पर कार्यक्रम था और मैंने उनको लगातार ट्रिविया देना शुरू किया, वो प्रोग्राम ठीक हो गया। और उनको लगा कि ये तो ठीक है, मतलब आया था
1: काम
0: ऑडिशन
1: का
0: देने,
1: आदमी
0: लेकिन
1: है।
0: आदमी काम का है।
1: हाँ
0: लेकिन वो 6 महीने तक मुझे हायर नहीं कर सकते थे ऑडिशन में, अगर आपने गड़बड़ कर दी, उनका कुछ तो रूल था, वो 6 महीने तक हायर नहीं कर सकते थे। तो मैंने 6 महीने से उंगलियों पे गिने, वो 6 महीने मुझे पता है मैंने कैसे गिना है। और मैंने ये भी दिमाग नहीं लगाया कि 6 महीने ऐसे नहीं होता है, 6 महीने वर्किंग डेज के हिसाब से होता है। मैंने 6 महीने डेट टू डेट लगा के
1: और दिन बढ़ गए इसके बाद।

0: नहीं, कम हुए क्योंकि वर्किंग डेज के हिसाब से तो 6 महीना अगर काउंट करेंगे तो वो 7 महीना हो जाता है, सैटरडे संडे हटा के, नेशनल हॉलीडेज हटा के। मैंने वो गिने ही नहीं, जस्ट जिस दिन 6 महीने पूरे हुए मैं बैठा, मैंने कॉमिक्स बनाई एक पेज की कि मैंने क्या क्या गड़बड़ किया रेडियो में आपके यहाँ आके, लेकिन मुझे दूसरा चांस चाहिए। वो कॉमिक्स बना के मैंने प्रिंट किया एक पेज का और मैंने उनको भेज दिया। तो मुझे किसी अनजान नंबर से कॉल आया कि अच्छा आप कार्टून बनाते हैं। मैंने कहा हाँ, तो आप आके मिलेंगे हमसे। मैं वेट कर रहा था रेडियो स्टेशन से कॉल आएगी, लेकिन ये किसी एड एजेंसी से कॉल थी। वो रेडियो से किसी एड एजेंसी को चला गया था मेरा मेरी कॉमिक। तो वो रेडियो की जो प्रोग्रामिंग डायरेक्टर थी, उनके हस्बैंड थे, उनकी एड एजेंसी थी, उन्होंने मुझे फ्रीलांस दे दिया। वो
1: वाह।
0: फ्रीलांस निपटाते निपटाते तक मुझे रेडियो से कॉल आया कि अभी 6 महीने पूरे हुए तुम्हारे, अब आ जाओ। तो वो कॉमिक्स की बदौलत मुझे थोड़ा कॉमिक्स का काम मिला, थोड़ा रेडियो को मिला, और मेरा रेडियो में पदार्पण हुआ इस तरह से। और फिर मैंने रेडियो शोज भी किए। फिर एक वही है ना कि एक फेलियर के बाद जो चमड़ी मोटी हो जाती है वो,
1: करेक्ट।
0: हाँ वो चमड़ी मोटी हो गई। तो रेडियो शोज भी किए, प्रोड्यूस किया बहुत कुछ, वॉइस ओवर्स किए, फिर तो शर्म भी झिझक भी चली गई मुल्क के
1: बिल्कुल।
0: सामने की। तो इस तरह से रेडियो का करियर शुरू हुआ मेरा।
1: यहां एक गाना सुनते हैं
0: लिफ्ट करा दे।
1: अदनान समी की आवाज।

0: ये था इस कार्यक्रम का पहला भाग। इसका दूसरा भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम का संपादन किया मनीषा सिंह ने और प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले।
1: आज के मेहमान।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित या मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

आकाशवाणी FM बठिंडा दे प्यारे श्रोतियो प्यार भरी नमस्कार। आज दा प्रोग्राम अखर बोलदे ने लेके मैं हाजिर हां तुहाडी अपनी रेडियो दोस्त दे प्रोग्राम दी होस्ट सुखजीत। ते आज दे इस प्रोग्राम दे विच आपां गल करांगे हासे दी।

खुश रहना ते ठहाके मार के हसना साडी सब तो वड्डी ते अनमोली कसरत है। मुस्कुराहट रूह दा दरवाजा खोलदी है ते एलब्रूनी दा एक कथन भी ताही लाहे बंद है जेकर मुस्कुराहट असली होवे। अज अंदर ता हर समय वाद विवाद चल रहा हुंदा है ते मुंह ते झूठी मुस्कुराहट करवटां लै रही हुंदी है। स्रोतो बारी ते उपरी मुस्कुराहट अंदर दीआं बीमारियां दा इलाज की करेगी। हसन नालों जिन्ना बीमारियां दा बिना कीम तो इलाज हुंदा सी ओ मनुख नूं लगभग भुली गया है। स्रोतो कहंदे हुंदे ना वी रोंदे चेहरे नहीं विकदे, हसने दी आदत पा सजना। इसे तरह ही बुझे बुझे चेहरे वाले नूं कोई नहीं पुछदा, खुश मिजाज नूं सारे चाहुंदे ने, गलबात करना पसंद करदे ने। हसन नाल बिना कुछ खर्च कीतियां सानूं तंदरुस्ती दा इलाज लभ जांदा है। खुल के ना हसना बीमारियां नूं जी आया नूं कहना है, यानी के बीमारियां नूं सद्दा देना है। इस नूं अखों परोखे करना बज्जर गलती है। पैसे जोड़न वाले बंदियां कोलों हासे दी सुगात 100 कोहां दूर भजदी है ते रुखे सुभा नूं कोसदी अपने रस्ते लगदी है। जिन्हां नूं हसन दी कला नहीं आउंदी इस दे लाभ तो अनजाण ने। ਉਹ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੱਸਣ ਨੂੰ ਇਕਲਾਕ ਤੋਂ ਗਿਰੀ ਗੱਲ ਆਖ ਕੇ ਨਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਕੁਚੱਜੀ ਵਿਹੜੇ

0: थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा हसना जरूर चाहिए, थोड़ा थोड़ा हसना जरूर चाहिए।
1: सो इस दे नाल ही मैनू यानी कि सुखजीत नू अज दा प्रोग्राम अखर बोलदे ने इत्थे ही समाप्त करन दी दिओ आग्या। प्रोग्राम दे निर्माता निर्देशक श्री बलजीत शर्मा।

आवाज दी दुनिया दे प्यारे दोस्तो, मिति 6 अगस्त 2026 दिन वीरवार। आप जी दा दोस्त बलजीत शर्मा ते आप जी दी बहुत ही पसंदीदा रेडियो कंपेयर ते एडिटर गुरदीप कौर गिल जी आप जी दी खिदमत दे विच सरोतियो लेके आ रहे हैं एक विशेष प्रोग्राम पुत्र मिठड़े मेवे। मां दी अरदास ते प्यो दा विश्वास।

तेज हवा भी चली, कई बार वो झुक गया पर हर बार फिर खड़ा हो गया। दिन लंघते गए अते ओहो एक मजबूत रुख बन गया। दूजे पासे पहला बीज डरदा ही रह गया। एक दिन एक मुर्गी आई अते मिट्टी खुरेद के उस बीज नू खा गई। ओहो कदे भी पौधा नहीं बन सकिया। इस कहानी दा सबक ए है कि जिंदगी विच सब तों वड्डी रुकावट अक्सर साडा डर हुंदा है। जो लोग डर करके कोशिश ही नहीं करदे ओह अपनी मंजिल तक कदे नहीं पहुंचदे। पर जो लोग हिम्मत करदे ने, गलतियां तो सीखते हैं अते लगातार अगे वधदे हन, ओही कामयाब हुंदे हन। अज जे तुसी किसे इम्तिहान तों डर रहे हो, नौकरी दी तैयारी कर रहे हो जां किसे मुश्किल हालात विच हो, तां इस कहानी नू याद रखो। हर वड्डा रुख कदे इक छोटा जिहा बीज ही सी। उसने भी हनेरा वेख्या, मुश्किलां वेखियां पर हार नहीं मन्नी। याद रखो, कामयाबी उन्हां नू मिलदी है जो डर तों वड्डे अपने सुपने बनाउंदे हन। अंत विच यही सुंदर विचार कहना चाहांगी, जे तुसी अज एक छोटा कदम भी अपने सुपने वल चुकदे हो तां ओह कदम तुहानू कल तुहाडी मंजिल दे होर नेड़े लै जावेगा। कदे भी अपने आप ते भरोसा ना छड्डो, क्योंकि दुनिया दी हर वड्डी कामयाबी एक छोटी जही हिम्मत नाल ही शुरू हुंदी है। दोस्तों हुण समा है एक सोहणे जिहे गीत सुनण दा, तां आ सुणदे आ एक गीत।

0: 57848 ਅਤੇ 98720-65150।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 60 करोड़ लोग बने ने 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के हकदार। हुण तक 12 करोड़ तो ज्यादा मुफ्त इलाज किए जा चुके ने, जिस नाल गरीब परिवारों के इलाज खर्च विच लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करके आयुष्मान कार्ड बनवाओ। वधेरे जानकारी लई 1455 ते कॉल करो।

आवाज़ दी दुनिया दे प्यारे दोस्तों, मिति 6 अगस्त 2026 दिन वीरवार। आप जी दा दोस्त बलजीत शर्मा ते आप जी दी बहुत ही पसंदीदा रेडियो कंपेयर ते एडिटर गुरदीप कौर गिल जी आप जी दी खिदमत दे विच सरोतियो लेके आ रहे हैं एक विशेष प्रोग्राम पुत्र मिठड़े मेवे। मां दी अरदास ते प्यो दा विश्वास।

सुनना ना भुलना। वाचक ते निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा, संपादन विशेष दिशा निर्देश ते तकनीकी सहयोग गुरदीप कौर गिल जी। दोस्तों समा फिर नोट कर लो, दोपहर 12:10 ते दिन वीरवार साडा विशेष प्रोग्राम पुत्र मिठड़े मेवे, मां दी अरदास ते प्यो दा विश्वास।

नमस्कार श्रोतियो, प्रोग्राम शाम सुहानी लेके हाजिर हाँ मैं। हर रोज़ की तरह आज का यह प्रोग्राम भी तुहाडे फोन कॉल से आधारित होगा। फोन नंबर श्रोतियों को पता ही है, फिर भी जे साडे कुछ नवे श्रोते साडे नाल जुड़े हैं तो वह भी डायल कर सकते हैं 0164-2240-331। दसो अपनी पसंद की आवाज़ तो सुनो उस आवाज़ विच गीत। जब तक पहुँचती है तुहाडी आवाज़ साढ़े तक, तद तक असी पहुँचाते हाँ एक गीत तुहाडे तक।

0: या किसी यूनिफॉर्म बंदे का टारगेट करने के लिए उनकी रेकी करो और आपको पैसे दिए जाएंगे। स्पेशली जो पेट्रोल बम वाला जो मॉड्यूल है उसमें ज्यादा जुबिनाइल है, और इसके अलावा जो जंतर मंतर पे धरना चल रहा था वहां भी ये जाके आए 8 लोग, और वहां इनको लोकल एक सपोर्ट मुहैया करवाई गई, जैसे मटेरियल वगैरह, पेट्रोल बॉम्ब वगैरह दिलवाए गए।
1: डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT जलंधर ने खोजकर्ताओं ने स्थानक तौर पर उपलब्ध उद्योगिक ते खेतीबाड़ी रहन खून तो बने एक वातावरण अनुकूल सीमेंट मुक्त कंक्रीट विकसित किया है। इस नवीनताकारी विकास लिए इसनों एक भारतीय पेटेंट भी दिता गया है। इंजीनियर अंशु शर्मा, डॉक्टर SP सिंह ते डॉक्टर कनिष्क कपूर वालों विकसित सीमेंट मुक्त कंक्रीट रवायती कंक्रीट के मुकाबले ताकतवर ते पायदार समर्था प्रदान करता है। NIT जलंधर के डायरेक्टर प्रोफेसर विनोद कुमार कनौजिया ने टीम नू इस प्राप्ति ते बधाई दी है। पंजाब की अमीर विरासत लोक सभा अते संगीत साहित्य ते समाजिक सरोकारा नू पिछले 2 दहाकों तो वध समय तो घर घर तक पहुंचाने वाला DD पंजाबी अज अपने 26वीं वरेगंढ मना रहा है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट विच इशरानी बरुआ, तन्वी शर्मा, मानसी सिंह, रक्षिता, श्री रामराज, अश्मिता, अनमोल खरब अते श्रियांसी ने महिला सिंगल्स से प्री क्वार्टर फाइनल विच प्रवेश कर लिया। ते आखर चो खास खबरां एक बार फिर तो। संसद ने सर्वोच्च अदालत जजां दी गिनती सोध बिल 2026 नूं पास कीता। मेटा दे मुख कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने बाल एजेंसी सोशल समग्री, डीफेक समग्री ते प्लेटफॉर्म दे संचालन च गलतियां लई सरकार तों मुआफी मंगी। पंजाब मंत्रिमंडल ने सिक्ख्या व्यवस्था नूं मजबूत करन, जनतक सेवावां च सुधार लियाउण ते सूबे च सर्वपक्षी विकास नूं उत्साहित करन दे उद्देश नाल कई इतिहासक फैसले लए। अते पंजाब पुलिस ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन दौरान सरहद बारों एक दहशतगर्दी मॉड्यूल के मैंबरों वालों दिल्ली के जंतर मंतर से हमला करने की एक वड्डी योजना का खुलासा किया। इस दे नाल ही राष्ट्रीय खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुंदा है। राष्ट्रीय खबरों का अगला बुलेटिन तुसीं सुनोगे कल सवेरे 8:30 ते। नमस्कार।
2: हाँ जी स्रोतियों, तुसी सुन रहे सी पंजाबी विच खबरां दा बुलेटिन आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो। तुसी ट्यून किया है आकाशवाणी FM बठिंडा, FM बैंड 101.1 MHz अते प्रसार भारती दी मोबाइल फोन ऐप न्यूज़ ऑन AIR ते। प्रोग्राम चल रहा है जी शाम सुहानी, एक बार फिर तुहाडी खिदमत विच हाजिर हाँ प्रोग्राम लैके शाम सुहानी। प्रोग्राम दा आनंद लो, फोन मिलाओ ते अपनी पसंद दी आवाज विच सुनो अपनी पसंद दा कोई भी गीत। हाँ जी, डायल करो 0164-2240-331। साढ़े नाल एक स्रोता जुड़ चुके है जी, गल करते हैं। हेलो
3: हेलो,
2: हेलो,
3: सत श्री अकाल जी।
2: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
3: हाँ जी, जिला बरनाला पिंड ढिलमा तो सुखदीप सिंह गिल बोल रहा जी। नाम तो चीजा जगप्रीत सिंह गिल।
2: अच्छा जी, ये नाम सीगा कि सारे पिंड का पता सीगा जी?
3: ये जी मेरा भतीजा सीगा जी, ये नाम भी सीगा, पिंड का नाम भी सीगा ते जिले का नाम भी।
2: अच्छा जी, मतलब सारे का ही नाम लेता तुसी विच, इहदा मतलब तुसी रिश्तियां नूं अहमियत दिंदे होंगे अपनी जिंदगी विच, जिहदा कि
3: मतलब जी ये जिला साडा बरनाला गा, पिंड साडा ढिलमा गा।
2: ठीक है जी।
3: हाँ जी, हाँ जी,
2: मेरा नाम लिखा हुआ है सीगा, तुसी लिखा हुआ बोले कि बस रट्टा लग्या हुआ है जी बोलन दा?
3: हाँ जी,
2: ये तुसी लिखा हुआ बोले जा बोलन दा रट्टा लग्या हुआ है तुहानू?
3: ए रट्टा ही लग्या हुआ जी, लिखा तो सादा कानू है, रट्टा ही लग्या
2: हुआ। क्या बात है।
3: हाँ जी, हाँ जी।
2: तो फिर तुसी ये दसो जी, तुसी रिश्तियां नू किस नजर दे नाल देखदे होंगे?
3: रिश्ता दा जी पहली गल तां जी आपदे घर दे विच भैण भाई दी आपदी घर च नहीं बनदी। हाँ जी,
2: ठीक है जी।
3: ते दूजी गल हैगी है जी, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਧੀ ਪੁੱਤ ਜੀ।
2: ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ,
3: ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਾਮਾ ਮਾਮੀ ਆ ਜਾਂ ਭੂਆ ਫੁੱਫੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ।
2: ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ।
3: ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਜੀ,
2: ਹਾਂਜੀ,
3: ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਵਿੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ,
2: ਹਾਂਜੀ,
3: ਜੇ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਮਾਮਾ ਲਾਊਗਾ ਫੋਨ ਤਾਂ ਫੇਰ ਤਾਂ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ।
2: ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
3: ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ?
2: ਹਾਂਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਮਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ
3: ਫੋਨ ਲਾਊਗਾ ਤਾਂ
2: ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਉਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਿਭ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਰਤੀਏ ਆਪਣਾ, ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਦਮ।
3: ਜੀ ਜੀ ਜੀ,
2: ਹੈ ਨਾ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਾਹਾਂ ਖਿਲਾਰੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ, ਆਹ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂ। ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ

0: प्रोग्राम श्याम सुहानी।
1: हुणे तुसी सुन रहे सी प्रोग्राम श्याम सुहानी। तुसी सुन रहे हो FM बैंड 101.1 MHz अते प्रसार भारती दी मोबाइल फोन ऐप न्यूज़ ऑन AIR ते। स्टूडियो दी घड़ी ते समा हो गया जी 7:59 अते 53 सैकेंड। पेश है प्रायोजित प्रोग्राम उमंग। प्रोग्राम दे प्रायोजक ने NCERT। अज तुसी इस प्रोग्राम दा 1343वां भाग सुनोगे।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ आपका मित्र अजीत। उमंग कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सुंदर विचार भेजा है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरेलकर, रतनमाला सुरेलकर, आरती गौरी और ओम कुमार सुरेलकर जी ने। लिखते हैं,
2: बदलना है अगर कल को तो आज को बदलना सीखो, किस्मत की राह न देखो, खुद आगे बढ़ना सीखो।
0: बहुत सुंदर और प्रेरणादायी विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ श्रोताओ, परिवर्तन आज को बदलने से ही आता है, क्योंकि कल कभी नहीं आता।
2: जी
0: आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी का।
2: नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदनलाल वर्मा।
0: और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा लिखते हैं, सर अजीत जी और मैडम विमलेश जी सप्रेम नमस्ते जी। स्वामी विवेकानंद जी पर केंद्रित कार्यक्रम उमंग सुना एवं पसंद आया, कार्यक्रम की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है।
2: आपने आगे लिखा है, कार्यक्रम इस तरह से प्रस्तुत किया गया जैसे स्वामी विवेकानंद जी साक्षात हमारी आंखों के सामने हैं एवं मन लगाकर हम इनका प्रवचन सुन रहे हैं। शानदार कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी एवं समस्त उमंग टीम का हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
0: और राजा जी नगर बेंगलोर से एन आर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी लिखते हैं, लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
2: गुजरात गांधी ग्राउंड से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी।
0: तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। निवेदन है कि इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम के साथ। एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आज की चर्चा में।
2: श्रोताओं, आज हम बात करेंगे उस दोस्त की जो हर समय हमारे साथ रहता है। जरा सोचिए, कौन है वो जो इस आधुनिक युग में हमेशा लगभग हम सबके साथ रहता है, कोई रहे न रहे और उसके बिना अब रहा ही नहीं जाता।
0: हाँ, विमलेश जी, मुझे लगता

0: आप बात कर रही हैं मोबाइल फोन की।
1: बिल्कुल सही कहा जी जी। अब तो लोग क्या विद्यार्थी भी मोबाइल के बिना ऐसे परेशान हो जाते हैं जैसे मछली पानी के बिना।
0: जी बहुत हद तक आपका कहना बिल्कुल ठीक है विमलेश जी। सच्चाई तो ये है कि कुछ तो रात को भी मोबाइल देखते देखते सोते हैं और सुबह भी मोबाइल देखकर ही उठते हैं।
1: लेकिन अजीत जी सच्चाई तो ये भी है कि अब मोबाइल के बिना काम भी नहीं चल
0: जी
1: सकता।
0: वो तो है।
1: हम किसी न किसी प्रकार से उस पर आश्रित हैं।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन हमें एक बात अच्छी तरह से समझना होगा कि मोबाइल तो मात्र एक साधन है।
1: जी
0: महत्वपूर्ण ये है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। इसका सही उपयोग हमें आगे ले जाएगा और गलत उपयोग बिल्कुल पीछे।
1: जी
0: लेकिन प्रश्न है कि मोबाइल का सही उपयोग करें तो कैसे करें।
1: जी अजीत जी, चलिए मान लीजिए परीक्षा 1 महीने बाद है। विद्यार्थी मोबाइल उठाता है पढ़ने के लिए। वो पढ़ाई के लिए गंभीर भी है। मोबाइल में परीक्षा की तैयारी के लिए ऑनलाइन कक्षा चल रही है कि तभी एक नोटिफिकेशन आया, नई रील देखिए। अब बताइए जी जी क्या होगा।
0: फिर एक और रील या स्टोरी और आ जाएगी।
1: बिल्कुल, या सोशल मीडिया पर और कई संदेश आ जाएंगे। पता चला कि उसकी फोटो को बहुत से लाइक्स मिल गए हैं।
0: और एक मैसेज ये भी आ गया कि आपकी फोटो तो साहब बिल्कुल कमाल कर रही है, कुछ और फोटो डालिए। अब क्या होगा हम समझ सकते हैं।
1: देखते देखते 1 घंटा क्या कई घंटे गायब हो गए।
0: और शायद पूरा दिन पानी में गया। तो अब सवाल ये है विमलेश जी कि क्या किया जाए।
1: देखिए, यही वो समय है जब पढ़ने वाले को संयम और दृढ़ संकल्प की जरूरत पड़ती है। एक नियम बनाना होगा, पढ़ाई के समय सोशल मीडिया बंद।
0: और नोटिफिकेशन भी बंद।
1: बिल्कुल, नहीं तो हर 5 मिनट में मोबाइल बोलेगा,
0: क्या बोलेगा।
1: मुझे भी देख लो।
0: लेकिन सवाल ये है कि यदि मैं ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा हूँ तो विमलेश जी इंटरनेट तो ऑन है, ऐसे में सोशल मीडिया भी तो चलता रहेगा।
1: नहीं अजीत जी, आप मोबाइल छोड़े बिना इसे नियंत्रित भी कर सकते हैं। इसका भी उपाय है।
0: वो कैसे।
1: हर मोबाइल की सेटिंग में DND या डू नॉट डिस्टर्ब या फोकस मोड का विकल्प होता है। इस विकल्प को चालू कर दें। वहां आप अपनी इच्छा से फोन या सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन खोल या बंद कर सकते हैं। इससे इंटरनेट चालू रहेगा और आप पढ़ाई बिना बाधा के कर पाएंगे।
0: जी मित्रों, आप अलग से भी सोशल मीडिया के एप्स को उनकी सेटिंग में जाकर म्यूट कर सकते हैं।
1: जी
0: आप एक काम और कर सकते हैं कि सारे एप्स के आइकन मुख्य स्क्रीन से हटाकर दूसरी स्क्रीन पर डाल दें, ताकि यदि संदेश आए भी तो आपको दिखाई ना पड़े।
1: तो श्रोता मित्रों, हम कहना चाहेंगे कि मोबाइल से मनोरंजन जरूर कीजिए, लेकिन इससे अधिक मोबाइल को सीखने का साथी बनाइए। और याद रखिए,
0: मोबाइल पढ़ाई का साधन बने, समय बर्बाद करने का नहीं।
1: पढ़ते समय, परिवार के साथ समय बिताते समय नोटिफिकेशन अवश्य बंद रखें।
0: रोज मोबाइल के उपयोग का समय तय करें और रात में देर तक मोबाइल न चलाएं और इंटरनेट का सुरक्षित और जिम्मेदारी से उपयोग करें।
1: मत भूलिए, मोबाइल आपका सेवक है, मालिक नहीं।
0: क्या बात है, मोबाइल आपका सेवक है, मालिक नहीं। जिसने मोबाइल को नियंत्रित कर लिया,
1: समझिए उसने अपने भविष्य को भी नियंत्रित कर लिया।
0: तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, मिलेंगे फिर एक
1: नई जानकारी के साथ।
0: श्रोताओं, आज हम प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन आपको एक काम करना है।
1: मोबाइल हमारा सेवक है, मालिक नहीं, इस विषय पर 1 या 2 पंक्तियों का एक स्लोगन लिख भेजिए। एक बार फिर से सुन लीजिए, आपको करना क्या है।
0: मोबाइल हमारा सेवक है, मालिक नहीं, इस विषय पर 1 या 2 पंक्तियों का एक स्लोगन लिख भेजिए। और भेज दीजिए अपना स्लोगन हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
0: यूट्यूब में जाइए, टाइप कीजिए NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। वहाँ आपको सर्च के कई विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को सुनिए।
1: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पूरी पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
0: तो श्रोता, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, शीर्षक है परीक्षा।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की कहानी पर आधारित है, जिसे कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। कहानी के द्वारा ईमानदारी, परिश्रम, कर्तव्य निर्वहन और कार्यनिष्ठा के मूल्यों पर प्रकाश डाला गया है।

0: परीक्षा। बात उन दिनों की है जब भारत में अंग्रेजों का शासन था। उन दिनों देश में बहुत सारी रियासतें हुआ करती थीं। रियासतें यानी छोटे छोटे राज्य जो अंग्रेजों की अधीनता तो मानते थे लेकिन स्वतंत्र थे। ऐसी ही एक रियासत थी देवगढ़। राजस्थान की देवगढ़ रियासत बहुत ही मनोरम स्थान में बसी हुई थी। रियासत की जनता बहुत प्रसन्न थी। रियासत की खुशहाली के पीछे सबसे बड़ा योगदान था वहाँ के दीवान यानी मुख्य प्रशासक सरदार सुजान सिंह का। वे दयालु, नीति कुशल और बहुत अच्छे प्रशासक थे, लेकिन अब वे बूढ़े हो चले थे। एक दिन की बात है।
1: महाराज की जय हो। दीवान श्रीमत सरदार सुजान सिंह जी आपसे मिलना चाहते हैं।
2: मिलना चाहते हैं इस समय? उन्हें आदर सहित कक्ष में ले आओ।
1: जी महाराज।
3: महाराज
2: आइए आइए दीवान साहब, बैठिए बैठिए। जी कहिए।
3: राजन, पिछले 40 वर्षों से आपके दास ने इस रियासत की सेवा की है। अब विचारा है कि इस सेवा से अवकाश ग्रहण करूं।
2: दीवान साहब।
3: महाराज,
2: हम आपका अनुरोध स्वीकार तब करेंगे जब आप हमारी एक शर्त मानेंगे।
3: आज्ञा दीजिए महाराज। कैसी शर्त?
2: शर्त ये है कि अवकाश ग्रहण करने से पहले आपको राज्य के लिए एक ऐसा दीवान ढूंढ कर देना होगा जो आपकी तरह सुयोग्य हो।
3: जी महाराज, मैं पूरी कोशिश करूंगा।
0: दूसरे ही दिन देश के सभी प्रसिद्ध समाचार पत्रों के मुख पृष्ठ पर विज्ञापन छपा कि देवगढ़ रियासत के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। इस विज्ञापन का वही असर हुआ जो जंगल में आग का होता है। सैकड़ों लोग अपना भाग्य आजमाने के लिए देश के अलग अलग प्रांतों से देवगढ़ चल पड़े। आइए अब आपका परिचय कराएं कुछ उम्मीदवारों से। आप हैं श्रीमान अ। आप सोकर उठते थे सवेरे 10 बजे, लेकिन जब से यहाँ आए हैं बेचारे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं और बगीचे में टहलते हुए सूर्य देवता के दर्शन करते हैं। और आप हैं श्रीमान ब, स और ज। इनकी तो पूछिए मत। अपने घर में इन्होंने नौकरों की नाक में दम कर रखा था। ये वहाँ अशिष्टता के जीते जागते उदाहरण थे, लेकिन यहाँ तो ये बेचारे नौकरों को भी संबोधित करते समय आप, श्रीमन, महामना, मान्यवर और जनाब जैसे संबोधनों और उपाधियों का उपयोग किए बिना बात ही नहीं करते। और इनसे मिलिए। आप हैं श्रीमान क। आप फैशन के मारे हैं, लेकिन यहाँ सादगी की प्रतिमूर्ति बने घूम रहे हैं। अक्सर राजमहल के पुस्तकालय में आप बड़े बड़े ग्रंथों को उलटते पलटते देखे जा सकते हैं। कुल मिलाकर पाखंडोत्सव चल रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सभी अयोग्य हैं। उन्हें क्या पता था कि कुशल और अनुभवी दीवान सरदार सुजान सिंह की अनुभवी आंखें पर्दे के पीछे से सब कुछ देख रही हैं और अनुभवी कान सब कुछ सुन रहे हैं। समय समय पर उम्मीदवारों को समूह वाद विवाद के लिए भी बुलाया जाता था। एक दिन की बात है, सभी उम्मीदवारों को लगा कि विद्वता तो दिखा ही रहे हैं, क्यों ना शारीरिक क्षमता भी दिखाई जाए। उन्होंने निर्णय लिया कि आज हॉकी खेली जाएगी।
4: वो तो गेंद लिए खुद ही दौड़ा चला जा रहा, उसे पास देना चाहिए।
5: लगता है खुद ही बोल करके मानेगा। छीनता हूँ गेंद उससे।

0: Faccia la cronica.
1: सरदार सुजान सिंह की अनुभवी आंखें कहीं दूर से इस मैच को भी देख रही थीं। खेल खत्म हुआ, सभी खिलाड़ी थके हुए थे, शाम होने वाली थी। अब सबने फैसला किया कि राजमहल लौटा जाए। मैदान से थोड़ी ही दूरी पर एक नाला था जिस पर कोई पुल नहीं था। पथिकों को नाले में से चलकर आना होता था। खिलाड़ी लोग उसी नाले के पास बैठे सुस्ता रहे थे।
2: आज खेल में बड़ा मजा,
3: बहुत मजा आ गया। गोल मारा था भाई, मजा आ गया उसमें तो।
2: हाँ, गोल हो गया। किसी
1: की तभी एक किसान अनाज से भरी हुई बैलगाड़ी लिए हुए उस नाले में आया। नाले में कीचड़ था और चढ़ाई ऊंची थी। उसकी गाड़ी

0: मैदान से थोड़ी ही दूरी पर एक नाला था जिस पर कोई पुल नहीं था। पथिकों को नाले में से चलकर आना होता था। खिलाड़ी लोग उसी नाले के पास बैठे सुस्ता रहे थे।
1: आज खेल में बड़ा मजा,
2: बहुत मजा आ गया। क्या गया। गोल मारा था भाई, मजा आ गया उसमें तो।
3: हाँ, गोल हो गया। किसी
0: दिल खुश हो गया। तभी एक किसान अनाज से भरी हुई बैलगाड़ी लिए हुए उस नाले में आया। नाले में कीचड़ था और चढ़ाई ऊंची थी। उसकी गाड़ी वहीं फंस गई।
4: कहाँ फंस गई?
5: ए, इधर क्या देख रहे हो?
6: साहब, गाड़ी फंस गई है। अगर थोड़ी मदद मिल जाती तो।
4: अच्छा, अगर थोड़ी मदद मिल जाती तो बड़े आए।
2: चलो साथियों, देर हो रही है। दीवान साहब समय का भी बहुत ध्यान रखते हैं।
5: चलो, चलो, चलो, चलो,
6: अरे,
5: चलो
6: भाई, निकलो। लेकिन
4: अरे छोड़ो इन्हें, चलो।
0: लेकिन एक खिलाड़ी ऐसा था जो वहीं रुक गया। आज हॉकी के खेल में उसे चोट भी लग गई थी और वह लंगड़ा रहा था। वह दृढ़ निश्चय के साथ किसान की ओर बढ़ा और बोला,
7: बाबा तुम गाड़ी में बैठकर बैलों को साधो, मैं पहियों को धकेलता हूँ। बस थोड़ी देर में गाड़ी बाहर निकल जाएगी।
6: हाँ, ठीक है,
7: कोशिश करते
6: हैं।
0: और हुआ भी यही। युवक ने पूरा जोर लगाया, किसान ने बैलों को साधा और थोड़ी ही देर में गाड़ी नाले के पार थी।
6: हाँ बेटा, अच्छा किया तुमने।
7: जी बाबा।
6: हुजूर, मुझे रात भर यहीं रुकना पड़ता।
7: तो क्या इनाम देते हो?
6: नारायण ने चाहा तो दीवानी आपको ही मिलेगी।
0: और आखिर वो दिन आ ही गया। सबके दिल जोर से धड़क रहे थे। पता नहीं किसके भाग्य में राजयोग है। राज दरबार सजाया गया।
8: पूरा एक महीना हो गया है। आज फैसला।
9: तुम्हें क्या लगता है?
8: महाराज आ रहे हैं।
9: अरे अरे, सुजान सिंह जी भी आ गए।
0: महाराज सिंहासन पर आसीन हुए। रियासत के दीवान सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा,
6: मेरी दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, इस रियासत के सौभाग्य से हमें ऐसा सुयोग्य पुरुष मिल गया है। मैं पंडित जानकी नाथ साह को दीवानी पाने पर बधाई देता हूँ। जब आप हॉकी खेल रहे थे, आप लोगों को ये स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी कि जो व्यक्ति जख्मी होने पर भी एक गरीब किसान की गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसमें धैर्य, साहस, आत्मबल और उदारता सभी गुण हैं। ऐसा आदमी गरीबों को कभी न सतावेगा।
8: सही बात है।
6: उसका संकल्प दृढ़ है। वो स्वयं चाहे धोखा खा जाए,
8: बिल्कुल सही कहा,
6: लेकिन फिर भी अपने कर्तव्य कर्म से कभी भी पीछे न हटेगा।
0: सभी सरदार सुजान सिंह के चुनाव की प्रशंसा कर रहे थे।
8: अच्छा इंसान है, हमेशा सही काम करेगा।
6: बिल्कुल।
0: और देवगढ़ रियासत के नए दीवान पंडित जानकी नाथ साह को बधाई दे रहे थे।
1: बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो पंडित जी, बहुत खूब चुनाव किया।
2: महाराज की
10: जय हो।
2: महाराज की
10: जय हो।
2: महाराज की
10: जय हो।
2: महाराज की
10: जय हो।
0: सबकी समझ में आ गया था कि धैर्य, साहस, आत्मबल और उदारता जैसे सद्गुण ही व्यक्ति के सच्चे आभूषण होते हैं।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम परीक्षा, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मित्र की सहायता।
1: सुंदर नाटक द्वारा प्रस्तुत इस कार्यक्रम के द्वारा संदेश दिया गया है कि सच्चा मित्र वही है जो समय पर काम आए और हर परिस्थिति में वो आपके साथ खड़ा रहे।
2: एक जंगल था। उस जंगल में एक ऊंचा पेड़ था। उस पेड़ पर एक कौवा रहता था। कौवा बहुत दयालु था। वो सभी पक्षियों की सहायता करता था। जब दूसरे पक्षी दाना चुगने बाहर जाते थे तो कौवा उनके बच्चों की देखभाल करता था। वो पक्षियों के बच्चों को गीत सुनाता था।
3: मैं हूँ काला कौवा, मैं हूँ काला कौवा, दूर दूर तक उड़कर जाता, सारी खबरें

0: एक दिन कौवे को भूख लगी। वो खाने की खोज में निकला। उसने उड़ते हुए देखा कि एक शिकारी आ रहा है। शिकारी के कंधे पर जाल रखा हुआ था। वो जंगल की ओर ही आ रहा था। कौवे ने शिकारी को देखकर सोचा,
1: ये शिकारी अवश्य कुछ पक्षियों को पकड़कर ले जाएगा। शिकारी से पक्षियों की रक्षा करनी चाहिए।
0: उसे बहुत जोर की भूख लगी थी, किंतु फिर भी पक्षियों को बचाने के लिए वो वापस लौट आया। जंगल में पहुंचते ही कौवे ने काव काव कर सब पक्षियों को इकट्ठा किया और बोला,
1: सुनो भाइयों, सुनो, एक शिकारी आएगा, अपना जाल बिछाएगा, तुम्हें पकड़ ले जाएगा, मार मार कर खाएगा। सुनो भाइयों, सुनो।
0: सब पक्षियों ने कौवे की बात मान ली। अब कौवा बहुत थक गया था। उसे भूख भी लग रही थी। वो खाने की खोज में जाने लगा। तभी उसने कुछ कबूतरों को देखा। कौवा उनके पास पहुंचा और बोला,
1: भाइयों, आप कहां से आए हैं? मैंने आपको पहले इस जंगल में कभी नहीं देखा।
2: मैं कबूतरों का मुखिया हूँ। हम सब पास के जंगल से आए हैं और दाना चुगने जा रहे हैं।
1: अच्छा अच्छा, लेकिन सुनो भाइयों, सुनो, एक शिकारी आएगा, अपना जाल बिछा

0: सुनो भाइयो, सुनो सुनो भाइयो, सुनो।
1: कौवे भाई, हम उसके जाल में नहीं फंस सकते, हम उसके जाल पर बैठेंगे ही नहीं।
0: मुखिया जी, वो शिकारी बहुत चालाक है। वो चावल के दाने डालकर जाल लगाएगा।
1: कौवे भाई, हम सब तुम्हारी बात समझ गए हैं, तुम हमारी चिंता न करो।
2: मुखिया कबूतर की बात सुनकर कौवे की चिंता दूर हुई और अब वो खाने की खोज में उड़ गया। थोड़ी देर में जब वो वापस आया तो उसने देखा जंगल में एक स्थान पर सारे कबूतर जाल में फंसे हुए हैं। कौवा उनके पास पहुंचा और बोला,
1: एक जगह चावल के दाने बिखरे देखकर हमें लोभ हुआ। हम चावल खाने नीचे उतरे तो इस जाल में फंस गए।
0: ये तो बहुत बुरा हुआ। अच्छा देखो, शिकारी आ ही रहा होगा, लेकिन तुम सब साहस से काम लो। साहस और एकता से बड़ी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। तुम सब मिलकर इस जाल को लेकर उड़ सकते हो।
1: हाँ, ठीक कहते हो कौवे भाई, ठीक कहते हो, ऐसा ही करेंगे।
2: कबूतरों ने ऐसा ही किया। सब मिलकर उस जाल को लेकर उड़ चले। कौवा भी उनके पीछे पीछे उड़ने लगा। कौवा चूहे के पास पहुंचा और बोला, और कौवा जल्दी से उस जाल के पास पहुंचे।
1: चूहे भाई, जल्दी से इस जाल को काट कर हमें मुक्त करो। शिकारी हमें ढूंढता हुआ यहाँ आ सकता है। ठीक है, जल्दी करो, जल्दी जल्दी।
2: थोड़ी देर में चूहे ने जाल काट दिया। सब कबूतर मुक्त हो गए। मुखिया ने चूहे और कौवे का धन्यवाद किया। फिर सब कबूतर उड़कर अपने जंगल

0: की ओर चल दिए। चूहा अपने बिल में चला गया। कौवा भी अपने पेड़ की ओर उड़ गया। वो आज बहुत खुश था क्योंकि आज उसने देखा था कि मिलजुल कर काम करने में कितनी शक्ति है।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम मित्र की सहायता, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: हां जी श्रोतियों, हुणे तुसी सुन रहे सी प्रायोजित प्रोग्राम उमंग, प्रायोजक सन NCERT। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ FM ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ। ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀ 'ਤੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅੱਜ 8:29 ਅਤੇ 27 ਸਕਿੰਟ। ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਗੀਤ।
5: ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਗੀਤ।

0: हाँ जी, सतेंद्र सरताज दे गाए हुए इस गीत दे नाल ही मैनू जसविंदर कौर नूं दिओ आग्या प्रोग्राम पंज पाणियां दे गीत समाप्त करन दी। नमस्कार।
1: ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਗੀਤ।
0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਗੀਤ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ 101.1 ਮੈਗਾਹਰਟਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਐਪ ਨਿਊਜ਼ ਔਨ AIR ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ। ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀ ਤੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ 8:44 ਅਤੇ 38 ਸਕਿੰਟ। ਠੀਕ 8:45 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਸੰਧਿਆ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ 9 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ। ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਪਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं निखिल कुमार। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित किया। लोकसभा ने डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता देने वाला विधेयक पारित किया। मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग ने बाल शोषण सामग्री, डीप फेक कंटेंट और प्लेटफॉर्म की खामियों पर केंद्र सरकार से माफी मांगी। देश ने अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के 7 साल पूरे होने का उत्सव मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, संवैधानिक परिवर्तनों ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास तथा सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया। भारत ने इस्लामाबाद को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा समाप्त करने, आतंकी नेटवर्क को खत्म करने और अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा तथा अनमोल खरब सहित 7 भारतीय महिला खिलाड़ी सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में। और अब समाचार विस्तार से। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। यह विधेयक सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करता है। इसके अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
4: न्यायपालिका के बढ़ते कार्यभार, न्यायिक विषयों के बदलते प्रकृति व उभरते कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल इंटरप्रिटेशन के नए सवालों को ध्यान में रखकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना एक समय की मांग और समयानुकूल सुधार भी है, जिसमें संवैधानिक पीठों के अधिक गठन की आवश्यकता भी एक प्रमुख पहलू है।
3: हमारे संवाददाता ने बताया कि विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों को निपटाना है।
5: सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या को कम करने के लिए जजों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। इस साल जनवरी तक सुप्रीम कोर्ट में 92,000 से अधिक मामले लंबित थे। वर्ष 2019 से सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित 34 जजों की स्वीकृत संख्या पूरी होने के बावजूद केवल 65,000 से अधिक मामलों का ही निपटारा हो सका, जबकि पिछले

0: अदालत में 75,000 से अधिक नए मामले आए। हर साल नए मामलों की संख्या निपटाए गए मामलों से अधिक होने के कारण सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अब जजों की संख्या बढ़ने से मामलों का निपटारा तेज होगा और लोगों को समय पर न्याय मिल सकेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: लोकसभा में बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पारित हो गया है। विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग कार्यप्रणालियों के अनुरूप बनाना है। इसका लक्ष्य वर्तमान बैंकिंग कार्यप्रणालियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। विधेयक में बैंकरों के बही खातों का इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य, वैध और कानूनी रूप से लागू करने योग्य प्रावधान भी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित होने के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग का भी आग्रह किया।
2: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो, कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी कर प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
1: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों से जुड़े जोखिमों से अवगत है। श्री वैष्णव ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि सरकार ऑनलाइन सुरक्षा से संबंधित वैश्विक घटनाक्रमों और विकसित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय नियामक दृष्टिकोणों से अवगत रहती है। इसमें डिजिटल वातावरण में बच्चों की सुरक्षा के लिए विभिन्न देशों की ओर से अपनाए गए उपाय भी शामिल हैं। मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई त्रुटियों के लिए केंद्र सरकार से क्षमा मांगी है। सूत्रों के अनुसार मेटा ने स्वीकार किया है कि कुछ विशेष प्रकार की सामग्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। मेटा को स्पष्ट कर दिया गया था कि वे मध्यवर्ती की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं और वे ही तय करते हैं कि उनके मंच पर दी गई सामग्री किसे प्राप्त होगी। बंबई उच्च न्यायालय ने मेटा एक्स कॉर्प तथा गूगल एलएलसी को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को निशाना बनाकर बनाए गए अपमानजनक, अश्लील और मानहानिकारक सोशल मीडिया पोस्ट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ऐसे तंत्र विकसित करने के लिए भी कहा है जिससे पीड़ितों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता के बिना ही ऐसी सामग्री को तुरंत हटाया जा सके। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। देश ने आज अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के 7 साल पूरे होने का उत्सव मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता तथा खेल के क्षेत्रों में अवसर बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह लागू होने से महिलाओं और वंचित समुदाय सहित उन लोगों को भी अधिकार मिले हैं जो दशकों से वंचित थे। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि दोनों अनुच्छेदों को निरस्त करने के बाद राज्य में बहुत विकास हुआ है।
3: धारा 370 और 35 से ये एक विभेदकारी और अन्याय पूर्वक एक धारा थी जिसको समाप्त किया नरेंद्र मोदी जी ने, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार भी तेज हुई। विरासत और विकास दोनों को बल मिला, वहां के नागरिकों को रोजगार मिला, पहली बार उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना काम होते हुए देखा, तो नागरिक तो वहां खुश है।
1: जम्मू कश्मीर से राज्यसभा सांसद सतपाल शर्मा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को जम्मू कश्मीर के पूर्ण एकीकरण और विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है।
4: जिस ऊंचाइयों की तरफ आज जम्मू कश्मीर अग्रसर है वो अपने आप में दर्शाता है कि 370 हमारे ऊपर एक कलंक था वो हट गया है। हमारी मातृशक्ति जिसकी शादी हमारे प्रदेश के बाहर होती थी, उनका हक जो था वो छिन जाता था, उनके प्रॉपर्टी राइट्स जो थे वो चले जाते थे। वाल्मीकि समाज के लोग, गोरखा समाज के लोग 370 हटने के बाद उनको उनका हक मिला है।
1: भारत ने आज पाकिस्तान को पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा रोकने, आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने और उसके अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने की सलाह दी। तथाकथित यौम इस्तेहसाल पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री की टिप्पणियों के संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दुनिया इन सुनियोजित तमाशों से मूर्ख नहीं बन रही है। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के

0: केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है, हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। पंजाब पुलिस ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हाल ही में हुए विद्यार्थियों के प्रदर्शनों के दौरान सीमा पार आतंकी मॉड्यूल द्वारा हमला करने की एक योजना का खुलासा किया है। अमृतसर पुलिस ने कल सीमा पार के दो आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि वे दिल्ली में जंतर मंतर पर पेट्रोल बम से हमला करने वाले थे। हालांकि भारी सुरक्षा व्यवस्था को देखकर उन्होंने अपनी योजना छोड़ दी। अमृतसर पुलिस आयुक्त गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि नई दिल्ली में हमला करने की कोशिश करने वाले सभी लोग नाबालिगों को ISI द्वारा प्रशिक्षित किया गया था।
1: जो दूसरा मॉड्यूल है पेट्रोल बम फेंकने का और उनको बनाने का ट्रेनिंग दी गई ISI के जो हैंडलर्स हैं उनके द्वारा, और वहां उनको बताया गया कि आप पुलिस की एस्टेब्लिशमेंट या सिक्योरिटी एजेंसी की एस्टेब्लिशमेंट या किसी यूनिफॉर्म बंदे का टारगेट करने के लिए उनकी रेकी करो और आपको पैसे दिए जाएंगे। इसके अलावा जो जंतर मंतर पे धरना चल रहा था वहां भी ये जाके आए 8 लोग और वहां इनको लोकल एक सपोर्ट मुहैया करवाई।
0: झारखंड में रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन जोर पकड़ रहा है। आंदोलनकारी छात्रों ने आगामी मानसून सत्र के दौरान अपनी मांगों को मनवाने के लिए झारखंड विधानसभा का घेराव करने की घोषणा की है। इस बीच भाजपा ने इन प्रदर्शनों पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की चुप्पी की आलोचना की है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि उन्होंने झारखंड का दौरा इसलिए नहीं किया क्योंकि कांग्रेस राज्य में सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा है। श्री पात्रा ने राहुल गांधी की आलोचना की है कि उन्होंने अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए मासूम बच्चों को संवाददाता सम्मेलन में घसीटा।
2: जो बच्चे आज राहुल जी के साथ थे उन्हें मैं बहुत प्यार से कहना चाहूंगा कि निडर रहना, बिल्कुल आप घबराना मत। हम विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो सकते हैं, हम सब पार्टीज हो सकते हैं, मगर आप हमारे हैं, प्रधानमंत्री आपके हैं, हम सब आपके साथ हैं। हम ऑपोजिशन की और राहुल गांधी की झूठी नरेटिव यहाँ एक्सपोज करना चाहते हैं।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। हैदराबाद में आज ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की दूसरी बैठक संपन्न हुई। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में हुई 2 दिन की बैठक का विषय था सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की सचिव रचना शाह ने कहा कि भारत की भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति का उल्लेख इस दौरान किया गया। उन्होंने कहा कि सत्यनिष्ठा, सुशासन और सतत विकास की नींव है। बैठक में ब्रिक्स के सदस्यों ने कानून प्रवर्तन विशेषज्ञों के ब्रिक्स नेटवर्क के लिए भारत के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति व्यक्त की। यह नेटवर्क भ्रष्टाचार के मामलों में वांछित भगोड़ों का पता लगाने में सहायता करेगा और प्रत्यर्पण में सहयोग भी करेगा जो वर्तमान कानूनी प्रक्रियाओं का पूरक होगा। सरकार ने विदेश व्यापार नीति 2023 के अंतर्गत कंपनी के पास मौजूद उस कुल सामान, माल या स्टॉक के आधार पर सीमा पार ई कॉमर्स निर्यात ढांचे का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है। ये ढांचा भारत में निर्मित या उत्पादित वस्तुओं के इस आधार पर सीमा पार ई कॉमर्स निर्यात पर सुगम बनाने के लिए व्यापक नीति और प्रक्रियात्मक संरचना प्रदान करता है। इसमें कई सुरक्षा उपाय शामिल हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ई कॉमर्स निर्यात का लाभ भारतीय निर्माताओं तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मिले और साथ ही नियामक निगरानी भी बनी रहे। सरकार ने कहा है कि मुंबई देश में फिल्म, टेलीविजन प्रसारण, डिजिटल मीडिया और कंटेंट निर्माण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। यह भारत के मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में कहा कि मंत्रालय ने भारतीय सिनेमा, फिल्मों की विरासत और फिल्म सामग्री के प्रसार को प्रोत्साहन देने के लिए विकास, संचार तथा फिल्म सामग्री के प्रसार की केंद्रीय योजना लागू की है। केंद्र सरकार पत्रकार कल्याण योजना लागू करती है। लोकसभा में लिखित उत्तर में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि योजना के अंतर्गत सरकार ने 2014-15 से 2025-26 तक 456 मीडिया कर्मियों या उनके परिवारों को 19 करोड़ 41 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बताया कि रेपो दर को 5.25% तक रखा गया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 152 अंक बढ़कर 78,581 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में मामूली 10 अंक

0: अंकों की बढ़त हुई और ये 24,625 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 25 पैसे मजबूत होकर 1 अमरीकी डॉलर की तुलना में 95 रुपए और 13 पैसे पर बंद हुआ।
1: कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा और अनमोल खरब सहित 7 भारतीय महिला खिलाड़ी सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इन खिलाड़ियों में ईशरानी बरुआ, मानसी सिंह, रक्षिता श्री रामराज, अश्मिता चालिया और शियांशी वलीशेट्टी भी शामिल हैं। वहीं महिला डबल्स में सोनाली सिंह और रितिका ठक्कर तथा मिक्स्ड डबल्स में श्रुति मिश्रा और ईशान भटनागर ने अंतिम 16 में जगह बना ली है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, झारखंड, गंगा के मैदानी पश्चिमी बंगाल, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में कल मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। झारखंड, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी कल तेज बारिश होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित किया। लोकसभा ने डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता देने वाला विधेयक पारित किया। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने बाल शोषण सामग्री, डीप फेक कंटेंट और प्लेटफॉर्म की खामियों पर केंद्र सरकार से माफी मांगी। देश ने अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के 7 साल पूरे होने का उत्सव मनाया। प्रधानमंत्री ने कहा, संवैधानिक परिवर्तनों ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास और सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया। भारत ने इस्लामाबाद को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा समाप्त करने, आतंकी नेटवर्क को खत्म करने और अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Parliament passes bill increasing the strength of Supreme Court judges to 37. Lok Sabha clears legislation giving legal recognition to digital banking records. Meta CEO Mark Zuckerberg apologizes to Government of India over child abuse material, deepfake content and platform lapses. Nation marks 7 years of abrogation of Articles 370 and 35A. Prime Minister Narendra Modi says constitutional changes ushered in development and empowerment in Jammu and Kashmir and Ladakh. New Delhi asks Islamabad to end bloodshed in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, dismantle terror networks and vacate illegally occupied Indian territories. And at Korea Masters Badminton Tournament, Tanvi Sharma and Anmol Kharb among 7 Indians to enter second round of women's singles. The Parliament has passed the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha returning the legislation to the Lok Sabha after discussion. The Lok Sabha had passed the bill on Monday. The legislation amends the Supreme Court Number of Judges Act 1956 for increasing the number of judges of the Apex Court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. Union Law and Justice Minister Arjun Ram Meghwal moved the bill in the Rajya Sabha. Replying to the debate in the House, Mr. Meghwal said, in view of the increasing workload of the judiciary, the evolving nature of judicial matters and the emerging constitutional and legal interpretation issues, increasing the number of judges in the Supreme Court is the need of the hour and a timely reform. Our correspondent reports that the strength of the judges of the Supreme Court was last increased from 30 to 33, excluding the Chief Justice of India, by amending the original act through the Supreme Court Number of Judges Amendment Act 2019.
3: The increase in judge strength is one of the viable solutions for tackling the pending backlog of cases in the Supreme Court. As on 1st of January this year, over 92,000 cases are pending in the Supreme Court. Even while working at near full sanctioned capacity of 34 judges, including the Chief Justice of India, since 2019, the Supreme Court recorded institution of 75,410 fresh matters last year, against a disposal of more than 65,000 cases. The volume of litigation in the Supreme Court has constantly been on the rise due to a persistent gap between institution and final disposal of cases in the court. The increase in the number of judges in the Supreme Court is expected to expedite the disposal of cases and ensure timely justice to the people. With Dipendra, this is Anand Kumar for Akashwani News, Delhi.

मौसम फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और भूपिंदर की आवाजों में, गुलजार ने इसे लिखा, मदन मोहन का संगीत। आप सुन रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम आपके लिए विविध भारती से।

किशोर कुमार को आप सुन रहे थे। इस गीत में आराधना फिल्म से इसे लिया गया था। आनंद बख्शी ने इसे लिखा, एस डी बर्मन का संगीत।

लता मंगेशकर को आप सुन रहे थे। इस गीत में मौसम फिल्म से इसे लिया गया था। गुलजार ने इसे लिखा, मदन मोहन का संगीत। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम आपके लिए यहीं संपन्न होता है।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। वो बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

उनके अभिनय उनकी खूबसूरती पर भंवरे भी गुनगुनाने लगते हैं। फिल्मी पर्दे पर इनकी अदाएं और अभिनय की तारीफ के लिए चांद सितारों के उपमान भी फीके पड़ जाते हैं।

0: पता।
1: तो दोस्तों, अब तक तो आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा, वो खूबसूरत शोख अदाकारा है काजोल।
0: हाय हाय रे हाय ये लड़की, हाय हाय रे हाय, करती नादानियां क्यों पूछो तो हाय, कभी हमसे लड़ती है कभी

5 अगस्त 1974 को जन्मी काजोल हिंदी सिनेमा की सफलतम अभिनेत्रियों में से एक हैं। उनके कुशल अभिनय के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा था।

काजोल को अभिनय की तालीम तो विरासत में मिली। काजोल की नानी शोभना समर्थ मूक फिल्मों के जमाने से समर्थ अभिनेत्री थीं। बाद के दिनों में उन्होंने कई सशक्त फिल्मों में उत्कृष्ट भूमिका निभाई। शोभना समर्थ की दोनों बेटियां तनुजा और नूतन अपने अभिनय कौशल में माहिर थीं और उन्होंने अपने अभिनय कौशल से लोगों को मोहित किया। माँ तनुजा और मौसी नूतन से काजोल को अभिनय की बारीकियां खुद ब खुद सीखने को मिल गईं।

काजोल की नानी, उनकी माँ और मौसी तो फिल्मी दुनिया की विशिष्ट अदाकारा तो थी ही, उनके चाचा जॉय मुखर्जी और देव मुखर्जी गजब के कलाकार थे। उनके खानदान में और भी एक्टर्स थे, रानी मुखर्जी, मुनीश बहल, ये जवानी है दीवानी जैसी फिल्म बनाने वाले अयान मुखर्जी। परिवार में इतने सारे फिल्मी कलाकारों का जमावड़ा। फिल्मी परिवार के बीच बड़ी चुलबुली और शरारती सी काजोल पढ़ाई में अपना मन लगा रही थी। दोस्तों, काजोल के माता पिता ने पहाड़ों की गोद में बसी जगह पंचगनी के सेंट जोसेफ कॉलेज में उन्हें दाखिला दिलवा दिया, जहां उन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। लेकिन कॉलेज के दिनों में ही उन्हें अभिनय का चस्का लग गया। पढ़ाई के दिनों में ही काजोल को साहित्य में गहरी दिलचस्पी थी। वे साहित्यिक किताबें पढ़ती थीं और बहुत सारी कहानियां पढ़ती थीं।

एक बार वे कॉलेज से पंचगनी से मुंबई आई। वहां राहुल रवेल की फिल्म की शूटिंग चल रही थी। वहां उन्होंने कैमरे के सामने कुछ परफॉर्म किया। बस वहीं से उनके अभिनय की शुरुआत हुई। महज 17 साल की उम्र में उन्होंने अभिनय की दुनिया में कदम रखा। 1992 की रोमांटिक ड्रामा फिल्म बेखुदी में उन्हें एक बड़ा ही सुंदर किरदार मिल गया निभाने के लिए।

और उनके साथ थे नवोदित अभिनेता कमल सदाना और उनकी माँ तनुजा भी इस फिल्म में साथ थीं। काजोल ने इस फिल्म में राधिका का किरदार निभाया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास साबित नहीं हुई, लेकिन काजोल के अभिनय की बहुत बहुत सराहना हुई। और उसके बाद अब्बास मस्तान की क्राइम थ्रिलर फिल्म बाजीगर में उन्हें रोल मिला, जिसमें उनके साथी कलाकार थे शाहरुख खान और शिल्पा शेट्टी।

अभिनय की बारीकियों के कारण काजल को बहुत जल्द बेहतरीन रोल मिलने लगे और काजोल ने अभिनय की चुनौतियों को स्वीकार करना शुरू कर दिया और खुद को साबित किया। काजोल ने यूं तो बहुत सारे कलाकारों के साथ काम करके अपने अभिनय का जलवा दिखाया, लेकिन शाहरुख खान के साथ उन्होंने बहुत सारी हिट फिल्में दी।

सन 1995 में शाहरुख खान के साथ एक बेमिसाल शानदार और जबरदस्त हिट फिल्म आई दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इस फिल्म ने हिंदी सिनेमा में इतिहास का एक खास पन्ना लिख दिया। एक सिनेमा घर में 1000 हफ्ते से भी ज्यादा चलने का रिकॉर्ड बनाया है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे इस फिल्म।

मुंबई के एक सिनेमा घर में आप अभी भी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ये फिल्म देख सकते हैं। सन 1998 में शाहरुख खान के साथ काजोल की एक और हिट फिल्म आई कुछ कुछ होता है।

शाहरुख खान और काजोल की एक और हिट फिल्म आई माय नेम इज खान। दोस्तों काजोल ने सिर्फ बेस्ट हीरोइन का ही रोल नहीं किया बल्कि नेगेटिव रोल में भी काजोल बेस्ट एक्ट्रेस कहलाई। उन्होंने फिल्म गुप्त में रोल किया नेगेटिव लेकिन रिजल्ट रहा पॉजिटिव। इस तरह काजोल ने साबित कर दिया कि काजोल हीरोइन का रोल करें या खलनायिका का रोल करें रहेंगी वे उत्कृष्ट अदाकारा।

0: लड़की के जीवन में एक रोज एक राजकुमार आता है। वो राजकुमार उसके सपनों में नए रंग भरता है। काजोल के फिल्मी करियर और निजी जिंदगी के हीरो बने अजय देवगन।
1: देखो देखो जानम हम दिल अपना तेरे लिए लाए, सोचो सोचो दुनिया में क्यों आए तेरे लिए आए।
0: अजय देवगन के साथ काजोल ने कुछ बेमिसाल फिल्में दी। ये फिल्म है इश्क।

शर्मिली सिन्हा की भूमिका निभाई थी। सन 1998 में फिल्म आई थी प्यार तो होना ही था, जिसमें काजोल ने संजना पटेल का किरदार अदा किया था।

राजू चाचा, गुंडा राज और यूमी और हम अजय देवगन के साथ ये हिट फिल्में काजोल ने दी। फिल्म यूमी और हम में काजोल अल्जाइमर्स नाम की बीमारी से ग्रसित होती है। अजय देवगन के साथ ये एक मार्मिक फिल्म थी।

सन 2006 में काजोल की फिल्म आमिर खान के साथ आई थी। फिल्म थी फना, जिसमें उन्होंने एक नेत्रहीन कश्मीरी लड़की की भूमिका निभाई थी। खास बात यह है कि इस फिल्म में ऋषि कपूर पर्दे पर नजर आए थे।

आमिर खान के साथ कुछ फिल्में और की थी काजोल ने, जैसे फिल्म इश्क। हालांकि फिल्म इश्क में आमिर खान के साथ थी जूही चावला। काजोल की बेहद कमर्शियल फिल्म आई थी हम आपके दिल में रहते हैं। इस फिल्म में काजोल के साथ पर्दे पर नजर आए थे अनिल कपूर।

0: काजोल बनी थी मेघा वर्मा। सन 2000 में आई फिल्म राजू चाचा, सन 2001 में फिल्म कुछ खट्टी कुछ मीठी।
1: मुझ में

0: कुछ कुछ मीठी।
1: दोस्तों, काजोल को उनके बेहतरीन अभिनय के लिए 6 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया। सन 1996 में काजोल को मिला बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर पुरस्कार। फिल्म थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।

सन 1999 में फिल्म कुछ कुछ होता है के लिए मिला बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड। सन 2002 में कभी खुशी कभी गम फिल्म के लिए मिला काजोल को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर। अभिनेता थे शाहरुख खान। सन 2007 में आमिर खान के साथ काजोल की फिल्म आई फना, जिसके लिए मिला उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर पुरस्कार। सन 2011 में फिल्म मायने मिस खान के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। इस फिल्म में अभिनेता थे शाहरुख खान।

अजय देवगन बने थे तानाजी मालूसरे, काजोल बनी थी सावित्री बाई, और सैफ अली बने थे उदय भानु सिंह राठौड़। बहुत सारे फिल्मी समीक्षकों ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की थी।

सैफ अली खान के साथ काजोल की एक और फिल्म आई थी ये दिल्लगी, जिसमें साथ में अक्षय कुमार भी थे। एक बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म आई थी काजोल के फिल्मी करियर की सन 1998 में दुश्मन, जो बदला लेने वाले की भूमिका निभाने के लिए उनकी बड़ी प्रशंसा

काजोल की अभिनय यात्रा आज भी जारी है। सन 2015 में उनकी एक कॉमेडी फिल्म आई थी दिलवाले। फिल्म खूब चली थी।

सन 2021 में आई फिल्म त्रिभंगा, इसके बाद सन 2022 में आई फिल्म सलाम वेंकी। काजोल ने कुछ वेब सीरीज भी की, जैसे कि द ट्रायल। काजोल ने अपने फिल्मी करियर में हर तरह के किरदार निभाए। वे कहीं चुलबुली लड़की के रूप में पर्दे पर नजर आईं, कहीं गंभीर स्त्री, तो कहीं बेहद रूमानी प्रेमिका या पत्नी।

अभिनय के अलावा काजोल एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और विधवाओं और बच्चों के साथ अपने काम के लिए वे काफी चर्चित हैं। काजोल ने सन 2008 में कुछ रियलिटी शोज भी किए जिसमें एक टैलेंट जज के रूप में भी उन्होंने काम किया।

0: काजोल का फिल्मी करियर काफी विराट है। उनके पूरे करियर को समेटकर सारी फिल्मों का जिक्र करना एक कार्यक्रम में संभव नहीं है। आज बस इतना ही।
1: जाती हूँ मैं,
2: जल्दी है क्या,
1: घर के जिया
2: वो क्यों भला।
0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जानी मानी अभिनेत्री काजोल पर।
1: जाती हूँ मैं,
2: जल्दी है क्या,
1: घर के जिया
2: वो क्यों भला।
0: शोध, आलेख और स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का था। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: प्रस्तुत है छाया गीत। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सामिन, जीवन एक अधूरी कविता सा है ना? ये अधूरापन मन को सालता है, लेकिन लगातार आपका पीछा करता रहता है। कुछ लफ्ज अधूरे रह जाते हैं, कुछ ख्वाब, कुछ सपने, तो कभी कुछ मुलाकातें भी। हाँ, कुछ इश्क अधूरा रह जाता है, और तब कुछ आप अधूरे रह जाते हैं। हाँ, तब कुछ आप अधूरे रह जाते हैं।
1: तेरे बिना जी

जब मेरी किताब छपेगी ना तो लोग पढ़ेंगे तुम्हारी हंसी की कहानियां, तुम्हारी नाराजगी के किस्से, तुम्हारी बेरुखी की दर्दनाक गाथाएं, और हाँ तुम्हारी बेवफाई भी। पर कोई नहीं पढ़ पाएगा मेरा वो खालीपन, वो अधूरापन, जिसे मैं हर पल महसूस करती हूँ तुम्हारी।

कभी रात के सन्नाटे में जब सारी दुनिया सो रही होती है, तब अधूरी कहानियां जेहन में तैरने लगती हैं। कहते हैं अधूरी मोहब्बत पूरी मोहब्बत से कहीं ज्यादा गहरी होती है। शायद इसीलिए अधूरी कहानियां जिंदगी की किताब में सबसे गहरी लकीर छोड़ जाती है।

इस अंतराल के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। कुछ कहानियां कभी पूरी नहीं होती, वे टुकड़ों में मौजूद होती हैं। एक वाक्य अधूरा छूट जाता है, एक कथानक छूट जाता है, और कभी कभी कभी कभी एक नोटबुक अधूरे विचारों से भर जाती है। हाँ, हमें सिखाया जाता है कि हर कहानी का अंत होना चाहिए, पात्रों को अपने अंत तक पहुंचना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। ये पात्र अपने अधूरेपन के साथ पड़े रहते हैं, चुपचाप किसी कागज के कोने में, दिनों, महीनों और कभी कभी तो जीवन भर। लगा

कोई बिसरी हुई अधूरी याद, मुलाकात, चरागाह में खो गई गाय है, हाँ, जो रास्ता तलाशती हुई एक दिन आ जाती है वापस। कोई बिसरी हुई अधूरी याद, मुलाकात, चरागाह में खो गई गाय है, जो रास्ता तलाशती हुई एक दिन आ जाती है वापस, और बंद दरवाजों के बाहर रंभाती है। पर धीरे धीरे ये रंभाना सुनाई नहीं देता है। अपने अधूरे होने का एहसास या अधूरेपन का दर्प जिद्दी बना देता है मन को, तब मन तस से मस नहीं होता अपनी जगह से।

0: रहा हूँ।
1: आज जब किताबों की अलमारी खोली तो सामने आई किताब गुनाहों का देवता। धर्मवीर भारती का ये उपन्यास हमने मिलकर पढ़ा था, याद है? तुम्हें कहाँ याद होगा। हाँ, आज फिर एक बार उस अधूरे प्रेम के लिए दिल भारी हो गया है। इश्क का वो पहला खत कभी फाड़ा नहीं गया मुझसे। वो प्रेम, वो जुड़ाव, वो बेबसी हर शब्द जैसे आज भी सांस ले रहा है। अपनी अधूरी प्रेम कहानी की याद दिलाता है ये खत। और हाँ, तब मन को समझा लेती हूँ ये सोचकर कि हम सब अधूरे होते हैं एक आस में। हाँ, हम सभी तो